0: का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: का संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आएं, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
4: श्रोतागण, ई प्रातःकालीन बेला में स्वागत बा रउआ सबके प्रोग्राम आपन दे आपन देखभाल में। तो दोस्त लोग, रउआ तो जानत ही बानी कि ई प्रोग्राम लेके आवेली राउ रेडियो दोस्त दीपाली। तो सबसे पहले रउआ सबके सुप्रभात प्रणाम। दोस्त लोग, हर बार की तरह ई बार भी हमरा पास पर रोज स्वास्थ्य के संवारे खातिर बहुत सारा हेल्थ टिप्स। तो चलिए शुभ आरंभ कर जाओ आज के कार्यक्रम के। दोस्त लोग, आज जानल जाए सबसे पहले चना के शक्तिशाली गुण के बारे में। नाश्ता खातिर एक मुट्ठी काला देशी चना पानी में डाल के रख दी। सुबह एक एक कच्चा या उबाल के या तवा पर थोड़ा भून के मसाला मिला के खूब चबा चबा के खाएं। चना के साथ किशमिश खा सकता नहीं और ये कोनो मौसमी फल भी खा सकता नहीं। तो केला के पानी से धो के छिलका सहित गोलकार टुकड़ा में काट ली और ये छिलका सहित चबा चबा के खाई। नाश्ता में अन्य कोनो चीज ना ली। भोजन में भी रवा चना के इस्तेमाल कर सकता नहीं, जैसे रोटी के आटा में चोकर मिलल होखल होके और इस सब्जी या दाल में चना के चुनी यानी चना के छिलका मिलल होखल होके तो ई आहार बहुत ही सुपाच्य और ई पौष्टिक हो जाला। चोकर और ई चना में सब प्रकार के पोषक तत्व होला। चना गैस ना करेला। शरीर में विषाक्त वायु होके तो अपान वायु के रूप में बाहर निकाल देला। ऐसे पेट साफ और हल्का रही, पाचन शक्ति प्रबल बनल रही, खाल पियल अंग लागी, जैसे शरीर चुस्त दुरुस्त और शक्तिशाली बनल रही। कमजोरी, गैस, मधुमेह, हृदय रोग, बवासीर, भकंदर आदि रोग ना हुई। चना के आटा के उपटन शरीर पर लगा के स्नान करे से खुजली रोग नष्ट होला और ये त्वचा उजला होला। यदि पूरा परिवार चना के नियम पूर्वक सेवन करे तो घोड़ा की तरह शक्तिशाली, फुर्तीला, सुंदर और परिश्रमी बनल रह सकेला। जैसे में गेहूं, चना और जौ तीनों समान वजन में जैसे तीनों दो दो किलो लेके मिला ली और मोटा पिसवा के चाले बिना यानी चोकर सहित आटा की रोटी खाइल शुरू कर दी। एके बेजड़ या मिक्सी रोटी कहल जाला। चना के गरीब के भोजन भी कहल जाला, लेकिन एके ताकत के हमनी के अनदेखा कर देनी सा। चना सस्ता भी है और सरल सुलभ भी। ऐसे हमनी के पथ्य यानी सेवन करे योग्य आहार के रूप में चना के सेवन करके स्वास्थ्य लाभ अवश्य प्राप्त करे के चाहिए। तो दोस्त लोग ई तरह है चना के घरेलू नुस्खा। चलिए अब जान लिया जाओ रंगीन आहार सेहत के आधार एकरा बारे में। वैज्ञानिक लोग ई पौले बा कि अलग अलग रंग के खाद्य पदार्थ रउ शरीर के अलग अलग हिस्सा के फायदा पहुंचावेला। तो चलिए जानल जाओ कि कौन सा रंग शरीर के कौन अंग के मित्र है। सफेद यानी आलू लहसुन सफेद मशरूम आदि रउआ फेफड़ा खातिर फायदेमंद होला। नारंगी रंग प्लीहा के सलामती खातिर नारंगी रंग की चीज खाइल फायदेमंद होला। संतरा में विटामिन सी तो होला ही, कुछ मात्रा में विटामिन ए भी होला जौन प्लीहा खातिर अच्छा होला। हरा फल सब्जी में लुटीन व इंडोल नामक फाइटोकेमिकल्स होला जौन लीवर की रक्षा करेला, अतः हरा रंग की चीज खूब खाई। जामुनी, यदि रउआ अपना मस्तिष्क के सलामती चाहतनी तो जामुनी फल सब्जी के अपना आहार में शामिल करें। इमे हा अंगूर प्याज जामुनी रंग के पत्ता गोभी बैगन आदि शामिल करें। दोस्तों यूं काला रंग लोग के कम ही पसंद होला, खास तौर पर खाए पिए के मसाला में, लेकिन यकीन मानी काला रंग के आहार रउआ गुर्दा खातिर बहुत लाभकारी हुई। अतः मुनाका काली चौला फली काला जैतून आदि खाई करी। लाल, यदि रउआ दिल के रक्षा करे के चाहतनी तो लाल रंग के चीज खाई। लाल रंग के फल सब्जी में फाइटोकेमिकल्स पावल जाला, तरबूज अमरूद टमाटर आदि ई श्रेणी में आवेला। एस्ट्रॉबेरी रसबेरी और बीटरूट में एंथोसाइनिन पावल जाला। ई फाइटोकेमिकल्स के ही एगो समूह है जौन उच्च रक्तचाप के नियंत्रित करेला और डायबिटीज से जुड़ल समस्या से बचाव करेला। तो दोस्तों अब हम बताएं दूध से निखरत कोमल सौंदर्य के घरेलू नुस्खा। दूध के गुलाब जल में मिला के लगावे से त्वचा के रंगत निखरेला। दूध में थोड़ा सा नमक मिला के चेहरा पर सुबह शाम लगावे से मुहासा दूर होला। बादाम बेसन गाजर के रस दूध में मिला के उबटन की तरह लगावे से त्वचा में कमनीयता आवेला। दूध के पूरा शरीर पर लगा के रगड़े से त्वचा में चमक आवेला। नाखून के सुंदर बनावे खातिर कुछ देर दूध में भिंगा के रखी। बर्तन साफ करे से हाथ खुरदुरा हो जाला। ते ए पर दूध में नींबू के रस मिला के लगावे से राउर हाथ सुंदर हुई। होठ के कलापन दूर करे खातिर दूध के होठ पर प्रतिदिन लगाई। चम्मच काला तिल और आधा चम्मच सरसों के बारीक पीस के दूध में मिला के मुहासा पर निरंतर लगावे से फायदा होला। चिरौंजी के दूध के साथ पीस के लगावे से त्वचा चमकदार बनेला। तो दोस्त लोग अब जानल जाई जब पेट में दर्द होके तक का करे के चाहिए। पेट के ऊपरी भाग में दर्द की स्थिति में 3 बूंद पिपरमेंट ऑयल, 2 बूंद क्लोव ऑयल, 1 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल के मिश्रण में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल मिला के मालिश करे से लाभ होला। दर्द यदि पेट के निचला हिस्सा में होके तो 2 बूंद जिरेनियम ऑयल, 2 बूंद रोजमेरी ऑयल। वह 1 बूंद जिंजर ऑयल में 1 चम्मच वेजिटेबल ऑयल डाल के दर्द वाला भाग पर हल्का हाथ से मालिश कर जा सकेला तो ऐसे दर्द में राहत मिली। तो दोस्त लोग ई रहला आज के घरेलू नुस्खा जिमे हमनी के जननी हसन चना के घरेलू नुस्खा और रंगीन आहार के बारे में, ओकरा साथे साथे दूध से निकलल कोमल सौंदर्य के बारे में। तो अब वो वक्त आ गई बा जिमे दीपाली ली है रवा से जाए के इजाजत। तो रखी रवा आपन सेहत के ख्याल, रही खुशहाल। नमस्कार।
5: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
10: भाई चाहे कोई कुछ भी कहता रहे पर महाभारत इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है, क्योंकि जब तक ये दुनिया है महाभारत चलेगी, बाहर भीतर। और मैं उस महाभारत का साक्षी हूं जो केवल कुरुक्षेत्र में ही नहीं, भीष्म के मन में भी चल रही थी, जो हमारे भीतर भी चलती रहती है, सही गलत की महाभारत। अब वो महाभारत मैंने देखी है क्योंकि मैं आकाश हूं। मैंने देखा था कि जब दुर्योधन अपनी सारी हदें पार कर गया तो भीष्म गरजे और सभा में सन्नाटा छा गया। अब भीष्म ने उसको पकड़ा जो इस सबके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार था, जानते हैं कौन? धृतराष्ट्र। तो आइए सुनते हैं क्या हुआ भाई के साथ।
11: मैं जानना चाहता हूं धृतराष्ट्र कि इस द्यूत क्रीड़ा का उद्देश्य क्या है, तुमने क्यों दी थी इसकी अनुमति, पांडवों को क्यों आमंत्रित किया गया था?
12: मनोरंजन के लिए पितामह, इस खेल का उद्देश्य मनोरंजन था।
11: तो तुम्हारा ये मनोरंजक खेल समाप्त हुआ या नहीं?
12: समाप्त तो हो गया पितामह।
11: तो जाओ पूरी सभा को सूचना दो

0: और द्रुपद कुमारी अब मुक्त हैं। इस खेल में उन्होंने जो भी दांव पर हारा है उन्हें वापस किया जाएगा।
1: मामा, मामा कहाँ जा रहे हैं आप?
2: सब चौपट कर दिया, सब चौपट कर दिया,
3: सब चौपट कर दिया। मेरी हर जीती हुई चाल पर काल बनकर बैठ गया ये बुड्ढा भिक्षु।
2: मेरा अपराध ही क्या था?
3: क्या अपराध था मेरा?
2: अरे मैंने तो खेल के हर नियम का पालन किया था। तुम्हें क्या लगता है भिक्षु कि तुम में अगर शक्ति है तो तुम मुझे हर बार प्रश्न कर दोगे? नहीं भिक्षु, अरे जीता तो मैं ही था, जीता तो मैं ही था, जीता तो मैं ही हूं।
4: गंधार कुमार,
2: तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मैं एकांत चाहता हूं? मेरी एकांत में बाधा डालने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा?
4: क्षमा करे गंधार कुमार, पर क्या मुझे आदेश है कि मैं पितामह से भी कह दूं कि आप उनसे मिलना नहीं चाहते?
2: पितामह? क्या बात कर रहे हो सेवक, पितामह कहां से आ गए यहां?
4: अभी तो नहीं आए हैं वो, पर किसी भी क्षण यहां पहुंचने को है। क्रोध से भरे हुए हैं वो, इसी ओर चले आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछने की कोशिश की पर।
2: मूर्ख हो तुम, हस्तिनापुर में रहकर भीष्म से प्रश्न करना चाहते थे, अपने साथ मेरी मृत्यु को भी बुलाना चाहते थे। जाओ जाओ जाओ, भाग कर जाओ और उन्हें सम्मान के साथ अंदर लेकर आओ। हे ईश्वर, मेरी कुंडली में भीष्म की दशा कब जाएगी? जी करता है कि शनि को मंगल में डालकर अपनी चुंगल से बाहर निकाल दूं।
5: कुछ कह रहे थे शकुनी?
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपके सामने मैं क्या कह सकता हूँ? आप ठहरे महारथी चक्रवर्ती महावीर, आपकी आवाज से ही धरती कांप जाती है पितामह।
6: तुमसे किसने कहा कि मैं तुम्हारा पितामह हूँ? गुरुकुल को घृणा की अग्नि में झोंक देने वाला मुझे पितामह कहे, ये मैं सहन नहीं कर सकता।
2: ये आप क्या कह रहे हैं पितामह? मैं तो आपका इतना सम्मान करता हूँ कि आपके चरण दूध से धोकर पी सकता हूँ पितामह।
6: एक बात ठीक से अपने मन में बिठा लो शकुनी, यदि तुमने कौरवों को भ्रमित करने का अपना ये घिनौना खेल बंद नहीं किया तो
2: मुझ पर कीड़े पड़ेंगे, मुझ पर वो कीड़े पड़ेंगे जिनको पहले से कीड़े पड़े हों। मेरा क्या अपराध है? मैंने तो केवल दुर्योधन के लिए पासे फेंके थे, उसे राजधर्म का ज्ञान कराया था।
6: अब गुरुकुल कुमार को तुमसे राजधर्म सीखना होगा शकुनी। मत भूलो कि तुम मेरी दया पे जी रहे हो। तुम्हारे पिता गंधार राज ने स्वयं तुम्हारा दासत्व मांगा था मुझसे, और दास का वध करना पाप नहीं होता।
2: नहीं नहीं पितामह, ऐसा क्रोध ना करो मुझ पर, कहीं मैं आपके क्रोध मात्र से ही भस्म ना हो जाऊं। पितामह,
6: अभी तुमने भीष्म का क्रोध देखा ही कहां है। मुझे तुम्हारा अंत करने के लिए क्रोध का आह्वान करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्षण भर में तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा।
2: नहीं नहीं पितामह, दया करो, दया करो, अपने दास पर दया करो, दया करो पितामह, दया कर।
6: छोड़ो मेरे चरण, और ये मत भूलना कि मैं किसी को बार बार क्षमा नहीं कर सकता। तुम्हें याद है, या याद दिलाऊं कि मैं एक बार पहले भी तुम्हें जीवन दान दे चुका?
2: ये आप क्या कह रहे हैं पितामह?
6: बस, मैं आगे और कुछ नहीं सुनना चाहता।
2: याद है पितामह, याद है मुझे भीष्म, मुझे एक

0: एक घटना याद है। मेरे शरीर पर तुम्हारे दिए हुए एक एक घाव आज भी हरे हैं, और मैं उन्हें सूखने भी नहीं दूंगा। याद रखना भीष्म कि मैं अपना एक भी घाव तब तक नहीं सूखने दूंगा जब तक मैं गुरु वंश का अंत नहीं कर देता। तुम्हारे सर्वनाश तक मैं वो एक एक क्षण हजार हजार बार याद करूंगा भीष्म।
1: अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर शकुनी ये सब कर क्यों रहा था? ऐसी कौन सी आग लगी हुई थी उसके अंदर कि वो हस्तिनापुर को फूंकने पर उतारू था? हस्तिनापुर की बर्बादी से उसको क्या मिलने वाला था? भैया कुछ भी बिना वजह तो होता नहीं, तो शकुनी के भीतर लगी हुई आग की वजह पुरानी होनी चाहिए। देखें तो
2: तुम गंगा पुत्र भीष्म की शक्ति को नहीं जानते धृतराष्ट्र। भीष्म वो प्रचंड ज्वाला है जिसमें संसार की बड़ी से बड़ी शक्तियां भी जलकर खाक हो चुकी हैं। गंधार राज सुबल में अभी इतना साहस नहीं कि वो मेरे साथ छल करे।
3: क्षमा करें तात भीष्म, मैं आपकी मान मर्यादा और शक्ति पर कभी संदेह नहीं कर सकता, लेकिन मैंने जो कहा वो सच है। गांधारी विधवा है, मुझसे पहले उसका विवाह हो चुका है, मर चुका है उसका पहला पति, और गंधार राज सुबल ने इस सच को आपसे छिपाने का दुस्साहस किया है।
2: ये किसने कहा तुमसे? मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम जो कह रहे हो वो सच है?
3: मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता तात, पर मैंने जो सुना है वो सच है। आप चाहे तो इसकी जांच करा सकते हैं। यदि मैं झूठा साबित हुआ तो अपना सिर काट कर आपके चरणों में रख दूंगा।
2: यदि तुमने जो कहा वो सत्य है तो गांधार राज सुबल को इसका दंड भुगतना पड़ेगा। गुरुवंश के साथ छल करने वाला जीवित नहीं रहेगा।
4: अनर्थ हुआ महारानी गांधारी, भारी अनर्थ हुआ।
5: कैसा अनर्थ धात्री?
4: आपको पता है कि आपके पति?
5: क्या हुआ मेरे पति को?
4: वो अंधे है महारानी, आपको देख भी नहीं सकते, जन्मांध है वो।
5: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। झूठ है, झूठ है।
4: ये सच है महारानी गांधारी, आपके साथ धोखा हुआ है। मैं अभी स्वयं देखकर आ रही हूँ, मैं हमेशा से आपकी सेवा करती आ रही हूँ, भला मैं ऐसा झूठ क्यों बोलूंगी आपसे?
5: फिर पिताजी ने मुझे ये सच क्यों नहीं बताया? एक अंधे के साथ मेरा विवाह क्यों किया? कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है धात्री, कैसे कर सकता है?
6: महाराज सुबल को दरबार में लाया जाए।
7: महाराज ऐसा क्यों किया? महाराज ये क्यों किया आपने? ऐसा क्या अपराध हो गया था मुझसे और मेरे पुत्रों से जो हमें इस तरह बंदी बनाकर?
2: आंसू बहाना बंद करो सुबल, आंसुओं से सच नहीं धुलता।
7: किस सच की बात कर रहे हैं महाराज? किस भूल की सजा दे रहे हैं मुझे?
2: मुझे ना समझ पाने की भूल का, गुरुवंश को ललकारने की भूल का, गांधारी के सच को छुपाने की भूल का दंड है ये।
7: ये क्या कह रहे हैं महाराज? गांधारी मेरी बेटी है और अब आपकी राजवधू, मैं उसका सच आपसे कैसे छुपा सकता हूँ महाराज?
2: बेचारे होने का कितना अभिनय करोगे सुबल? क्या ये सच नहीं है कि धृतराष्ट्र से पहले गांधारी का विवाह किसी और से हो चुका था? क्या ये सच नहीं है कि उसका पहला पति मर चुका है? क्या ये भी सच नहीं है कि तुमने क्रूरा धृतराष्ट्र का विवाह एक विधवा के साथ किया है?
7: ये आधा सच है महाराज, आधा सच।
2: सच केवल सच होता है गांधार राज, तुमने क्रूराज के साथ छल किया है, उस भीष्म के साथ छल किया है जिसने कुरुवंश के लिए एक क्षण में अपनी सारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की आहुति दे दी।
7: किंतु किंतु महाराज।
2: बस मैं आगे कुछ नहीं सुनना चाहता। यदि तुम्हारी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र से नहीं हुआ होता तो अब तक तुम जीवित नहीं होते।
7: महाराज।
2: रक्षकों, ले जाओ इसे और इसके पुत्रों के साथ इसे भी यातना कक्ष में डाल दो, ताकि जब तक ये और इसके पुत्र जीवित हैं, अपने जीवित होने पे पछताते रहें।
7: महाराज मेरी बात तो सुनिए महाराज, महाराज महाराज मैं सच कह रहा हूँ महाराज, मेरी बात तो सुनिए महाराज, महाराज नहीं महाराज महाराज।
8: छोड़ दो अपने पिताजी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, छोड़ दो अपने, माँ पढ़ता हूँ तुम्हारे, ईश्वर के लिए मेरे भाइयों को छोड़ दो,
9: इन जानवरों के सामने गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा शकुनी।
10: ये मनुष्य नहीं, नर पिशाच है, नर पिशाच।

अहंकार जानते हैं, अहंकार आपको बहरा बना देता है। आप केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। सच बताइए, कसम से, आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सच सुनना ही नहीं चाहा? सेलेक्टिव लिसनिंग समझते हैं ना, बस वही सुनो जिसको आपका मन सुनना चाहे। पर वो सच क्या था जिसको भीष्म सुनना नहीं चाहते थे, और वो सच उनके सामने आया कैसे, बताएंगे गुरु जब मिल बैठेंगे हम और आप और बिछाएंगे महाभारत की बिसात। तब तक खेलते रहिए महाभारत।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
5: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
4: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
4: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करे www.shalyamhospital.com।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-89733।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, 15 दिन में ही आवेदन का निष्पादन करने को जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। न्यायालय में ई फाइलिंग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस कर्मियों को भी दिया गया विशेष प्रशिक्षण और दुर्गा पूजा पर पुलिस अधीक्षक ने बनाई खास रणनीति। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में कई बिंदुओं पर अलग अलग समीक्षा बैठक की गई। इसमें NIC कक्ष में DM ग्रीवांश सेल की बैठक हुई, जिसमें आम नागरिकों से प्राप्त शिकायतों एवं विशेष रूप से भूमि से संबंधित मामलों के निष्पादन की प्रगति को लेकर समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अंचलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि से संबंधित आवेदन एवं शिकायतों का निष्पादन अंचल स्तर पर ही सुनिश्चित करें, ताकि आम लोगों को छोटी छोटी समस्याओं के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जिलाधिकारी ने सभी अंचल अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदन पत्रों का अधिकतम 15 दिनों के अंदर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करें। उन्होंने लंबित आवेदनों की नियमित समीक्षा करते हुए समय सीमा के भीतर कार्रवाई करने पर विशेष जोर दिया। इस दौरान आम नागरिकों को भी बताया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के द्वारा जमाबंदी के शुद्धिकरण एवं राजस्व अभिलेखों को अद्यतन करने के उद्देश्य से 15 सितंबर से 31 अक्टूबर 2026 तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान जिले के नागरिक अपनी जमाबंदी में दर्ज सभी विवरणों की जाँच कर सकते हैं तथा किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित अंचल कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन देकर उसका सुधार करा सकते हैं। इस विशेष अभियान का उद्देश्य जमाबंदी अभिलेखों में दर्ज विवरण को सही, अद्यतन एवं पारदर्शी बनाना है, ताकि नागरिकों को भूमि एवं राजस्व से संबंधित सेवाओं का लाभ प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो सके। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इस बार मनाया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी जिला स्तर पर किया जाएगा। इसको लेकर आज संबंधित पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिया। बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अनुपालन के संबंध में जो निर्देश आए हैं, उसके अनुसार विभाग को गांधी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से प्राप्त आवेदन के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के अवसर पर निर्धारित कार्यक्रमों का आयोजन होगा और इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दिन को महात्मा गांधी की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में अहिंसा, शांति, सद्भाव, सहिष्णुता और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करना है। इस बार प्रशासन की ओर से अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर संबंधित अधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को निर्देशित किया गया है। गोपालगंज में न्यायालय प्रक्रिया को अत्याधुनिक रूप से संचालित करने के लिए अब सभी मुकदमों की ई फाइलिंग सुनिश्चित की जाएगी। जिले में प्रत्येक दिन होने वाले केस फाइल की प्रक्रिया को अब ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए अधिवक्ता गणों को आज विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अधिवक्ता गणों को न्यायाधीश गणों ने बैठक करते हुए प्रत्येक केस को ऑनलाइन करने की जानकारी दी। इस दौरान एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ जिसमें जिले के बहुत सारे अधिवक्ता गण उपस्थित रहे और इस कार्यशाला के माध्यम से ई फाइलिंग करने की जानकारी प्राप्त की गई। इसको लेकर अभिषेक कुमार नोडल पदाधिकारी गोपालगंज से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
4: आज माननीय पटना हाई कोर्ट एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपालगंज के माध्यम से यहां पर एडीजे 1, एडीजे 2, एडीजे 3, एडीजे 14, सीजीएमएम, एसीजीएम 1 एवं नोडल पदाधिकारी के द्वारा पुस्तकालय बार एसोसिएशन के पुस्तकालय में सारे वकीलों के बीच ई फाइलिंग के जागरूकता के लिए एक ट्रेनिंग सेशन का ऑर्गेनाइज किया गया है। वहां पे सारे वकीलों को सिस्टम असिस्टेंट गोपालगंज के द्वारा बतलाया गया कि कैसे वो लोग ई फाइलिंग कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ताकि हाई कोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार ई फाइलिंग 100% रूप से गोपालगंज में क्रियान्वित हो सके। ई फाइलिंग की सहूलियत के लिए वकीलों के लिए रजिस्ट्रेशन ई सेवा केंद्र का भी गठन, यहां पे 4 ई सेवा केंद्र का गठन किया गया है जहां पर वकील जाके अपना रजिस्ट्रेशन एवं ई फाइलिंग करा सकते हैं। और इसी प्रकार हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के अनुसार 100% ई फाइलिंग कराने का इस गोपालगंज जिला का लक्ष्य चौकी सफल रूप से हो सके।
3: आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर पुलिस कर्मियों और पुलिस पदाधिकारियों को एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यशाला का आयोजन एक निजी मैरिज हॉल में किया गया था। इसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान साइबर क्राइम और ट्रैफिक मामलों की केस स्टडी पर भी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही केस के उद्वेदन और अनुसंधान के आधुनिक तरीकों की भी पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी। पुलिस पदाधिकारियों को बेहतर तरीके से मामलों के निष्पादन को लेकर प्रशिक्षित किया गया। मौके पर जिले के सभी SDPO, DSP, थाना सर्किल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर थानाध्यक्ष और अन्य पुलिसकर्मी मौजूद रहे। पूरे दिन आज इस कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस दौरान पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कहा कि अपराध को नियंत्रित करने, शराब तस्करी पर रोक लगाने और अपराधियों की धर पकड़ करते हुए अपराधियों को सजा दिलाने के लिए भी पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण आवश्यक है ताकि समाज को अपराध मुक्त बनाने के लिए सभी पुलिसकर्मी टेक्नोलॉजी की जानकारी के साथ ही कानून की जानकारी को रखते हुए भी अपना कार्य करें। इसी को लेकर सभी पुलिसकर्मियों और पदाधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अब आने वाले दुर्गा पूजा और दीपावली को लेकर पुलिस ने खास रणनीति के तहत लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए काम शुरू किया है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग तो दिया ही है, साथ ही उन्होंने दुर्गा पूजा और दीपावली पर पुलिस की तैयारियों के संदर्भ में भी आवश्यक जानकारी देते हुए बताया।
5: चूंकि बहुत जल्द ही और शीघ्र ही दुर्गा पूजा आने वाली है, फिर दिवाली का भी टाइम आ रहा है, मार्केट में गतिविधियां बढ़ रही हैं। इस क्रम में हम लोगों ने शहर के जो ज्वेलर्स एसोसिएशन के लोग हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं और भी जो शहर के अन्य प्रतिष्ठित व्यापारी वर्ग के लोग हैं सभी से बुला करके कई राउंड की मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद एक कई रूट निर्धारित करे गए जहाँ देखा गया कि शहर में जो चूँकि मार्केट में गतिविधि बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रामीण एरियाओं से भी और शहर के लोग भी बाहर निकलेंगे और शॉपिंग करने के लिए त्यौहार के समय में लोग आते हैं, तो ऐसे समय में लोगों को सुरक्षा का एहसास हो और किसी तरह की कोई अपराधिक घटना ना हो और पहले से हम लोगों की व्यवस्था रहे, इसलिए हम लोगों ने अलग अलग शहर में गश्ती के रूट चिन्हित करके विशेष गश्ती दल जो है वो निकाला है, स्पेशल पेट्रोलिंग फॉर द फेस्टिव सीजन निकाली है जो कि अगले 2 महीने तक संचालित रहेगी। इस पेट्रोलिंग का कार्य होगा कि जो व्यापारी लोग हैं उनकी दुकानों पर हम लोगों ने अटेंडेंस की व्यवस्था उनकी की है कि वो जाएंगे और उनकी दुकानों पर ही जाकर के अपनी अटेंडेंस भी बनाएंगे और व्यापारियों से बातचीत भी करेंगे कि कोई समस्या तो उनको नहीं आ रही है, और साथ ही वहाँ पर दुकानों पर हम लोग उनके अटेंडेंस के लिए QR कोड की भी प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत जल्द ही QR कोड भी लगाया जाएगा ताकि QR कोड के माध्यम से जो स्पेशल पेट्रोलिंग पार्टी है फॉर फेस्टिव सीजन अब त्यौहार को देखते हुए अपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए और व्यापारी वर्ग में समाज जनरल कॉमन पब्लिक जो मार्केट में आ रहा है उसमें विश्वास पुलिस के प्रति और अपराधिक घटनाओं से उसको संरक्षण महसूस हो इसके लिए ये पेट्रोलिंग निकाली गई है और QR कोड भी इसमें लगाया जाएगा।
3: इधर थावे मेला में पार्किंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली में सोशल मीडिया पर जारी वीडियो के आधार पर एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मेला ठेकेदार को भी गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। इसको लेकर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा,
5: हम लोगों के संज्ञान में एक मामला आया था कि थावे मंदिर में, जैसे ही मामला संज्ञान में आया तो उसकी जाँच करवाई गई SDPO सदर से, उन्होंने जाँच की जांच के क्रम में स्पष्ट हुआ कि इसका जो टेंडर हुआ था उस टेंडर में भी कुछ कमियां थी, और साथ ही जो पार्किंग का ठेकेदार है उसकी टीम है वो अपने डेजिग्नेटेड एरिया से बाहर निकलकर होटल होटल के आसपास जाकर के और मुख्य रोड पर सड़क पर आकर भी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे थे। तत्काल इस मामले में FIR दर्ज कर दी गई है और एक अभियुक्त को जो कि इस वीडियो में दिख रहा है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, जेल भेजा गया और जो ठेकेदार है उस पर भी FIR दर्ज की गई है। और साथ ही इस टेंडर में ही कुछ कमियां थी, उस कमियों के निराकरण के लिए भी जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध किया गया है। बहुत स्पष्ट पार्किंग जगह उन्होंने चिन्हित नहीं हो पाई उस टेंडर में और पार्किंग बनी भी नहीं है, इसलिए भी लोगों का आक्रोश रहता है। तो इन सब आक्रोश को लेकर के हम लोगों ने भी जिला प्राधिकारी को भी सूचित कर दिया है ताकि उस टेंडर में जो कमियां हैं उनका निराकरण हो। और ये स्पष्ट पुनः स्पष्ट किया जा रहा है कि चाहे कोई सरकारी आदमी हो, चाहे कोई प्राइवेट हो, चाहे कोई ठेकेदार हो, अगर वो अवैध वसूली एक रुपए की भी करेगा तो FIR करके जेल भेजा जाएगा। पब्लिक से, आम नागरिक से, मंदिर हो चाहे कोई और जगह हो, कहीं पर भी पार्किंग के नाम पर या अन्य किसी भी बात को सामने रखकर अवैध वसूली की जाएगी तो FIR दर्ज करके इसी तरह जेल भेजा जाएगा। इसमें भी जो ठेकेदार है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए छापेमारियां चल रही हैं, बहुत जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। ऐसे मामले हम लोगों के संज्ञान में आए हैं और SDPO को इसमें जांच दी गई थी, जांच के बाद कार्रवाई की गई।
3: गोपालगंज सैनिक स्कूल में मेजर जनरल जितेंद्र सिंह विशिष्ट सेवा मेडल, जनरल ऑफिसर कमांडिंग झारखंड और बिहार सब एरिया तथा अध्यक्ष लोकल बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का 2 दिवसीय आधिकारिक दौरा हुआ। उनके आगमन से विद्यालय परिसर में उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ। विद्यालय के कैडेट्स के द्वारा उन्हें भव्य गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान कर सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में मेजर जनरल जितेंद्र सिंह ने कैडेट्स को अनुशासन, साहस, आत्मविश्वास एवं सशक्त नेतृत्व के मूल्यों को जीवन में आत्मसात करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कैडेट्स से राष्ट्र हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का आह्वान किया। पोषण माह के तहत जिले में बच्चों के पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक जागरूकता को लेकर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव समाज कल्याण विभाग बिहार पटना के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों को नजदीकी विद्यालयों का भ्रमण कराया जा रहा है ताकि बच्चों को विद्यालयी वातावरण से परिचित कराने के साथ ही प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए भी प्रेरित किया जा सके। इसी कड़ी में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी रंजना कुमारी ने स्वयं संज्ञान लेते हुए आंगनबाड़ी केंद्र कोटवा नोनिया टोली केंद्र संख्या 51 के बच्चों को राजकीय मध्य विद्यालय कोटवा का भ्रमण कराया। श्रम विभाग ने आज छापेमारी करते हुए बाल श्रम के विरुद्ध अभियान चलाकर 5 बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया। धावा दल ने कई प्रतिष्ठानों में छापेमारी की। इस दौरान जादोपुर बाजार, बसडीला बाजार और जादोपुर मोड़ स्थित दुकानों और प्रतिष्ठानों की जांच की गई। धावा दल ने सूर्या स्वीट एवं चाट हाउस जादोपुर से 1 बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। इसके अलावा बिट्टू मछली दुकान बसडीला बाजार से और दीपक कुमार मछली दुकान बसडीला से भी 1-1 बाल श्रमिक और बिरयानी कबाब हाउस जादोपुर मोड़ से भी बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया। राज्य सरकार के द्वारा राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा ऐसे पात्र भूमिहीन परिवारों को वास भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अभियान बसेरा का संचालन किया जा रहा है। जिनके पास रहने के लिए अपनी भूमि नहीं है, सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र वास भूमिहीन परिवार वास भूमि के अधिकार से वंचित ना रहे। अभियान के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के पात्र भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा जिले के सभी पात्र भूमिहीन परिवारों से अपील की गई है कि वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन जमा करें और अभियान का लाभ उठाएं। आज NIC में उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में शराबबंदी एवं मद्य निषेध से संबंधित मामलों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान जिले के सभी थानों के थानाध्यक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जुड़े और सभी थानाध्यक्षों को निर्देश दिया गया कि न्यायालय एवं निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार लंबित शराब मामलों के निष्पादन में तेजी लाएं, जब्त शराब का विनिष्टीकरण करें, नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई समयबद्ध तरीके से करें। साथ ही जिन मामलों में शराब की तस्करी या परिवहन के वाहनों का उपयोग हुआ है उन वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार अधिग्रहण का प्रस्ताव शीघ्र भेजें। कुछ समय के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने थानाध्यक्षों से शराब की बरामदगी, दर्ज कांड, जब्त शराब की मात्रा तथा वाहनों के विरुद्ध की गई कार्रवाई कार्रवाई की जानकारी ली और कहा कि केवल शराब बरामद कर कांड दर्ज करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि पूरी कानूनी प्रक्रिया को अंतिम स्तर तक पहुंचाना भी संबंधित पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। सदर अस्पताल में सोशल मीडिया पर अस्पताल और स्वास्थ्य व्यवस्था के संबंध में आपत्तिजनक एवं अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल को करते हुए कुछ वीडियो वायरल हुए हैं। हाल ही के दिनों में सदर अस्पताल के कई वीडियो वायरल हुए जिसमें अस्पताल की छवि को गलत तरीके से दिखाया गया। इसको लेकर साइबर थाने में सदर अस्पताल के तरफ से एक शिकायत दर्ज कराया गया है जिसमें जानकी ब्लॉग के नाम से अस्पताल से संबंधित कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने को लेकर अस्पताल एवं प्रशासन के संबंध में आपत्तिजनक बातें कहने की बात सामने आ रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार इससे आम जन के बीच सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर भ्रम एवं नकारात्मक धारणा उत्पन्न होने तथा संस्थान की छवि प्रभावित होने की आशंका है। अस्पताल के उपाधीक्षक ने मामले की निष्पक्ष जांच कर संबंधित वीडियो एवं सोशल मीडिया तथ्यों के परीक्षण तथा नियमानुसार कार्रवाई का पुलिस से अनुरोध किया है। शिकायत की प्रतिलिपि सिविल सर्जन, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी को भी भेजी गई है। सिरीपुर के बलभद्र परसा गांव के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रक के चपेट में आने से इनकी मौत हो गई। यह साइकिल से जा

0: रविंद्रनाथ तिवारी, सौरन जी सहित दर्जनों परिवार के लोग इस जल जमाव की स्थिति से त्राहिमाम हैं। वहां के लोगों से आज बातचीत की गई तो उसमें अधिवक्ता देवेंद्रनाथ तिवारी ने कहा,
1: मैं देवेंद्रनाथ तिवारी, अधिवक्ता वार्ड नंबर 22। हमारे मोहल्ला में मुना चौधरी के खटाल तर से और वहाँ रेलवे स्टेशन किरासन तेल डिपो तक रोड पर ठेहुन भर पानी जमा हुआ है और उस पानी का निकास नहीं है। आए 25 में वह बनाया गया और उसमें बोर्ड पर लिखा हुआ है कि नाला युक्त, लेकिन नाला कहीं नहीं है, खाली PCC कर दिया गया है। वहाँ पानी का निकास नहीं है, रोड पर ठेहुन भर पानी जमा हुआ है। यात्री जो ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं उसका मुख्य सड़क है ये, और हम मोहल्लावासी तो उसमें मन भुगतिए रहे हैं। अब तो महामारी होने की संभावना है, क्योंकि पानी जब नहीं निकलेगा और सड़क पर पानी है, हेल करके लोगों को जाना पड़ता है। देख करके उसका कोई निराकरण किया जाए, जनप्रतिनिधि भी कोई नहीं सवाल सुन रहे हैं।
0: थावे पुलिस ने आज लछवार मेला में शंकर जी के मंदिर के पास छापेमारी करते हुए 110 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़ा गया आरोपी भागवत भारती पिता प्रमानंद भारती लछवार का ही निवासी है। गांजा जैसे मादक पदार्थों को जब्त कर आरोपी पर पुलिस NDPS एक्ट में कार्रवाई कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर, 15 दिन में ही आवेदन का निष्पादन करने को जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश। 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। न्यायालय में ई फाइलिंग को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन। पुलिस कर्मियों को भी दिया गया विशेष प्रशिक्षण। और दुर्गा पूजा पर पुलिस अधीक्षक ने बनाई खास रणनीति। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
9: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
10: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
9: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
11: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
10: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
12: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और

0: ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
1: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
0: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
0: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: दोस्तों, ये है मेरा शो जिसका नाम है टाइम मशीन, माइथोलॉजिकल कहानियों का एक अद्भुत सफर। मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अब कहानी शिखंडी। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। कौरवों और पांडवों को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में युद्ध करते हुए 9 दिन हो गए थे। सैकड़ों निर्दोष सैनिकों के खून से वहां की मिट्टी का रंग लाल होने लगा था, लेकिन 9 दिन में युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला था। पांडवों के पास एक से बढ़कर एक योद्धा थे। शस्त्र विद्या में पांचों भाई पारंगत थे, पर युद्ध भूमि पर एक भीष्म अकेले ही उन सब पर भारी पड़ रहे थे। भीष्म बुजुर्ग हो गए थे, पर उनके कौशल में कोई कमी नहीं आई थी। कौरव जानते थे कि जब तक भीष्म पितामह सेनापति हैं, तब तक पांडव सेना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। उनकी मर्जी के बिना उनकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी। कौरवों को अपनी जीत निश्चित लग रही थी। जहां कौरवों की सेना में जीत का विश्वास था, पांडवों के खेमे में माहौल उदासीन था। वो भी इस सच्चाई को जानते थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव पांचों अपने खेमे में बैठे हुए थे और द्रौपदी कृष्ण से बोल रही थी, 9 दिन हो गए कृष्ण और युद्ध का अभी भी कोई परिणाम नहीं निकला है। कितने सैनिक शहीद हो चुके हैं, हमारे योद्धा पराक्रमी हैं और आप हमारे मार्गदर्शक हैं, फिर हम जीत क्यों नहीं रहे? कृष्ण बोले, भीष्म पितामह कौरव सेना के आगे ढाल बनकर खड़े होते हैं। हमारे तीर उनके पार जाकर उनके किसी बड़े योद्धा तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। फिर क्या किया जाए नारायण? कृष्ण बोले, रणनीति बदलनी पड़ेगी। अगर भीष्म जीवित रहे तो हम ये युद्ध नहीं जीत पाएंगे, और भीष्म की मृत्यु तभी होगी जब वो अपने अस्त्र अपनी मर्जी से नीचे रख देंगे, नहीं तो उन्हें हराना असंभव है। युधिष्ठिर बोले, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो युद्ध भूमि में अस्त्र नीचे रख दे कृष्ण? कृष्ण बोले, हो सकता है अगर उनके सामने स्त्री आ जाए। वो क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध जाकर स्त्री पर वार नहीं करेंगे। अब सारे पांडव भाई उनकी बात को गौर से सुन रहे थे। भीष्म उन सब के तात्श्री थे और वो सब उन्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन युद्ध जीतने के लिए अगर उन्हें मारना जरूरी था तो वो ये घिनौना काम करने को तैयार थे। द्रौपदी बोली, पर कृष्ण, क्षत्रिय धर्म के अनुसार तो स्त्री को युद्ध भूमि में जाना ही वर्जित है, फिर हम ये कैसे करेंगे? कृष्ण मुस्कुराए, तुम्हारे बड़े भाई शिखंडी की प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया द्रौपदी। कल शिखंडी अर्जुन की ढाल बनकर खड़ा होगा। भीष्म जानते हैं कि शिखंडी का जन्म लड़की के रूप में हुआ था, वो उस पर वार नहीं करेंगे, और तब अर्जुन अपने तीरों से भीष्म को धराशायी कर देगा। पांडवों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर द्रौपदी की तरफ देखा, पर द्रौपदी उनकी तरफ नहीं देख रही थी, वो अपने भाई शिखंडी के बारे में सोच रही थी। अगले दिन युद्ध में अर्जुन के रथ पर कृष्ण सारथी थे और एक पतला दुबला नौजवान उनके साथ खड़ा था। कृष्ण ने रथ को युद्ध भूमि के बीच में लाकर खड़ा कर दिया, बिल्कुल भीष्म के रथ के सामने। भीष्म ने अर्जुन के रथ को देखा उस नवयुवक को देखा जो ढाल बनकर अर्जुन के आगे खड़ा हो गया था। भीष्म हल्के से मुस्कुरा दिए। आखिर वो दिन आ ही गया था। उन्हें पता था वो अपनी मृत्यु को देख रहे हैं और आज वो उसके लिए तैयार थे। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और सीना चौड़ा करके अर्जुन के हृदय भेदन तीरों की प्रतीक्षा करने लगे। पर ये हुआ क्या था? शिखंडी? कौन था ये शिखंडी? नर था या नारी? अगर नर था तो भीष्म उस पर वार क्यों नहीं करते, और अगर नारी था तो युद्ध भूमि में जा कैसे सकता था? और ये कृष्ण किस प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे? कृष्ण जिस प्रतिज्ञा की बात कर रहे थे उसके बारे में जानने के लिए आपको मेरे साथ प्राचीन भारतवर्ष में चलना पड़ेगा। उन दिनों की दुनिया आज की दुनिया से बहुत अलग थी दोस्तों। तीनों लोकों की सीमा रेखा नहीं थी। स्वर्ग लोक की अप्सराएं, देवी देवता सब धरती लोक पर किन्नर, यक्ष और गंधर्वों के साथ घूमते थे। पिशाच और राक्षस पाताल लोक छोड़कर धरती और स्वर्ग लोक पर मनुष्यों के साथ घूमते थे। साधु और ऋषि अपने जप और तप से इतनी सिद्धि प्राप्त कर लेते थे कि उनके पास बड़े से बड़े वरदान और श्राप देने की क्षमता होती थी। उन्हीं दिनों की बात है जब शिखंडी पांचाल नरेश द्रुपद के घर में लड़की के रूप में पैदा हुआ था। उसके जन्म पर राजपुरोहित ने उसकी कुंडली देखकर कहा, इस कन्या का जन्म कुरु राजकुमार भीष्म की मृत्यु के लिए हुआ है। राजा ये सुनकर असमंजस में पड़ गए। एक कन्या इतने बड़े योद्धा को कैसे पराजित कर पाएगी? लड़कियों को युद्ध कला सीखना या युद्ध में भाग लेना वर्जित था, पर अपनी पुत्री की नियति पूरी करने की बात थी, इसलिए कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। काफी सोचने के बाद राजा ने तय किया कि वो उसे पुत्र की तरह बड़ा करेंगे। बच्ची का नाम रखा शिखंडी और ऐलान कर दिया कि राजा के घर कन्या ने नहीं, पुत्र ने जन्म लिया है। शिखंडी की परवरिश लड़कों की तरह होने लगी। राजा द्रुपद को वो अति प्रिय था, पर वो उसके चेहरे को देखकर अक्सर परेशान हो जाते थे। बचपन से ही शिखंडी गंभीर रहता था, हंसता भी कम था। उसकी आंखों में बचपना नहीं, विषाद था। अपनी उम्र से बड़ी गमी थी। राजा उसे खुश करने के लिए तरह तरह के खेल करवाते, बढ़िया खिलौने मंगवाते, झूले लगवाते, राज्य में पर्व और मेले का आयोजन कराते, पर शिखंडी कुछ भी देखकर, कुछ भी लेकर खुश नहीं दिखता। जब राजा इस बात को लेकर ज्यादा परेशान हो जाते तो उनके पंडित कहते, ये राजकुमार के पूर्व जन्म के प्रारब्ध हैं महाराज। पता नहीं इन्होंने कैसा जीवन जिया होगा जो इस जन्म में एक राजा के घर में सारे राजसी सुखों के होते हुए भी इनकी आत्मा प्रसन्नचित्त नहीं रहती। उनकी बात गलत नहीं थी। वो शिखंडी के पूर्व जन्म के बारे में नहीं जानते थे, पर मैं तो जानता था। मैं हर पल उस यात्रा पर उसके साथ था जिसने उस नाजुक खूबसूरत राजकुमारी अंबा को शिखंडी बना दिया था। इस कहानी की शुरुआत बहुत बरस पहले तब हुई थी जब काशी नरेश की तीनों बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का भीष्म ने स्वयंवर सभा से हरण कर लिया था। लेकिन फिर अंबा ने भीष्म को बताया कि वो शाल्व नरेश को अपना पति मान चुकी हैं। ये सुनते ही भीष्म ने तुरंत अंबा को शाल्व भेज दिया था, पर शाल्व नरेश ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया था, ये कहकर कि धर्म के अनुसार हरण की हुई स्त्री पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है जो उसे हर कर ले गया था। वापस आने पर भीष्म ने भी उससे विवाह करने से मना कर दिया था क्योंकि उन्होंने ब्रह्मचर्य का व्रत लिया हुआ था। दोनों जगह से ठुकराए जाने पर अंबा को गुस्सा आ गया और उसने प्रण लिया कि वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनेगी। राज्यसभा से निकलकर राजकुमारी अंबा घने जंगलों में चली गई। काशी नगर की बेटी काशी के आराध्य देव शिव के बेटे का जाप करने लगी। कार्तिकेय युद्ध के देवता थे और अंबा उनसे भीष्म को युद्ध में पराजित करने का वर मांगना चाहती थी। मैं जानता था कि अंबा बचपन से ही हठी रही है। एक बार उसने निश्चय कर लिया तो उसको दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती थी। कई सालों तक मैं उसे देखता रहा, भूख प्यास सर्दी गर्मी सब भुलाकर वो सिर्फ कार्तिकेय के नाम का जाप करती रही। फिर एक दिन उसकी तपस्या से खुश होकर कार्तिकेय ने उसे दर्शन दिए। पूरे जंगल में सुनहरी रोशनी फैल गई थी। अम्बा ने देखा कार्तिकेय उसके सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी और हाथ में कमल के फूलों की माला। उन दैविक कमलों की खुशबू से जंगल महकने लगा था। अम्बा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु प्रभु मुझे, कार्तिकेय मुस्कुराए। मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूं अम्बा, और मैं जानता हूं तुम क्या वरदान चाहती हो। ये माला लो, इसमें मेरे कुंड के कमल हैं। जो मानव इस माला को पहनेगा वो तुम्हारे लिए भीष्म को मारेगा। माला देकर कार्तिकेय अंतर्ध्यान हो गए। उस जमाने में युद्ध के नियमों के अनुसार स्त्री को युद्ध करना निषेध था। अपने प्रतिशोध को पूरा करने के लिए अम्बा को अब ऐसे कुशल योद्धा की जरूरत थी जो भीष्म को पराजित कर सके। उसके मन में उम्मीद की किरण जग गई थी, पर बहुत जल्द ही ये किरण बुझने लगी जब माला पहनने को कोई तैयार ही नहीं हुआ। भीष्म ने बड़े बड़े गुरुओं और देवताओं से शस्त्र विद्या ली थी, उन्हें हराना मुमकिन नहीं था, और हस्तिनापुर एक शक्तिशाली राज्य था, उनसे दुश्मनी मोल लेना किसी के बस की बात नहीं थी। फिर भी अम्बा निराश नहीं हुई। उसने जितनी लगन से तपस्या की थी उसी लगन से वो माला पहनने वाले को भी ढूंढने निकल पड़ी। कई महीने तक एक राज्य से दूसरे राज्य घूमती हुई वो अपनी कहानी सुनाती रही, लेकिन कार्तिकेय की माला पहनने को कोई तैयार नहीं हुआ। माला के कमल खिले हुए रहे, पर अम्बा के मन की आशा मुरझाने लगी। वो कभी गिड़गिड़ा कर मनोहार करती, कभी गुस्से से बोलती, क्या भारतवर्ष के सभी आदमी इतने कमजोर हो गए हैं? कोई एक भी ऐसा नहीं है जो भीष्म को उसकी गलती की सजा दे सके? उस स्वाभिमानी राजकुमारी की उम्मीद टूट रही थी, पर जिस प्रतिज्ञा को उसने अपने जीने की वजह बना लिया था उसे वो टूटने नहीं देना चाहती थी। थकी हुई टूटी हुई वो पांचाल राज्य पहुंची। वहां के नरेश द्रुपद ने उसकी कहानी सुनी। उन्हें इस राजकुमारी के साथ सहानुभूति भी हुई, पर भीष्म से युद्ध करने से उन्होंने भी इनकार कर दिया। हर जगह से निराश अम्बा अब तक अपना संयम खो चुकी थी। उसके वस्त्र फट चुके थे, बालों की जटाएं कमर से लंबी हो गई थीं और आंखों में क्रोध की ज्वाला थी। किसी चोट लगे सांप की तरह उसने फुफकार के राजा की तरफ देखा। क्या शक्तिशाली राजा होने का ये मतलब है कि वो किसी का भी जीवन नष्ट कर सकता है? क्या मेरे जीवन का, मेरे साथ हुए अन्याय का कोई मोल नहीं है? यहाँ पुरुष नहीं पत्थर बसते हैं, और अब मैं किसी और से नहीं पूछूंगी, उस पापी से मैं खुद बदला लूंगी। ये कहकर उसने कार्तिकेय की माला दूर उछाल कर फेंक दी। वो धरती पर गिरने की जगह महल के एक संगमरमर के स्तंभ पर जाकर अटक गई। अम्बा बिना मुड़े महल के बाहर निकल गई। राजा द्रुपद कभी उस राजकुमारी को जाते हुए देख रहे थे, कभी उसकी फेंकी हुई माला को। माला के कमल खिले हुए थे और उनकी खुशबू से पूरा महल महकने लगा था। सारी राज्यसभा ने अम्बा की कहानी सुन ली थी। वो कार्तिकेय की माला को उनका आशीर्वाद समझकर उस माला को पूजने लगे। कुछ दिनों में उस माला के नीचे अगरबत्ती फूल और पूजा की अन्य सामग्री भी चढ़ने लगी, लेकिन माला पहनने वाला अभी भी कोई नहीं था। अम्बा समझ गई थी कि उसने जो प्रण लिया है उसे पूरा उसको खुद ही करना पड़ेगा। वो एक बार फिर जंगल में समाधि में लीन हो गई। कई साल बीत गए, दिन रात का फेरा चलता रहा, पर अम्बा सबसे अनजान अपनी जगह से बिना हिले शिव की आराधना करती रही। अगर निश्चय दृढ़ हो और हठ अविचल हो तो भगवान को भी झुकना पड़ता है। आखिर शिव ने दर्शन दिए और अम्बा को उसकी इच्छा पूर्ति का वरदान दिया। भीष्म के पास वैराग्य के तप से संचित शक्ति है, उसे कोई साधारण मानव नहीं मार सकता। मेरे वरदान से तुम भीष्म को युद्ध में हराकर उसकी मृत्यु का कारण बनोगी अम्बा, पर अगले जन्म में। अम्बा घायल शेरनी सी कराह कर बोली, पर अगले जन्म में तो मुझे इस जन्म के अन्याय की कोई याद ही नहीं रहेगी देव, फिर बदले के रस की मिठास कैसे चखूंगी? बदले के रस में मिठास। शिव मुस्कुराए। अभी इस बालिका को बहुत कुछ सीखना था। फिर बोले, मैं वरदान देता हूं अम्बा, तुम्हें इस जन्म की सारी स्मृति रहेगी। अम्बा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अपनी नियति को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए उसने वहीं लकड़ियां जलाईं और उनमें कूद कर अपनी जान दे दी। शिव के आशीर्वाद से वो पांचाल नरेश द्रुपद के घर में कन्या बनकर पैदा हुई, शिखंडी। पर राजा ने उसे पुत्र बनाकर पाला और उसकी हंसी देखने को तरसते रहे। पर उनकी ये इच्छा तब पूरी हुई जब 5-6 साल के शिखंडी ने राजमहल के स्तंभ पर कार्तिकेय के कमलों की माला देखी और उसे उतार कर अपने गले में पहन लिया। सारा राजमहल देखकर हैरान हो गया कि उनका धीर गंभीर राजकुमार उस माला को गले में डालकर कैसे हंस रहा था और तालियां बजाकर दीवानों की तरह नाच रहा था। राजा सब समझ गए। राजकुमारी अम्बा का चेहरा उनकी आंखों के सामने आ गया। उसकी आंखें उन्होंने शिखंडी के चेहरे पर देखी थीं पर पहचान नहीं पाए थे। उन्होंने अपने पुत्र को पूरा सहयोग देने का निर्णय लिया और इसके लिए वो अपने रचे हुए झूठ को सच बनाने को तैयार थे। जब शिखंडी बड़ा हुआ तो उसका विवाह दशाण के राजा हिरण्यवर्ण की पुत्री से करा दिया गया। पर जब राजकुमारी को पता चला कि उसका पति पुरुष नहीं स्त्री है तो वो अपने पिता के घर चली गई। उसके पिता ने पांचाल से इस अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध की घोषणा कर दी। जग हसाई और शर्मिंदगी से बचने के लिए शिखंडी महल छोड़कर जंगल में चला गया। वहां उसे एक यक्ष मिला जिसका नाम स्थून था। उसने शिखंडी की पूरी कहानी सुनी और बोला, तुम्हारे पिता को युद्ध से बचाने की एक तरकीब है मेरे पास। मैं तुम्हें एक दिन के लिए अपना पौरुष दे सकता हूँ। तुम अपनी पत्नी को बोलो कि उसे गलतफहमी हुई है। अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम पुरुष हो तो युद्ध टल जाएगा, लेकिन मुझे वचन दो कि कल तुम मेरा पौरुष वापस कर दोगे। शिखंडी को उसकी बात जच गई। उसने यक्ष के कहे मुताबिक किया और अपनी पत्नी और उसके पिता को विश्वास दिला दिया कि वो पुरुष ही है। युद्ध टल गया। अगले दिन अपने वचन को पूरा करने के लिए शिखंडी फिर जंगल गया। वहां स्थून सर झुकाए उदास बैठा था। उसने बताया कि यक्षों के देवता कुबेर को जब पता चला कि स्थून ने क्या किया है तो उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि अब उसे अपना पौरुष शिखंडी के मरने के बाद ही मिलेगा, उससे पहले नहीं। तो ऐसे एक लड़की के शरीर में जन्मी शिखंडी लड़का बन गई और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के एक कदम और करीब आ गई। और फिर आ ही पहुंचा वो दिन, दो जन्मों का इंतजार पूरा होने को था। महाभारत के युद्ध का 10वां दिन था। कृष्ण ने रणनीति बनाई थी। आज शिखंडी अर्जुन की ढाल बनकर खड़ा हुआ था। भीष्म जानते थे कि उसका जन्म प्रतिशोध की भावना से हुआ था। जानते थे कि शिखंडी जन्म से स्त्री है। क्षत्रिय युद्ध का नियम होता है कि स्त्री से युद्ध निषेध होता है। उसे देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और सीना चौड़ा करके अर्जुन के हृदय भेदन तीरों की प्रतीक्षा करने लगे। शिखंडी और अर्जुन ने भीष्म पर तीरों की वर्षा शुरू कर दी। कुछ देर में भीष्म के शरीर के हर हिस्से पर तीर थे और इतने तीर कि जब वो गिरे तो धरती पर नहीं, तीरों की शैया पर। उस वीर क्षत्रिय योद्धा को जैसे धरती ने अपने मस्तक पर आसमान के करीब ऐसे सजा दिया था जैसे कोई भगवान की मूर्ति पर फूल सजाता है। भीष्म के गिरते ही सब कुछ ठहर गया। दोनों सेनाएं रुक कर भीष्म की तरफ देखने लगीं। अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और वो रोते रोते ही रथ पर बैठ गया था। सब पांडव भाई रो रहे थे। कृष्ण के चेहरे पर भी उदासी थी। वहां कौरवों की सेना में भी सभी की आंखें नम थीं। दुर्योधन, कर्ण, द्रोणाचार्य, दुशासन सब भीष्म की तरफ हाथ जोड़े खड़े थे। सिर्फ शिखंडी के चेहरे पर ही हंसी थी। पर फिर उसने अपने चारों तरफ देखा, ये क्या हो रहा था? उसकी इतनी बड़ी विजय में कोई उसकी तरफ क्यों नहीं देख रहा था? सब बच्चों की तरह बिलख क्यों रहे थे? आज उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की थी, अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। आज उसके दो जन्मों का प्रतिशोध पूरा हुआ था, पर इस प्रतिशोध का रस मीठा क्यों नहीं लग रहा था? अपने कंधे से तरकश नीचे उतारते हुए शिखंडी सोच रहा था, आज आखिर जीत किसकी हुई है? दोस्तों, युद्ध की यही परिभाषा आज भी जीवित है।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
4: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
4: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
4: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
4: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
6: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
6: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
6: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710-3992 या 97-65-65-750।
7: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
8: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
7: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
8: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
8: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
8: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
9: ठक ठक।
8: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
8: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
8: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL जियो एयरटेल VI जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF लेमिनेशन प्रिंट फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड शिव मंदिर के ठीक सामने गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99 399 66 999।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
0: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99,554-97,644।
4: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
5: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034-48652 पे।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमरीकी ठिकानों पर हमले की आशंका को रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे। एक्सपर्ट एट AIR न्यूज हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIR न्यूज अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं। विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक। राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिन्दुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डोसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब डेढ़ दशक से डोसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डोसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सराय का लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितम्बर को होगा शुरू। दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमरीका करेगा इसकी चौकीदारी। ग्रीनलैंड और अमरीका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देशभर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 9853252599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9939451 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9956-59536 या 9956-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
9: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
5: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
5: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87894 18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
8: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
6: जानकारी है तो कॉल करें 62052 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
4: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
5: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।

0: 67 स्थानों पर आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय संकल्प समारोह, और पटना के ज्ञान भवन में आज से सरस मेला का किया जा रहा है आयोजन। 15 राज्यों की जीविका दीदियां लगाएंगी स्टॉल। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 10,000 से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने पटना में सेवा संकल्प अभियान के तहत राष्ट्रीय इनोवेशन चैलेंज कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर उन्होंने नेशनल इनोवेशन चैलेंज पोर्टल का भी लोकार्पण किया। श्री चौधरी ने कहा कि प्रदेश में नए उद्योगों की स्थापना के लिए संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अब तक लगभग 1,000 उद्योगों के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। उन्होंने कहा कि बिहार की विकास यात्रा में सेवा, नवाचार, तकनीक और उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य की युवा शक्ति को विकास की ताकत बनाकर राज्य को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए पहल करने की अपील की है। नई दिल्ली में देश भर के वित्त मंत्रियों की बैठक में उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने यह मांग रखी। उन्होंने कहा कि यदि नेपाल में हाई डैम बन जाता है तो उत्तर बिहार के नदियों के लिए वरदान साबित होगा, साथ ही उत्तर बिहार को बाढ़ की समस्या से मुक्ति मिल सकेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और इस विजन को हकीकत में बदला गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में प्रगति प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य विकास परियोजनाओं, सरकारी योजनाओं और लोगों की शिकायतों का तेजी से समाधान करना है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री खुद केंद्र सरकार के मंत्रालयों और राज्यों के साथ सीधे समीक्षा करते हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रगति ने कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में देरी की वजह से होने वाली समस्याओं को दूर करने और तेजी से फैसले लेने में मदद की है। इससे अधिकारियों में जवाबदेही की भावना भी मजबूत हुई है। इस साल फरवरी में राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि प्रधानमंत्री स्तर पर विस्तृत निगरानी के कारण 85 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को आगे बढ़ाने और उनमें तेजी लाने में मदद मिली है।
2: हमने एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया, हर महीने बैठा और लगातार उस काम करते करते और संबंधित राज्यों को भी बिठाया, हरेक की बारीकी से देखा, और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ कि इस प्रगति के इम्प्लीमेंटेशन को बारीकी से प्रधानमंत्री के स्तर पर देखे जाने के कारण 85 लाख करोड़ रुपीज का काम को गति मिली। देश की कितनी बड़ी शक्ति को अनलॉक किया हमने, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है ये हमने करके देखा है।
1: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बीवी नगर हैदराबाद की कार्यकारी निदेशक डॉक्टर अमिता अग्रवाल ने बताया कि प्रगति तंत्र की मदद से एम्स से जुड़े पानी और बिजली की आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण समस्याओं को हल करने में मदद मिली।
3: कि हमारे पास दो मेजर इश्यूज थे, एक पावर सप्लाई का और एक वाटर सप्लाई, जो कि दोनों बहुत अहम होते हैं अस्पताल के लिए, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की इंटरवेंशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और साथ में स्टेट गवर्नमेंट का हेल्प से ये प्रॉब्लम्स दोनों धीरे धीरे करके सॉल्व हो गए।
1: प्रगति प्लेटफॉर्म सहकारी संघवाद का भी एक उदाहरण है। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकारें और केंद्र के विभिन्न मंत्रालय एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मिलकर काम करते हैं। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति की 53 बैठकों की अध्यक्षता कर चुके हैं। आनंद कुमार के साथ दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बिहार सहित देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल हैं। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाण सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पटना के ज्ञान भवन में आज से बिहार सरस मेला का आयोजन किया जाएगा। 29 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में बिहार समेत 15 राज्यों की स्वयं सहायता समूह से जुड़ी जीविका दीदियां अपने उत्पादों के स्टॉल लगाएंगी। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरस मेले के माध्यम से जीविका दीदियों को अपने उत्पादों के लिए बाजार उपलब्ध कराया जाता है।
5: सरस मेला 2026 का आयोजन ज्ञान भवन में किया जा रहा है और 20 तारीख से 29 तारीख तक चलेगा। राज्य भर के हमारे जो जीविका की दीदियां हैं, जो हुनरमंद है, जिनके हुनर से बने हुए जो सामान है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी हम देने जा रहे हैं। जो हमारे पर्यटक स्थल है, बोधगया है, राजगीर है, नालंदा है, पावापुरी है, वैशाली है, केसरिया है, विक्रमशिला है, बक्सर है, जहाँ जहाँ विदेशी पर्यटक आते हैं वहाँ पर बाजार बना करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको पहचान बनाने के लिए उनके सामान का बिक्री केंद्र भी खोलेंगे, प्रदर्शनी भी होगी।
0: मेले में कुल 135 स्टॉल होंगे, जहां हस्तशिल्प, लोक कला, कलाकृतियों और पारंपरिक व्यंजनों की प्रदर्शनी और बिक्री होगी। प्रदेश के सभी जिलों की महिला उद्यमी भी इसमें शामिल होंगी। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने कहा है कि सरकारी अस्पतालों में 792 ड्रेसर और 644 एक्सरे टेक्नीशियन की नियुक्ति जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग को अधियाचना भेजी गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य सभी स्वास्थ्य संगठनों में पर्याप्त मानव संसाधन को उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण, सुलभ और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि जीविका की उपलब्धियों से लोगों को अवगत कराने के लिए 2 अक्टूबर को सभी जिलों में नीतीश संवाद आयोजित किया जाएगा। उन्होंने पार्टी मुख्यालय में कहा कि संवाद में बिहार के विकास और बदलाव में पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस मौके पर जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि 13 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1,88,00,000 से अधिक महिलाएं जीविका से जुड़कर आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त हुई हैं। प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस वाहन यानी डायल 112 वाहन या उसके कर्मियों पर हमले के लिए संबंधित थानाध्यक्ष को जिम्मेवार माना जाएगा। पुलिस मुख्यालय में डायल 112 वाहनों पर हमले को गंभीरता से लेते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। ADG विधि व्यवस्था KS अनुपम ने इस संबंध में सभी क्षेत्रीय IG और DIG को निर्देश भेजा है। उन्होंने थाना गश्ती वाहन से क्षेत्र में नियमित और प्रभावी गश्ती कराने का निर्देश भी दिया। रेलवे ने मोकामा के राजेंद्र सेतु के समानांतर बन रहे नए रेल पुल से परिचालन शुरू करने के लिए नॉन इंटरलॉकिंग कार्य करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर राजेंद्र सेतु पर कल से 4 अक्टूबर तक ट्रेनों का परिचालन बंद रहेगा। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क पदाधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि आज से 4 अक्टूबर के बीच राजेंद्र सेतु से गुजरने वाली 35 ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया गया है। वहीं 348 ट्रेनों का परिचालन परिवर्तित मार्ग तथा कुछ ट्रेनों का आंशिक समापन या प्रारंभ कर चलाने का निर्णय लिया गया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे डाक सेवा गिफ्ट संबंधी मैसेज को गलत बताया है। इसमें दावा किया गया है कि डाक सेवा गिफ्ट स्कीम के तहत इंडिया पोस्ट की तरफ से तोहफे बांटे जा रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। PIB ने लोगों से कहा है कि वे किसी भी संदिग्ध लिंक या वेबसाइट पर क्लिक न करें। लोगों से यह भी अपील की गई है कि वे बैंक अकाउंट की जानकारी, OTP या आधार नंबर जैसी निजी जानकारी साझा न करें। कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र के छांव रोड स्थित एक फैक्ट्री से पुलिस ने लगभग 28 किलो गांजा बरामद किया है। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। शिवहर जिले में पुलिस ने शिवहर थाना क्षेत्र से लगभग 11 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। इस मामले में एक किशोर को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 3 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। दक्षिण पश्चिम मानसून के वापसी की अनुकूल परिस्थितियां बनने लगी हैं। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मानसून पश्चिमी राजस्थान से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना समेत आसपास के इलाकों में हल्की बारिश होने से लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में बारिश की संभावना है।
1: 20 सितंबर को राज्य के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के जिलों में 1 या 2 स्थानों पर वर्षा की संभावना है।
0: अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, राज्य के वित्त रहित कॉलेजों को दिए 461 करोड़। दैनिक जागरण ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के हवाले से लिखा है, 1 करोड़ महिलाओं को सरकार देगी रोजगार। दैनिक भास्कर ने आयकर विभाग के निर्णय पर लिखा है, डिलीटेड डेटा भी जांच सकेगा आयकर विभाग, क्लाउड डेटा की भी फॉरेंसिक जांच होगी। प्रभात खबर ने बिहार बिल्डिंग बायलॉज पर लिखा है, 30 दिन में फैसला नहीं तो स्वतः मंजूर हो जाएगा भवन का नक्शा। राष्ट्रीय सागर लिखता है, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में विद्यार्थी परिषद ने अध्यक्ष समेत सेंटर पैनल की 3 सीटें जीती। आज अखबार ने जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह के बयान को तरजीह देते हुए लिखा है, पार्टी में कोई मतभेद नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 10,000 से अधिक उद्योग स्थापित किए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने केंद्र सरकार से नेपाल में हाई डैम बनाने के लिए पहल करने की अपील की। नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज बिहार सहित देश भर में 1067 स्थानों पर आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय संकल्प समारोह। और पटना के ज्ञान भवन में आज से सरस मेला का किया जा रहा है आयोजन, 15 राज्यों की जीविका दीदियां लगाएंगी स्टॉल। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
2: सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9470434468 पे।
6: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
7: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
6: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
7: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
6: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी, जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
9: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: धन्यवाद। आई 2 मिनट लेट हो गया मैम, इतना 3 मिनट।
1: हाँ हाँ, 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया,
2: बात करते हुए 2 मिनट लेट हो गया हमको भी। चलिए फोन लग गया।
1: तो क्या हाल चाल है आपका?
2: सब बढ़िया, मतलब बताइए भी हुई तो? एक नंबर में लग गया मेरा और भारत से बात हो गया।
1: एक नंबर में लगाते तो है लेकिन कॉल आपका।
2: ये शिकायत हम करने वाले थे लेकिन अभी आप ही बता दी।
1: पीछे चला जाता है वो कंप्यूटर में एडिट करने के लिए जब डालते हैं उनको।
2: लेकिन मैम हम आपको एक बात बता दें, एक दिन मनोरमा मैम कोशिश करके बजाई थी एक नंबर में। हम आप बोले थे उस दिन भी कि मैम कोशिश कीजिएगा, इतना खुशी मिलता है, जितना खुशी मिलता है ना, आप एक बार श्रोता बनकर मतलब कॉल कीजिएगा तो पता चलेगा मिलता है जब एक नंबर में बजता है।
1: बहुत खुशी मिलता है, ये तो बात है। श्रोता बन के कॉल या मैसेज करें तो इसके लिए तो मुझे सोनू जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद ही हम आप लोगों के बीच जुड़ पाएंगे।
2: जी मैम, उनका तो रात में शो चलता है ना। ऐसा शर्मा जो मतलब है रेडियो रंजन का, उसका ये शो का उसे नहीं लिखा है।
1: ऐसा शर्मा इसका नहीं लिखा है,
2: वो उसका लिखा है। हेलो माय चॉइस का नहीं लिखा है।
1: हाँ, हेलो माय चॉइस का नंबर नहीं लिखा है,
2: नंबर या कुछ भी नहीं लिखा है उसे, टाइमिंग कुछ भी नहीं लिखा है।
1: ठीक है, इसको देख के ध्यान से ठीक कर दिया जाएगा,
2: क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं तो जानते हैं कब का कौन शो है। हमको रेडियो सुनते हुए 6 साल हो गया,
1: बढ़िया,
2: और जुड़ते हुए यही 2-3 साल हुआ है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, ना इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हम बोलते हैं जो इसे लगाव है
1: वो कहीं नहीं।
2: हाँ, और इसमें सुनने का मजा ही कुछ और है।
1: ये तो है,
2: नेट के द्वारा तो 1 मिनट में सुन सकते हैं कोई भी सॉन्ग मंगा करके।
1: वो तो,
2: लेकिन रेडियो को सुनने का कुछ अलग ही मजा है। तो मैम आज हमें एक प्यारा सा गाना सुनाइए और कोशिश कीजिएगा 1 नंबर बजे, और कोशिश कीजिएगा कि मेरा खुशी दुगुना हो जाए।
1: जी बिल्कुल कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बार मेरा कॉल जो है ये कल बजेगा।
2: हाँ, वो तो हमको मालूम है, मनोरमा जी का कॉल बाकी है। जी मैम, तो कोशिश कीजिएगा फुल।
1: जी जी,
2: नहीं तो फिर से शिकायत रहेगी सोमवार को आपसे।
1: जी बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि आपकी फर्स्ट कॉल ही बजे।
2: जी मैम, तो आज मुझे प्यारा सा गाना जिगर मूवी सुनाइए।
1: ओके, गाने की बोल बता दीजिए।
2: जी, गाने का बोल है, तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया।
1: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: सुनवाने वाली तो थी लेकिन अभी है नहीं, तो सभी दोस्तों को सुनाएंगे और आपको, सभी आरजे को।
1: चलिए बढ़िया है।
2: और कोई भी सॉन्ग है इसमें दिल को मतलब दिल पे लेकर नहीं सुनते हैं, बस एंजॉय के लिए सुनते हैं।
1: जी, आपके द्वारा गाना फरमाइश किया जो रहता है वो काफी अच्छा आता है।
2: हमको बहुत ज्यादा मतलब मूवी से ज्यादा गाना से लगाव है, और रेडियो रिंगटोन का सभी तो मतलब सुनते हैं।
1: बढ़िया है,
2: इतना लगाव है, उतना किसी को इंसान तो नहीं होगा उतना तो रेडियो से लगाव है। चलिए कोशिश करेगा मैम, इसके लिए एडवांस धन्यवाद।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
2: ओके मैम, बाय बाय।

0: नमस्कार कल्चन बानी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी हम तो रहे हैं, जैसे लगावट लगावट जाए अब समझी की सारे बड़े सारे के सारे जा रहे
1: हैं।
0: हम कहने के बरा हाँ यार नरेन बात वहाँ ही से पड़े के रहते हैं। तो लास्ट कॉल चला था जी।
1: हाँ हाँ लास्ट कॉल चला था।
0: और क्या हाल चल रहा
1: जी? मैंने
0: खाना पीना बढ़िया से कॉफी हाल में जाना।
1: हाँ खाना पीना तो खा पी के आवे एकदम।
0: हाँ तो अब एक बात प्रोग्राम करे थे हुई।
1: हाँ।
0: तो प्रोग्राम ऐसे लेट हो जाते थे ना।
1: हाँ ऐसे लेट हो जाता।
0: हाँ मनोरमा जी नीचे आए
1: थे बानी।
0: तो घर परिवार कोई फिगर चलिए वो गाना बारे मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको बाहों से जुदा होना देंगे।
1: जी और गाना की
0: सबसे पहले तो अपने के मनोरमा जी के सोनू भाई धरन, सजीर भाई धरन, कमरान भाई धरन, जाटा भाई धरन, सुमित राजन कुशवाहा जी धरन,
1: चलिए फिर ठीक बात। अब और गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक बात है। तो नमस्कार और सभी दोस्तों को भी नमस्कार।
1: रेडियो रंजन में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम का नाम तो पूछिए ना कोई नहीं।
1: दिलीप। दिलीप
0: जी। दिलीप राम
1: जी
0: नमस्कार।
2: प्यार वो है के मर कर भी तुमको

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुर, 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहाँ आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86 034 48 652 पे।
5: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
6: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
5: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
6: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे

0: घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
1: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
0: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
1: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
5: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
5: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
5: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
6: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
7: जब फोन घंटे बजते हैं तो कहते हैं hello, hello, hello, hello, hello, hello.
8: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
9: अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, इतना गुजारिश है तुमसे, सोने से पहले मुझे याद रखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
10: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
9: मैं भी अच्छा हूँ। बोला की लगाऊ कॉल, अजी रिकॉर्डेड होगा, जल्दी लग गया मेरा।
10: जी जी,
9: नमस्कार।
10: हाँ हाँ, नाश्ता करके आते हैं।
9: हाँ, मैं नाश्ता तो कर जाना ही करेगा। मेरा भी नाश्ता तो हो गया है, छत पे आए हैं, धूप है, हल्का हल्का हवा चल रहा है। अच्छा,
10: हाँ वैसे ही मौसम है।
9: हाँ, अगर बारिश वरिश हो नहीं हो रहा था, बोला करो, हर पे फोन किया था, बोला बारिश नहीं हो रहा था। समझिए अक्टूबर का कुछ गर्मी पड़ेगा।
10: अभी तो शीत जैसा मौसम बन रहा है, शीत वगैरह सुबह में रहता है।
9: जी जी जी, समझिए अभी नवंबर से ठंडा चालू हो जाता है, अगर अक्टूबर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। तो आप बहुत त्यौहार भी आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ।
10: जी जी, अब तो दुर्गा पूजा हो गया, उसके बाद दिवाली, छठ का भी लगातार आने ही वाले हैं।
9: जी जी, एकदम लगातार है त्यौहार। दिवाली में तो बहुत लोग पूछते हैं कि दिवाली में सामान खरीदा जाए, छुट्टी मिलता है,
10: ये तो है।
9: धनतेरस में सबसे बड़ी बात है टाइम। अगर इंसान अगर काम करने लगा तो बस टाइम का बहुत मायने रखता है। बड़ी बात है कि टाइम रहे तो कहीं कोई जाएगा, कुछ करेगा, और ऐसे अगर कोई काम नहीं करो, टाइम में टाइम है तो कोई बात ही नहीं है। और सब सुनाइए, बढ़िया है?
10: जी, और सब बढ़िया है।
9: घर परिवार?
10: जी सब घर परिवार में भी सही है।
9: तो ये बताइए, चल रहा है उसमें कॉल वाला सिस्टम नहीं रखे हैं क्या? हटा दिए क्या?
10: नहीं है, कॉल तो कॉल आ रहा था।
9: मैंने कॉल किया था इस दिन बुध को दिन।
10: हाँ,
9: तो रिसीव नहीं हुआ। मैं बहुत कॉल किया, हमको लगा इसे हट गया था कॉल वाला,
10: तो
9: नहीं हो रहा था।
10: नहीं,
9: ये अंताक्षरी शुरू करिए ना, तो आप आइए गए हैं, दो दो आइए हैं, आपका सोचना है संडे पे।
10: इसके लिए तो हम लोग नहीं कर सकते वो सर,
9: बोलना पड़ेगा। अच्छा, संडे को बहुत बढ़िया चलता था इतना।
10: हाँ, संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है 2 बजे से 5 बजे तक।
9: हाँ हाँ, नहीं वही ना सोचा, बताइए कितना लंबा दिख गया प्रोग्राम, 12 बजे से लेकर ये वही टाइम बढ़ गया ना,
10: मतलब
9: 3 तक बताइए से।
10: हाँ, इसका टाइमिंग है 12 से 4
9: हो गया ना। बताइए जालंबा दीप्ती न्यूज चलता है तो आप लोग खाना वाला खाते होंगे
10: हाँ।
9: तो अच्छा लगा आपसे बात करके, गाना हमको सुना दीजिए, गाना नहीं आज कव्वाली सुना,
10: कव्वाली बता दीजिए कौन सा,
9: अपने ही रंग में रंग में शादी कव्वाली है
10: जी जी, और कव्वाली तो सुनवाना भी है
9: जी जी जी। सबसे पहले आपको और आयशा सबनम सिद्दीकी सदीना सब्बा सिद्दीकी अख्तरी अहमद अली दुर्गा परमी अनिमा साजिया आयशा अफरीन भास्कर वर्जी ईश्वर सोनी मुकेश उमर शंकर देवेंद्र दिलीप राम शाहजहाँ रुखसार सजदा अंसारी रोशनी कुमारी निशा सुखनवा निशा भारती और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा, फिर मंडे को मिलेंगे।
10: नमस्कार, नमस्कार रेडियो रिमिशन में कॉल किए।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बोलिए क्या हुआ
0: जी? अभी तो बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
1: बोल रही हूँ, गाना सुना है।
0: बिल्कुल बता दीजिए कौन सा।
1: हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
0: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है
1: आपको और रेडियो रिमझिम सुनने वाली सभी श्रोता को?
2: मैम आप मनोरमा मैम बोल रही हैं?
0: नहीं,
2: तो सोमवार को रिकॉर्डिंग मनोरमा मैम की थी? नहीं,
0: इसी सोमवार को।
2: हाँ, इसी पिछले बार सोमवार को।
0: हाँ, मनोरमा जी रिकॉर्ड की थी।
2: तो मेरी भतीजी कॉल की थी और छोटी वाली तो बोल रही थी कि मेरा गाना मैम नहीं बजाई है। हाँ। तो पढ़ने चली गई है, बोल रही थी कि कमेंट कर दीजिएगा बुआ।
0: अच्छा जी, सोमवार को जो गाना उनका रिकॉर्ड की थी कॉल, वो मैसेज जो बाकी कॉल है वो आज बजेगा, तो हो सकता है उसी में हो।
2: वही बोल रही थी, हम लोग उससे रिगा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा गाना मैम नहीं बजाएंगे, तो रो रही थी। तो बोल रही थी कि हम गोपालगंज जाएंगे ना तो मैम को मारेंगे, जाऊंगे तुम चिंती हो। बोल रही थी।
0: नहीं, वो कॉल है उसमें बच जाएगा, सोमवार का जो कॉल है कुछ इनके पास बचा हुआ है।
2: ठीक है, खाना खा लिए हैं?
0: हाँ, हम तो खाना ही खा लिए हैं।
2: ठीक है, बजा दीजिएगा गाना।
0: बिल्कुल, तो गाना सही करते हैं।
2: ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
3: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
3: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
3: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेष टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 90-765-65-750।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमजेड पर।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
8: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
8: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
8: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
10: बालवीर सुंदर
5: जी जी, क्या हाल चाल है आपका?
10: ठीक है, आप बताइए।
5: जी हम सब से ठीक है। दूसरा बता दीजिए।
10: बता दिए पवन सिंह की आवाज में।
5: और गाने की बोल
10: अपना पसंद से बजा दिए पवन सिंह की आवाज में।
5: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
10: मानो
5: प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम भी ठीक बने रहो, बताइए रहो कैसे
0: जी।
1: सबका हाल चल रहा
0: ठीक बात है?
1: हम भी ठीक बात।
0: रिकॉर्ड लेट चालू मिल कर
1: ना तो एकदम फैमिली चालू से ही है।
0: अच्छा, तो हम जब से लगा तो लागत का है ना?
1: लागत ऐसे नहीं है कि कॉल एकदम लगातार आज बिल्कुल आ रहा हुआ है। अभी तक टाइम पे ऊपर जाता हुए।
0: हाँ, हम कने कहीं लेट चालू भाई आप कड़ाई कोई लागत है ना? तो मैं लाग गई।
1: अबे बंद करे जात रहा नहीं है रिकॉर्डिंग। चले भाग्य भरोसे उस वेला
0: चलो लिखर लग मैंने बात हो जाए ना। गलती से उठ ना कड़ा
1: ना ना जल्दी से बता दी कौन सा गाना प्ले करे।
0: गाना है बजा दी प्यार के लिए चार पल कम नहीं है।
1: गाना क्योंकि सुनवाऊ के बाद
0: और अवरा सुने सबके सुनी जितना ऑलरेडी सुनता
1: चली रहा। और गाना प्ले कर सुनत रही रेडियो 90.4 FM।
0: ठीक है।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97070675।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
6: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: Hello. जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो।
11: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4
13: है।
12: जी क्या हाल चाल है आपका?
13: बहुत बढ़िया, मैं वो गाना चाहिए, मैं मेरा महबूबा आया है, बाहर फूल बरसाओ।
12: हाँ हाँ ओके, तो आपका

0: नमस्ते,
1: मुझे गाना सुनना है।
0: बिल्कुल बता दीजिए।
1: सड़क पिक्चर का।
0: हेलो
1: जी सर,
0: कौन सा गाना सुनना है उसमें का? सड़क मूवी का बता दो।
1: जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
0: और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
1: सबसे पहले आप और जिन्हें सुनने वाले हैं।
0: ओके जी, तो आपका प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो। ठीक,
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: हेलो
8: हेलो
7: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। हेलो,
8: हाँ क्रिसमस बोलता हूँ।
7: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
8: ठीक है बाबू।
7: अच्छा, ठीक बना?
8: हाँ, चलो घर ठीक बनो।
7: हाँ हाँ, हमने के सब के ठीक बानी पर।
8: ठीक है,
7: बता दी कौन सा
8: कव्वाली सुना दो।
7: कव्वाली कौन सा कव्वाली सुना दी?
8: निकाह फिल्म सुना दिया।
7: अच्छा, निकाह मूवी के गाना क्यों के सुना हूँ के
8: बाद सुनते
7: जी जी, तो चले फिर ठीक बात और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 FM। नमस्ते,
8: खुश रहो।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में। बिल्कुल, बता दीजिए कौन सा सॉन्ग। और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
0: सभी दोस्तों को।
1: वैसे आपका नाम?
0: राजू कुमार मधु शर्मा।
1: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 एफएम।

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में,
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: Now pick your phone up.
8: Hello.
7: Pick it up, pick it up.
8: Hello.
7: Now pick your phone up.

0: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
1: हेलो
2: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जंक्शन 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैडम।
2: नमस्ते,
1: विकास कुमार बोलते हैं उनका फिर से।
2: क्या हाल चल रहा?
1: बढ़िया।
2: क्या होता अभी?
1: आप कैसन बनी मैडम?
2: हम तो ठीक बनी रहो, बताई रहो कैसन बनी।
1: हमने को बढ़िया बनी सर।
2: तब भोजपुरी बोले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
1: नहीं दिक्कत नहीं के, हमने की आदत हट जाए हिंदी बोले के, घर पर भी जाई ले तो कबू काल हिंदी बोल दीजिए। तो घर के गौवा का लेको फेको हुआ सन तो कहिया सन की चले तू हिंदी बोल रहा है, दिल्ली रहता है तो।
2: नाश्ता पानी हो गया?
1: हाँ नाश्ता पानी हो गया मैडम।
2: हाथ कैसे बा? हाथ में चोट लगा रहे ना?
1: हाँ सही है मैडम।
2: चलिए बढ़िया,
1: विश्वकर्मा जी के कृपा से सही हो गई। बढ़िया, और बताइए मैडम।
2: और सब तो ठीक बा?
1: और वो मोनार्मा जी
2: ठीक बानी?
1: अच्छा चलिए बढ़िया काम बटे।
2: तो बता दे आज कौन सा गाना सुने?
1: आज गाना सुनेंगे वो निरहुआ का नहीं है, सिनुरमा कैसे जाई बने, वो ऐसे कुछ गाना है वो, लेकिन याद नहीं है ना मैडम। वो जो बम्बई वाली एक नहीं रहती है, वो घर जाती है, वो उसके लिए उसके ट्रैक्टर पर बैठा करके निरहुआ वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा करके ले जाता है उसको छोड़ने के लिए।
2: देखना तो पड़ेगा, याद मुझे भी नहीं आ रहा है।
1: याद नहीं आ रहा है?
2: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: ये आपको सुनवाना है और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको। ये भोजपुरी वाले तो आप लोग को भी सुनवाएंगे और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं सबको और सोनी मैडम को भी सुनवाएंगे और सब मैडम। आपके घर में मम्मी पापा आपके सब सही है ना?
2: जी मेरे घर में तो सब सही है।
1: अच्छा सब कोई है अभी
2: मेरे घर में?
1: दादी उदी दादा उदा सब है?
2: हाँ सब कोई है।
1: चलिए बढ़िया है, सब कोई सही है ना?
2: हाँ सब कोई सही है।
1: चलिए सही है, सही होना चाहिए। भगवान करे बढ़िया से रहे, एकदम बढ़िया तरक्की करे, एकदम आप लोग का प्रोग्राम चलते रहे चाहिए, हम लोग बात भी करते रहे, इससे अच्छा और क्या है।
2: हाँ, ये बात सही है।
1: दुनिया से क्या ले जाना है मैडम?
2: जी
1: बस थोड़ी सी बात हो जाता है, एंजॉय हो जाता है, गाना वाना भी फरमाइश कर लेते हैं। तो मेरे घर में जानते रेडियो का जगह पर वो होम थिएटर है, बड़ी वाली 6-7 हजार का है वो होम थिएटर। जब मैं घर गया था रक्षाबंधन में तो मेरे पापा जी नहीं रहते थे, तो हम जब बजाते थे जब पापा जी घर में आ जाते थे तो नहीं बजाते थे,
2: पापा जी से डर लगता है।
1: वो गुस्सा कर लेते थे, बोलते थे कि बहुत पिटाई होगा तो ये सब बजाओगे, तो हम बोले कि चलिए ठीक है नहीं बजाएंगे, अब बोलते हैं तो नहीं बजाएंगे। जब कहीं चले जाते थे तो थोड़ा बेवफाई सॉन्ग वोंग लगा करके सुनते थे।
2: अच्छा
1: चलिए बढ़िया है। तो कल विश्वकर्मा पूजा था जानते हैं?
2: विश्वकर्मा पूजा था, सबके यहाँ पूजा हुआ।
1: तो कल पूजा करवाए, मंदिर है अपने कंपनी में, केला वोला से वो लाए थे, लड्डू वड्डू वही पूजा पाठ सुबह में करवाए थे, पूजा वूजा करवा करके उसके बाद फिर अपने ड्यूटी में लग गए। घर में भी मेरा आटा वाला मोटर वाली मशीन है, आटा वाटा पीसते हैं पापा जी
2: है।
1: और वो पानी चलाने वाला मशीन भी है, सब बड़ी बाड़ी भी है। हाँ सब ये सब आप लोग का कृपा से, भगवान का कृपा से,
2: ये सब भगवान की कृपा है।
1: कमा उमा करके हम भी कर दिया है कुछ,
2: ये सब होना चाहिए। ये सामान बड़ा रहता है तो अच्छा रहता है, अपना काम अपना भी काम हो जाता है खुद।
1: हाँ दो पैसा आ भी जाएगा, 800-900 रुपए डेली का आटा पीस करके आ जाता है।
2: तब तो पापा जी का खासा चल रहा है।
1: हाँ पापा जी पीते हैं डेली का डेली, कभी कभी 700 कभी 800 ऐसे करके आ जाता है।
2: बढ़िया है
1: ये, और सब बढ़िया है ना मैडम?
2: जी जी और सब बढ़िया है
1: जी।
2: तो फिर चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: जी नमस्ते मैम।
2: नमस्ते।

0: मैं आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, नाम बता सकते
1: हैं? भारती जी बोल रहे हैं। वहाँ मौसम कैसा है आपका?
0: मेरे यहाँ का तो मौसम हल्का हल्का, बस बादल छाया हुआ है और हल्का धूप है।
1: हम तो पहला बार कॉल लगा है, मेरा आपका नया है हम।
0: जी, आपका नाम बता सकते
1: हैं? मेरा नाम प्राणनाथ दुबे तोरा से बोल रहे हैं, हमारा सानी गांव है।
0: तो क्या हाल चाल?
1: बस हम आपका रेगुलर सुनने वाला है, रेगुलर सुनते हैं आपका। एक्चुअली में हम रहते हैं कलकत्ता में। हम कलकत्ता में ही आपका प्रोग्राम सुनते हैं दिन रात, जब मौका मिलता है तब आपका हम रेडियो इंजिन सुनते हैं।
0: सब तो बढ़िया है।
1: और यहाँ मौसम है बारिश मौसम है, पानी पानी हो रहा है यहाँ तो। बता,
0: आपके यहाँ बारिश हो रही है अभी?
1: हाँ, यहाँ पर कलकत्ता में अभी बारिश हो रही है।
0: अभी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अभी हमको वही सुना दीजिए, इससे बरसा पानी बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो हिसाब से गाना। और हमारे जितने श्रोता है उनको हम सुनाना चाहेंगे, आपको भी सुनाना चाहेंगे। और मेरे घर के मेरे लोग है, रिश्ता है, मैं है, मेरी मम्मी है, सबको सुनाना चाहेंगे, मेरी बहन लोग है।
0: आपको गाना
1: ओके मैडम, ओके, थैंक यू।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
3: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
2: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
3: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
4: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
3: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
4: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
3: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
4: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
6: भरोसे वाले चलेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
4: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
3: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर की करें खरीदारी।
4: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
4: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
10: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
10: ओनली ऑन रेडियो रमझे 90.4 आमजेड पर।
12: Now pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
12: Pick it up.
13: Hello.
12: Now pick your phone up.
13: Hello.
14: The phone ding ding bajti hai to kehte hain hello.
15: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
16: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
17: कैसे मिलता है?
16: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
17: हमारे भी ठीक है, खाना खा लिए?
16: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए?
17: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
16: और सब तो ठीक है, बस सबको ही अपने अपने काम में लगे हैं।
17: हाँ, जुमा है।
16: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
17: गाना अपना पसंद से सुनना चाहिए।
16: अपने से कोई भी? हिंदी गाना आज आप नहीं बताइएगा,
17: अपना पसंद से सुना दीजिए।
16: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
17: मेरा भाई बता रहा है
16: तो बता दीजिए।
18: दिल जले का गाना।
16: और दिल जले का कौन सा गाना?
18: शाम है दूंगा।
16: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
18: आपको और बहन हेलो सभी को।
16: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
18: ठीक है।
16: वैसे आपका नाम?
18: अरमान आलम।
16: जी, तो
18: कब तक सुनाइएगा मैम?
16: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
18: ठीक।
16: ओके, रेडियो रूम से मैं कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
18: थैंक यू।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। और बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM
1: नमस्ते मैम,
0: में।
1: कैसी हैं मैम?
0: नमस्ते, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं।
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है?
0: हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ
1: बोल रहे हैं, आप पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल बताइए। अच्छा
1: मनीषा कुमारी प्रिया सुंदर से।
0: जी, हाँ क्या हो रहा है मनीषा जी?
1: अभी तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: शांति ना ही बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की गोजा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी है।
1: मैम गाना मालूम चल गया ना
0: हाँ, चुप हो जा हुआ तो हुआ।
1: जी मैम?
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या?
0: आप थोड़ा पीछे का बताइए और हम उसके आगे का बता दीजिए।
1: हाँ चलिए ठीक है, आधा आप बता दीजिए हम। हाँ
0: हाँ, तो गाना कंप्लीट हो जाएगा।
1: एक लाइन में आधा आधा गा भी रहे हैं। चलिए तभी है, खाना खा लिए ना? चलिए
0: हम खा के आते हैं।
1: तभी है,
0: ओके, तो
1: आप
0: गाना
1: सुनवा दीजिए।
0: जी बिल्कुल सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: मैम अपने घर में सब कोई को सुनवाना चाहती हूँ,
0: बिल्कुल
1: और रेडियो सुनने वाले कभी दोस्तों को और कभी यार जी को।
0: ओके जी।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-556-97-644।
7: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009-94-911। जी हाँ, 8009-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
8: हेलो
9: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94 FM में।
8: नमस्कार दीदी।
9: नमस्कार।
8: दिन भी मेरा गला रिकॉर्ड हुआ है, नहीं सुनाई गई दीदी।
9: जी जी, आपका एक कॉल बचा हुआ है, उसको सुना दिया जाएगा।
8: जी जी जी, तो सुना दीजिएगा। आज दिल वाले फिल्म का जीता था जिसके लिए मरता था।
9: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। और गाना डेडिकेट भी है किसी को?
8: हाँ, हिमेश कुमार, ऋतिराज कुमार, पंकज कुमार, रेणु देवी, सपना कुमारी।
9: ओके, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 94 FM।

0: हेलो
1: नमस्कार
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मन्ना बोल रहा हूँ।
0: जी जी क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो ठीक है, पर मेरा गाना आप ही नहीं बजाए।
0: आपका गाना बजा है?
1: बजा है
0: हाँ, कल ही तो बजा।
1: कल बजा है मेरा गाना, नहीं बजा है।
0: कल भी बजा है?
1: मैं परसों दिन भी सुने, कल भी सुने, आज भी सुन रहे थे, तो उसमें कोई गाना ही नहीं आपको मिला ही।
0: आपका कॉल मैं कल ही बना के बजा दी हूँ।
1: बजा दिए हैं?
0: हाँ
1: तो ठीक है, तो बजा दिए तो हो सकता है की हमको ख्याल में बिसर गए हो इधर उधर,
0: जी जी मैं
1: यही होगा।
0: बजाई भी हूँ और मेरे रिकॉर्ड में भी है। हाँ
1: चलिए, आप तो खूब अब रहे हैं तो आपको बात को हमको आना ही पड़ेगा। या हमसे कोई मिस्टेक हो गया, कहीं चले गए हो दूसरी जगह, या रेडियो ऑफ हो गया हो, या जो भी हो प्रॉब्लम कोई आया हो, तो मैं बच गया तो मैडम को कोई बात ही नहीं। आज भी कोई गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: तो बता दीजिए आज कौन सा सुनना है? आज कौन सा?
1: संडे का मौसम आ रहा है, ठंडा वाला संडे का मौसम वाला कौन सा गाना रहेगा?
0: ठंडी के मौसम वाला गाना
1: ये तो आप गाना बहुत बजाती हैं।
0: कोशिश तो करते हैं कि आप अपनी पसंद के गाने को बजाओ।
1: हाँ, ठंडा ठंडा का मौसम आ रहा है तो उसमें कौन गाना बजना चाहिए बताइए, हम तो उसको बता दें।
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए, महेंद्र कपूर का गाना है।
0: हाँ, एक और है शायद गाना, मीठी मीठी सर्दी है ऐसे करके कुछ गाना है, लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का है शायद।
1: तो बजाइए ना वही, तो ये तो गाना तो बहुत बार सुने आपका
0: संचालन,
1: वही गाना बजाइए मैडम आपका चॉइस का, मतलब ठंडे वाला तो हो तो अच्छा रहेगा ना। अब देख रहा है कि बहुत शीत गिर रहा है सुबह में,
0: मीठी मीठी सर्दी आ रही है और ये गाना भी वही है सेम।
1: हाँ बजाइए मैडम, आप ही चॉइस रहेगा तो उसी गानों को आप बजा दीजिए, हम भी उसी में खुश हैं। हम तो वो तो हमको गाना नहीं मिल रहा था तो वो हमको याद आ गया महेंद्र कपूर का, वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए।
0: आपको ये आपको कल और परसों ये दोनों से भी सुनने को मिलेगा क्योंकि आज मनोरमा जी का जो कॉल बचा हुआ है वो बजेगा।
1: हाँ चलिए, आप बोल देते हमको संतोष हो गया, और बचा हुआ कॉल में वो भी सुनेंगे हम, मेरा गाना वो आया है या नहीं आया है।
0: बिल्कुल सुन लीजिएगा।
1: हाँ आज सुनेंगे, आज वो दिल थाम कर सुनेंगे कि मनोरमा जी बजाई है या ना बजाई, सबूत तो खड़ा हो जाएगा ना। तो जब भी मनोरमा जी से बात होगा तो उनको हम बोलेंगे।
0: ओके जी,
1: लेकिन आप भी ख्याल रखती हैं, हर कंज्यूमर का बात को ख्याल रखती हैं भाभी जी।
0: नहीं बजा है तो कोशिश तो करनी ही है, बजानी ही है।
1: हाँ लेकिन मैं भी देख रहा है ना, एक आदमी पूछ रहा था आपसे कि आप हमको पहचानती हैं, तो आप बताए कि हाँ हम पहचान रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हैं
0: जी,
1: है ना। तो हाँ, तो इससे हमको पता ये चला कि आप हर कंज्यूमर जो भी कॉल करता है उसको आप पहचानती है कि फलाने जगह का है, फलाने जगह रहता है ना, तो ये आवाज से आप पहचानती हो, इतना तो सही है ना कि आप पहचान जाती है। हम कहाँ कराने वाले हैं मैडम?
0: छतरपुरा से।
1: अरे वाह, याद कर लिए आप। चलिए मैडम, तो अच्छी बात है, आप बताइए वो गाना।
0: ओके तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ओके थैंक यू,
0: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527 88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527 88291 या 95238 74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
1: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
3: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है, ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
2: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: सुनिए,
1: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
1: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84 7 10 30 9 92 या 90 7 65 65 7 50।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए। अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़ और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।

0: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल हो ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर,

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमलश्री में।
5: जी हाँ, कमलश्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
7: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
6: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
7: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
6: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
7: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
6: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
8: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388894704 या 9198886973।

0: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
1: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
0: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
1: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
0: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
2: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
3: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
2: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
3: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
2: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
3: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
4: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
5: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
4: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
5: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
4: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
5: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
4: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
5: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स NH27 चैन पट्टी गोपालगंज।
6: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
7: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज या कॉल करें 86034 48652 पे।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
2: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
2: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
2: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
4: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886973।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ऑनली ऑन रेडियो रंजीन 90.4 अमर।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
1: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587। दिल बोल।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
5: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
6: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
5: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
6: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
5: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।

0: लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
1: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर से सस्ता कहीं नहीं।
0: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
1: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
0: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
1: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
0: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
1: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
2: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
2: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।

0: ठक ठक।
1: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमलश्री में।
3: जी हाँ कमलश्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
2: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमलश्री में।
3: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ कमलश्री, कमलश्री, कमलश्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
5: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
6: भरोसे वाले से लेंगे,
5: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
6: और कीमत भी।
5: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
7: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
8: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
3: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
1: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
3: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
9: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
3: कॉल करें 85070-32042 पे।

0: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923। दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
3: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
3: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
3: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पर शिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388889470 या 9198886973।
4: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9522874088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9067665795।

0: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो? उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
5: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
5: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
5: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।

0: मोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच, गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198886986।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
1: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
1: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
1: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
1: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765

0: becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. And IMD forecasts heavy rainfall of Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तटीय आंध्र प्रदेश कर्नाटक केरलम तमिलनाडु पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने और उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्ति युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा

0: सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
1: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
2: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
3: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोंस्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोंस्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
2: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNews हिंदी और पब्लिक पर @AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
5: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
6: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायुसेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक

0: स्थिरता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमरीका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
2: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले दो महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए मनीष शिवा।
1: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
4: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3 जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा। शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
8: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
9: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-0-97-06-575।
10: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
11: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
10: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
11: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
10: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
9: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
8: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
9: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
8: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
9: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
8: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
9: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
8: कॉल नाउ 96-56-59-536 या 96-56-57-902।

हेलो प्रणाम नमस्ते नमस्कार कैसन बानी रउआ सबे। उम्मीद करतानी रउआ सबे ठीक होखेम। हम है रउआ सबके दोस्त आरजे भारती और रउआ सब सुनतानी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गेल बा रउआ सबके मनपसंद कार्यक्रम भोजपुरिया एक्सप्रेस के। तर ट्रेन निकल चुकल बिया। यदि रउआ सभी ट्रेन में सवार होके के चाहत हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 98 52 78 82 91 तो जुड़ सकता नहीं। और कॉल करे खाती माध्यम बावे 72 77 16 65 96। तो चली लो बिना देरी कैले कार्यक्रम के शुरुआत कैल जाओ। तो रउआ सबके खातिर हमारा तरफ से एगो प्यारा सा गीत प्ले करते नहीं। और गाने के बोल बा फजल वाड़े राजा जी। तो गाना प्ले करते हैं करते हुआ गाना प्ले करते नहीं। एंजॉय करी सब रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

अभी हमनी के सुनत रहनी आसन हमरा तरफ से एगो प्यारा से गीत फसल बड़े राजा जी गोल्डी यादव के, और यही के साथ ही बढ़ल जाइए आगे। और यहाँ हमरा पास काफ़ी सारा मैसेज पहुँच चुकल बा, जे कि लिखत आने की भारती जी नमस्कार, हम सुबोध साहू बेगूसराय बिहार से जुड़ल बानी और हमरे एगो गाना सुने के बा और व्हाट्सएप पे रोवा लिंक भेज देले बानी, धन्यवाद। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़ल बानी और गाना सुने के बावे। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत आनी कि दिलीप जी जुड़ल बानी और यहाँ लिंक के माध्यम से गाना पहुँचल बा जे कि गाना प्ले कर जाइए। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ पे अगला मैसेज पहुँचल बा, लिखत है नहीं कि हम भी आ गल बानी रोवा चैनल पर मन के लुभावे वाला गीत के शो में, कपिल विश्वकर्मा कोटा राजस्थान से जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा वैजे की, लिखत है नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से जुड़ल बानी और पूछे तनी का हाल चाल बा और गाना सुने के बावे सुना दी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना प्ले कर जाइए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा हमरा पास जे के लिखत है नहीं कि गुड आफ्टरनून। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और मैसेज करे वाला के तो नाम हमके थोड़ा कंफ्यूज हो गई बानी ये पारी, तो वह नाम जरूर बताई। और यहाँ अगला मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से जुड़ल बानी और लिखत है नहीं भारती जी प्रणाम, तो रो के हमार प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत बाई शो में रहुआ भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाई जे कि लिखते नहीं हेलो सर, हम राकेश शर्मा अहमदनगर से, अहमदनगर महाराष्ट्र से जुड़ल बानी और एक न्यू गाना बा खेसारी लाल के सुने के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, गाना प्ले हुई। और यहाँ मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखते हैं जी मैम नमस्ते, गुड आफ्टरनून मैम, हमू आ गल बानी और हमरो हाजिरी लगा दी, वाओ सुपर सॉन्ग, बहुत ही खूबसूरत और नया माल पिया। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और मैसेज करे वाला बानी उत्तम सोनी जी और मैसेज पहुँचा रहा यहाँ मुस्तफ़ा सऊदी अरब से जुड़ा रहनी हमनी के साथ है। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यही के साथ ही यहाँ गाना के फरमाइश पहुँचल बा हमरा पास जे के लिखत नहीं मैडम जी नमस्कार, हमनी के रोवा कार्यक्रम से जुड़ गल बानी सन और कार्यक्रम हमनी के गीत के फरमाइश करे के बा और गीत के बोल बा जिस दिल में तुम बसती हो। और उमा शंकर सिंह जुड़ल बानी, अवंतिका सिंह, अर्चित सिंह रुद्रपुर भूमि देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ल बानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और आपके गाना चली प्ले करता नहीं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और गाने के बोल बा जिस दिल में तुम बसती हो और मनी मिराज के गाना है। तो इन्जॉय करी सबे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में प्यारा सा गाना।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: दादी आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी अब डरने की जरूरत नहीं है, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में

0: डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार रोवा सबके भोजपुरिया एक्सप्रेस में, और रोवा सब सुना तनी रेडियो रिमझिम 91.4 FM। तब बिना देरी के ले आगे बढ़ल जाओ, और ये हमरा पास यहाँ बहुत सारा फरमाइश पहुँचल बा। पर उससे पहले यहाँ जेकर गाना प्ले कर ले रही हैं, जैसे कि उमा शंकर जी सिंह जी के, और वहाँ के तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँच गई बात, तो चलिए प्ले कर जाओ और जाना जाओ कहाँ बावे यहाँ के फीडबैक मैसेज।
6: मैडम की सुन के मजा आ गया, मेरा नाम अवंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ।
7: मैडम गीत सुन के मजा आ गई, मेरा नाम अलची सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा
5: हूँ। और यहाँ काफी खूबसूरत खूबसूरत आवाज में मैसेज पहुँचल बा, और काफ़ी बढ़िया लागल सुन के। और यहाँ हमारा पास अगला मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखत है नहीं कि हाय नमस्ते, हम JP तिवारी का हाल चाल बा, हम इक्वेटोरियल गुनिया से सुनत आनी, और शंकर महादेव के गणेश वंदना के गीत सुना दी तो बहुत मेहरबानी हुई आपके भारती जी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ अगला मैसेज हमारा पास पहुँचल बा, जे कि लिखत यानी उत्तम सोनी जी की, उमा शंकर भैया नमस्ते, बहुत ही अच्छा गाना ले आइल बानी, नाइस। और यहाँ अगला मैसेज हमारा पास पहुँचल बा, जे कि लिखत यानी हेलो मैम नमस्ते, हम अंकित राय गोपालगंज से, और हमरो एगो गाना सुने के बा। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी, और आपके भी गाना प्ले कर जाए। पर उससे पहले यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा, जे कि लिखत आने की राकेश शर्मा अहमदनगर से जुड़ल, अहमदनगर महाराष्ट्र से जुड़ल बानी, और गाना सुने के चाहत यानी खेसारी लाल के नया सॉन्ग। तो चलिए रोगा खातिर खेसारी लाल के नया सॉन्ग प्ले करतानी, और गाना के बोल हा किस तेरी रानी लड़ेगी। तो एंजॉय करी सभी इस ये गाना।

0: करे के बात डर
1: तभी हमने के सुना त्रिनियासन काफी खूबसूरत से गाना केस तेरी रानी लड़ेगी और खेसारी लाल यादव रोशन रोही नीलम गिरी की आवाज में गाना रहल हवे काफी खूबसूरत सा। और एक साथ ही यहाँ हमारे पास मैसेज पहुंच गल बा राकेश शर्मा जी की तरफ से जेके लिखा था नहीं थैंक यू गाना बजाने के लिए। और यहाँ अगला मैसेज पहुंचल बा जेके लिखा था नहीं कि हाय दी लिखा था नहीं कि गुड़ छूके प्रणाम हम करिश्मा कुमारी। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी प्रणाम और पिपरा नारायण से जुड़ल बानी। और यहाँ पे मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं मोतिहारी से एमडी मीनू और गाना सुने के चाहत नहीं। तो बहुत बहुत स्वागत बा और आपके भी गाना प्ले हुई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि बहुत ही अच्छा चल रहल बा भोजपुरी गीत और का हो उत्तम भाई का हाल चाल बा हो। और मैसेज करे वाला बानी उमा शंकर सिंह जी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा हमरा पास जे कि लिखत आने की सरफरोज जी मैसेज के लिए बानी लिखत आनी कि मैम हमार कब बाजी। तो जी बिल्कुल आपके भी गाना प्ले हुई पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचल बा हमरा पास जे कि और मैसेज से पहले यहाँ हमारे पास कॉल पहुँचल बा तो चलिए लिखल जाओ कॉल और जानल जाएगा यहाँ का फरमाइश। हेलो
2: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्ते बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
2: हम से बोल रहे हैं रामाजी प्रसाद।
1: हाँ जी का हाल चल बा।
2: हाल चाल ठीक बा तीनों अच्छा बल बा।
1: तब
2: गाना सुना दे
1: बता दी
2: हमला करा प्रिया भौजी बसल रहे परेशानी से।
1: और गाना क्यों के सुना हूँ के बा जी तर और गाना प्ले करता नहीं एंजॉय करी रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।

0: सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
4: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 86034-48652 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: छोटे से ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बार रवा सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में। तो और रवा सब सुना था नहीं, रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ मैसेज की तरफ। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँचल बा, जे की लिखत है नहीं कि लिखा था नहीं कि हमरो गाना बाज जाओ मैम। तो जी बिल्कुल, आपके भी गाना बाजी और मैसेज करे वाला बानी अंकित राय जी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा, जे की लिखत आ नहीं कि और यहाँ उमा शंकर जी की तरफ से फीडबैक मैसेज पहुँचल बावे वॉइस के माध्यम से। तो चलिए प्ले करते नहीं और जानते नहीं का बावे फीडबैक मैसेज।
6: मैं मैडम गीत सुन के मजा आ गया, मनोज तिवारी का। मेरा नाम अर्जी सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ।
7: मैडम गीत सुन के मजा आ गया, मेरा नाम अवंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। मैडम हम कल कल नींबू खा रहे, आप भी आइए खाइए। मेरा नाम अवंतिका सिंह है, मैं देवभूमि उत्तराखंड से बोल रही हूँ, और ये बहुत मीठा है।
5: तो जी बिल्कुल आप खाइए। और आप और रवा पूछ देनी तो हमहू खा लेनी। और यही के साथ है जे की हमरा पास अगला मैसेज पहुंचल बा, लिखत है नहीं कि संजय यादव जी की अच्छा गाना बा मैम। और यहाँ मैसेज पहुंचल बा हमरा पास जे की लिखत है नहीं, हेलो मैम नमस्कार, हम रमेश थावे से बानी और अभी हम महाराष्ट्र सांगली जिला में बानी। और हमारा साथ है हमार दोस्त रहे लालो, और दोस्त के नाम मुकेंद्र, दिलीप, अरविंद्र। और हमके भी एक गाना सुने एक बार। तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी, और आपके भी गाना प्ले कर जाइ। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा हमरा पास जे कि लिखत है नहीं, गणेश कुमार पिपरा नारायण से जुड़ल बानी और लिखत है नहीं का हाल बा भारती दी, जरूर बताएं। तो जी हमार हाल तो ठीक बा, रुआ बताएं रुआ कैसन बानी। और यहाँ हमरे पास जे की अगला गाने की फरमाइश पहुंचल बा धनेश जी की तरफ से, जे की गाना सुने की चाहत है नहीं और काफ़ी खूबसूरत गाना की फरमाइश बा। और गाना की बोल बा सब कहेला कि बहुते सुगर बाड़ू तू। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले करता नहीं और इन्जॉय कर जाऊँ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में सबके साथ।

0: तो अभी हमनी के गाना सुनत रहनी असन धनेश जी के तरफ से, और काफ़ी खूबसूरत से गाना रहल है। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जी की लिखत है थैंक यू गाना बजावे खातिर। और यहीं के साथ ही हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है हेलो हाय भारती जी, हम कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से और भोजपुरिया प्रणाम बा, हमारा गाना बजा देम। तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी प्रणाम। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है हमार मैसेज बोल के गाना ना बजौनी कब बाजी त रो गाना बाजी। और रो ले पहले यहाँ एक दो गो गाने की फरमाइश पहुँचल बा पहले वो प्ले कर ली। और यहाँ एक ही साथ है हमारा पास कॉल के माध्यम से गाना के फरमाइश पहुँचल बा, तो चलिए लिखल जाओ कॉल और जानल जाओ का बा यहाँ के फरमाइश। हेलो
1: वादा कईल के तर डाली उनकर नेकी ने कर्जा के तर भरी, कहे में बड़ा अजब लागे उनका प्यार में हम ना के तर कही। नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रिमशिल 90.4 एफएम में।
1: कैसा बानी?
0: हम तो ठीक बानी, रोगा बताई रोगा कैसन बानी?
1: हाँ ठीक बानी। तो चल रहा मजबूरी करे कोने हम लोग लगाई भाई कॉल। हम वो गाना बाज जाओ बहुत दिन हो गए।
0: जी जी हम आज बहुत दिन के बाद सो चालू कैले बानी। हाँ हाँ माँ ठीक बानी। हाँ सबके ठीक बा। अच्छा जी, और गाना क्यों के सुनाऊं के बाद अच्छा जी के धोखा दे दिले बाजी अच्छा जी चलिए कोनो बात नहीं है, चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। नमस्कार।

0: शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ,
1: भरोसे वाले चलेंगे,
0: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
1: और कीमत भी।
0: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
2: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
3: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
2: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
4: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
2: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज,
5: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
2: कॉल करें 85070-32042 पे।
6: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
7: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
6: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
8: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
6: संपर्क करें 9939365923।
9: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
10: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
9: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
10: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरुआ सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में और रवा सुना तनी रेडियो रमजन 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए बढ़ जाऊँ आगे और यहाँ हमारा पास अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि मैसेज पहुँचल बा दिलीप जी की तरफ से जे कि लिखा था नहीं कमरान भाई डिजिटल जमाना बा प्यार में धोखा मिलेला। पर यहाँ मैसेज पहुँचल बा कि जे कि लिखा था नहीं कमरान भाई के बेस्ट फ्रेंड धोखा दिए हैं और उमा शंकर सिंह अवंतिका सिंह अर्षित सिंह रुद्रपुर भूमि देवभूमि उत्तराखंड से जुड़ल वानी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा हमारे पास जे कि लिखत है नाइस सॉन्ग जब शान देवे के न रहल भोजपुरिया सलाम बा आपके और आपके का हाल बा हम भी फरमाइश कर सकता नहीं। और मैसेज करने वाले करे वाला बानी सानिया सैफे जी तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और जी रो

सुने के चाहत नहीं, और गाना के बोल बावे दिलवा सवतिया से जोड़ डाला। तो चलिए बिना देरी के ले रहा और गाना प्ले करते नहीं और इन्जॉय करते नहीं रेडियो।

तभी हमने के सुनत रनी आसन सुबोध साहू जी की तरफ से काफी खूबसूरत से गाना दिलवा कोना सतिनिया साथे जोड़ी हलाना और एक साथे बढ़ल जाई आगे और यहाँ मैसेज पहुंचल बा जी की लिखत आने की नमस्ते मनोरमा मैम कैसन बानी और हम सिद्धार्थ बरौली से जुड़ल बानी अब भी हमें अभी हम अपना दोस्त लोग के साथ भजपुरिया एक्सप्रेस के मजा लेत बानी और मैम गाना सुने के बा तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी और आपके भी गाना प्ले हुई पर उससे पहले यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे के लिखतन जी मैडम जी नमस्कार प्रणाम हम मिथिलेश चौहान और हिजरा नवादा से भजपुरिया एक्सप्रेस में जुड़ल बानी और भजपुरी गाना सुने के बा तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना प्ले हुई और यहाँ मैसेज पहुँचल

गौतम सोनी जी के तरफ से जे की लिखा था नहीं, वहाँ खूबसूरत मैसेज, खूबसूरत गाना चला था। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखा था नहीं कि सानिया सैफी जी के तरफ से भी गाना पहुँच चुकल बा और वहाँ के भी गाना प्ले कर जाए। और उससे पहले जे की यहाँ गाना पहुँचल बा जे की सरफरोज अली गोपालगंज से जुड़ल बानी और काफ़ी देर से मैसेज कैले बानी, तो चलिए बिना देरी कैले रहो गाना प्ले हो जाओ। और यहाँ के तरफ से गाना के बोल बा तू सनम बेवफा हो गईलू पवन सिंह की आवाज़ में, तो चलिए रहुआ खातिर गाना प्ले करता नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

0: ओ जी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया घूम लेनी नु सारा मार्केट देख लेनी नु सारा बाजार कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
1: अरे ना देवर जी कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री कमल श्री कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा दुल्हन के लिए साड़ी सूट पीस लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ कमल श्री कमल श्री कमल श्री सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए बारी मार्केट फर्स्ट फ्लोर।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द माइग्रेन चक्कर आना मिर्गी की दौरे झटके सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर फालिज साइटिका न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पादरी बाजार गोरखपुर। कॉल 9170 8565 87।

ब्रेक के बाद रघुवा सभी के फिर से स्वागत पा भोजपुरी एक्सप्रेस में आ रघुवा सुनत बानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हम है रघुवा सभी के दोस्त आरजे मनोरमा और वह सपना तनी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और हमारे पास और हमारे पास बहुत सारा मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखत बानी धन्यवाद मैम गाना बजावे खातिर 3 मिनट पहले बजा दिले बानी तो इससे कोनो बात नहीं है और गाना इंजॉय करनी है। लेकिन एक बात पूछ कर लड़ू वैसे कि इतना सैड सैड गाना कहे सुना तनी कुछ तो बात बा जरूर बताएं। और हमने संग के पास एक और मैसेज पहुँच चुकल बा जो कि लिखत बानी जी मैडम जी हम मिथिलेश चौहान इजरा नवादा से हमके गाना सुने के बाद और गाना के वो लिंक के माध्यम से भेज ले बानी तो बहुत बहुत स्वागत बा रुआ के भी। और हमने संग के पास एक और मैसेज पहुंच चुकल बा जो कि लिखत बानी सन्यासी भाई से मिल के तबीज बनवा लीजिए भाई उसके बाद कॉल आना जारी हो जाएगा। तो बात तो बिल्कुल सही बराबर

टाइप करत रही हो तो कुछ गलत हो जाए तो माफ़ करे मोर, ऐसे कोनो बात नहीं है, कुछ गलत टाइप नहीं है भैया। और यहाँ अगला मैसेज हमारा पास पहुँचल बा जे कि लिखत है ने दिलीप राम जी की, भारती जी नमस्कार, सभी दोस्त को नमस्कार, और हमरो गाना सुने एक बार और गाना के लिंक भेज दिले बानी और आप सुना एक बार। आपके सोनू भाई, मनोरमा जी, सोनी जी, अफसर भाई, शाहजहाँ जी, सगुप्ता जी, ब्यूटी परवीन जी, शाहजहाँ जी, रुखसर जी और राम कुमार पांडे जी, कमरान भाई, सविता जी, बबीता जी, गुड़िया जी, गजाला जी, अख्तरी जी, अहमद भाई, खुशबू जी, सागिर अंसारी, अहमद भाई, सन्यासी भाई, समीर भाई, मुकेश भाई, गट्टा भाई, रोशनी जी, गुड़िया जी, वीरेंद्र भाई जी, गुलाम हुसैन जी, सबके सखी सहेली के सुनाएक बा। और दिलीप राम जी की तरफ से मैसेज पहुँचल बा और यहाँ के तरफ से गाना के फरमाइश लिंक के माध्यम से पहुँचल बा और गाना की बोल बावे बहे नैना से लोर। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाना प्ले कर जाऊँ और इन्जॉय कर जाऊँ। रेडियो रमझिम

अभी हमने के बहुत ही खूबसूरत सा गाना सुनत रहनी है ईशान, और जे गाना प्ले करवैले रहनी है उनका नाम है दिलीप राम दिल्ली से, और वहाँ के तरफ से मैसेज पहुँच गया बा जो कि लिखत बानी बहुत बहुत शुक्रिया शामिल करे खातिर। और एक बात पूछे कर कि रहुआ इतना सैड सैड गाना मत भेजल करी लो तनी। कि जेके भी देखा था नहीं सर सबके बाद सैडे मूड में रहता तो तनी अच्छा वाला गाना के फरमाइश करी लो ताकि हमने के सुन के खुश हो जाए सर। और हमने के पास एक और मैसेज पहुंच चुकल बा जो कि मैसेज करे वाला बानी मुकेंद्र कुमार कुशवाहा बंजारी से, अभी दुबई से सुनत बानी, और यहाँ के गाना बा लैका तोहरे के पापा कहा था नीलकमल जी की आवाज़ में। तो चलिए प्ले करते हैं और गाना के और इन्जॉय करिए गाना के, बहुत ही खूबसूरत सा गाना बा।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
2: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
3: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
3: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
1: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूं?
3: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहां दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
4: यहां सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
3: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
4: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
3: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
4: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
3: संपर्क करें 84710309 या 9765667।

फिर अभी हमने के बहुत ही खूबसूरत गाना सुनत रहनी सन और जे के गाना रहा गाना के समय मुकेंद्र कुमार जी के तरफ से रहा जो कि लिखत बानी वाह दीदी दिल खुश हो गया।

अभी हमने के सुनत रहनी सुन बहुत ही खूबसूरत सा गीत हम ही जी पिया जी के पत्री थ्री बा और मैसेज पहुंच चुका बा जो कि लिखा था नहीं कि थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद दीदी गाना बजाए खातिर। और एक और मैसेज पहुंच गया बा जो कि लिखा था नहीं, नमस्कार मनोरमा जी भोजपुरी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है और प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा बा हमें भी गाना सुनना है तो बहुत बहुत स्वागत बा राहुल भी। और गाना सुनाने से पहले हमारे पास बहुत सारा मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखत बानी

और हमारे पास एक और मैसेज पहुंच गया बा जो कि लिखत बानी मनोरमा मैम नमस्ते कैसन बानी। तो जी बिल्कुल बढ़िया बानी और मैसेज करे वाला बानी उत्तम सोनी जी। और एक और मैसेज पहुंच गया बा जो कि लिखत बानी मनोरमा मैम नमस्ते का हाल बा। तो जी हाल चाल तो हमारा ठीक बा, अपन बताएं कि रहुआ कैसन बानी। और मैसेज करे वाला बानी संजय यादव दुबई से। और यहाँ पर मैसेज पहुँचल बा जो कि लिखत बानी कि हमार गाना बजा दी। और मैसेज करे अलाबानी पवन सा ग्राम मड़ैया खगड़िया बिहार से। और गाने सुने के चाहता नहीं लॉलीपॉप लागे लूँ। तो चलिए चलिए बहुत ही प्यारा सा गाना बा झनकार। तो चलिए इंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4 FM पे।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
5: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
4: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
5: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
5: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार्य एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
5: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: छोटा सा ब्रेक के बाद फिर से स्वागत बरवा सबके भोजपुरी एक्सप्रेस में। तो रवा सबे सुनत यानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी के लिए बढ़ल जाऊँ आगे और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बात जी की लिखत आने की। थैंक यू जी गाना प्ले करे खातिर मनोरमा मैडम। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बात जी की लिखत आने की। लिखते नहीं कि गुड सॉन्ग पटना से पाकिस्तान, इहो गाना बहुत मस्त बा, पवन सिंह के सुपर बाजी वाला गाना बा। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने की। हेलो नमस्ते प्रणाम, हम विशाल कुमार गुप्ता सुपौलवा गोपालगंज से, और हमरो गाना सुने के बा पवन सिंह की आवाज़ में, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और अपना दोस्त के गाना सुनावे की चाहत यानी अंकित, पवन, विशाल, विकास, अंकुश, अभिषेक के, तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी। और

और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी के लिखत रही, नमस्कार नमस्कार भारती जी, का हाल चाल बा? हम जयप्रकाश तिवारी अहियापुर गोपालगंज से हैं, अभी हमने के गिनी देश से में बानी, और हमारा साथ है नंदन उपाध्याय जी, रवि उपाध्याय जी, छोटे छोटन दीक्षित जी आ संतोष पांडे जी बानी, और हमने सभी के गाना सुने के बावे। तो बहुत बहुत स्वागत बा जी आपके, भी गाना प्ले हुई, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जी के लिखत नहीं कि मनोरमा जी, भारती मैम जी, आप दोनों के आदाब और मैसेज करे वाला बानी नौशाद, मोहम्मद नौशाद और मोहम्मद सादाम, और बंजारी बजाजी रोड लालगंज से जुड़ल बानी,

अभी हमने के सुनत रनिया सन काफी खूबसूरत से गाना खुशी कक्कर के काला चश्मा। और यहाँ हमारे पास मैसेज पहुँच गई बाजे की लिखत संजय यादव जी, धन्यवाद मैम गाना बजावे खातिर। और यह मैं

देम। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जैकि लिखत आने कि ना 4 बजे तक सो ना विदाई हुई 5 बजे हुई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जैकि लिखत आने कि गाना यही गाना बजा देम, गाना भेज दे बानी। और यहाँ अगला मैसेज हमरा पास पहुँचल बा जैकि लिखत आने कि हाय गुड इवनिंग मैम, हम टुनटुन यादव विलेज पठानपट्टी पोस्ट

बुलाए जाए उनको। और उमा शंकर सिंह रुद्रपुर देवभूमि उत्तराखंड से लिखले बानी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि कृष्ण मोहन सिंह सिपाया खास से जुड़ल बानी, भोजपुरिया प्रणाम बावे और गाना सुने के चाहत आनी और गाने के बोल बा चांद जैसन चेहरा तोहार दिल हमार ले गई। और काफ़ी खूबसूरत गाना बा, तो चली बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

से ब्रेक के बाद आप सबके फिर से स्वागत बार रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। और बिना देरी के लिए बढ़ल जाओ आगे। और यहाँ हमारा पास मैसेज पहुँचल बाजे के लिखत आनी कि दिलीप जी मैसेज करे वाला बानी और लिखत आनी उमा शंकर भाई आप अपने बीबी के पनीर नहीं की खिलावत तो तबीयत खराब हो जाता भौजी खातिर और रोवा खातिर गाना रहल हा दिलीप राम की तरफ से। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे के लिखत आनी कि मिथिलेश कुमार शर्मा भोजपुरिया प्रणाम बा घर लोही जारा गाना सुने के बावे। और यहाँ काफ़ी खूबसूरत गाना के फरमाइश पहुँचल बा तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी और आपके भी गाना के फरमाइश पूरा कल जाए। और यहाँ मैसेज पहुँचल बाजे के लिखत आनी जयप्रकाश तिवारी जी की हम सबके गाना के बाजे के इंतजार बा बेसब्री से। तो जी बिल्कुल आपके भी गाना के फरमाइश पूरा

0: तभी हमने के सुनत रही सन काफी खूबसूरत से गाना और गाना के बोल रहल है तोहर मीठी मीठी बतिया। और एक साथे बढ़ल जाइए आगे और यहाँ हमरा पास मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने की शुक्रिया दिल से गाना बजावे खातिर और मैसेज करे वाला बानी सानिया सैफी जी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आने की हेलो मैम हरे राम शर्मा आज आप दुआ प्रोग्राम से अभी अभी करीब 10 मिनट पहले से सुना तानी कार्यक्रम के थोड़ा आज भूल गए रही है रेगुलर ना सुने नहीं लेकिन आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा लागल है तो हम सब लोग आपके परिवार के साथ अपना परिवार के साथ है आपके प्रोग्राम में केवल रविवार के दिन सुन पावे नहीं सन और वही दिने हमने की एक साथे रह नहीं सन बाकी दिने बच्चा लोग और सब स्कूल में रहेला और आपके संडे के प्रोग्राम बहुत मनोरंजन और आनंददायक होला। आज हमरा बच्ची परी और काजल शर्मा के एक पसंद के गाना बा तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ अगला मैसेज जन हमरा पास पहुँचल बा जे कि कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा तो चली लिहल जाओ कॉल और जानल जाओ का बा यहाँ के फरमाइश। हेलो वालेकुम अस्सलाम बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: कैसन बानी जी?
0: हम तो ठीक बानी रोबा बताई रोबा कैसन बानी?
1: ठीक बानी हम बड़ा इंतजार करा रही।
0: अच्छा जी ना ऐसा कोनो बात नहीं है का कह जाऊं आज के दिन तो सब के ओके फ्री छोड़ल जाला तो मैसेज पे मैसेज लगातार आइबे करला। ना तड़पाए वाला कोनो बात नहीं है यहाँ सबके ओके फरमाइश देखल जाता और लाइन बाय लाइन प्ले कर जाता।
1: और सब बताएं?
0: और सब ठीक बा। तो रुबा बता दी कौन सा गाना सुने आज? जी ना ऐसा कोनो बात नहीं है आप लोग अपना पसंद के गाना जरूर प्ले करवा सकते नहीं बताएं कौन सा गाना ना यहाँ के पूछे के मतलब रहल आज हमरा सारा लिसनर लोग के का हो गई बा काहे इतना सैड सैड गाना सुना था नहीं लो।
1: अच्छा जी
0: जी जी
1: कौन सा गाना बजा दी
0: तो बता दी अच्छा जी अच्छा तो नंबरो बता दी कौन मोबाइल रख ले वानी हाँ तो का हो गई बा चलिए ठीक बार और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388894470 या 9198886973। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
2: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
2: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
2: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
3: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
3: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
3: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8665
3: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।

ब्रेक के बाद फिर से स्वागत कर रहा सभी के भोजपुरी एक्सप्रेस में और सुनत बानी रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो अभी हमने के सुनत रहनी है सान बहुत ही अच्छा गाना जो कि बताइले रहनी है कि नंबर बताओ तो हर का हो तो वहाँ के नंबर तो 00011 जब भी लगाई तब

अभी हमने के सुना रनी आसन सुना परदेसी बलम गाना और मैसेज करे वाला रनी है इट साथ मास्टर ग्राम धनाव से और साथ में यहाँ के जुड़ा रनी है रोशन टेलर में नौशाद भाई पीरू भाई अरमान भाई मुन्नी मुबीन भाई असलम भाई सभी लोग आपके कार्यक्रम सुन रहल है जी। और यहाँ अगला मैसेज और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि लिखत नहीं गाना बजावे खातिर बहुत बहुत शुक्रिया मनोरमा जी आज घर छोड़ के आजा घर छोड़ के तू दिल्ली से बहुत शुक्रिया मैडम जी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत आनी कि अभी तक हमार गाना ना बजेनी और ये दोस्त के भी नाम ना लेनी जी। तो गाना और प्ले हुई और मैसेज करे वाला बानी मिथिलेश कुमार शर्मा और डेडिकेट कीजिए बानी गाना अपना दोस्त सबके दिनेश सचिन अमरजीत धर्मेंद्र के। तो बहुत बहुत स्वागत बा आप सबके भी। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जी की लिखत है कि बहुत बहुत धन्यवाद जी गाना सुनावे खाती। और एक ही साथ ही यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जी की लिखत आने की सिद्धार्थ बरौली से जुड़ल बानी और अपना दोस्त सबके भी गाना सुनवाए के चाहत है। और गाने के बोल बा शिल्पी राज की मर्दा पर केहू ताकि और डेडिकेट बा रवा के भारती मैम के और सोनू भाई और हमारा दोस्त सबके सभी रेडियो रिमझिम सुनने वाला भाई सबके। तो चलिए बिना देरी के लिए रवा गाना के प्ले करते नहीं और एंजॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आएं गुप्ता ज्वेलर्स मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575। त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
2: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
3: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
2: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
3: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
2: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
3: अभी कॉल करें 92-899-22567 या 97-714-86165
2: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी, गोपालगंज।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: छोटा सा ब्रेक के बाद आप सबके फिर से स्वागत बा रेडियो रिमझिम 90.4 FM में, और सो चला था भोजपुरिया एक्सप्रेस। तो बिना देरी के लिए बढ़ल जाइए आगे, और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आनी की थैंक यू मैम गाना प्ले करे खातिर, और मैसेज करे वाला बानी सिद्धार्थ बरौली से, और काफ़ी खूबसूरत गाना रहल है। और यही के साथ ही मैसेज पहुँचल बा प्रसाद मास्टर जी की तरफ से, जे की लिखत आनी कि आवाज़ में प्रॉब्लम नहीं है, तो वह सबके गाना काटत है नहीं, वही में प्रॉब्लम बा। तो जी हम गाना ना कटनी आ राउर और रुआ, आज के दिन थोड़ा बहुत तो काटे ही पड़ला, काहे से कि आज सबके होके गाना के फरमाइश करे के रहल हा, फरमाइश के पूरा करे के रहल हा, वही से गाना थोड़ा बहुत काटल जाला और सबके मैनेज करे के बना यही में यही से। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि हाय दीपक कुमार, छपरा जिला बिहार से जुड़ल बानी, तो बहुत बहुत स्वागत बा आपके भी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखा था नहीं कि गुड इवनिंग, हम टुनटुन यादव विलेज पैठान पट्टी पोस्ट पटरा जिला गोपालगंज से जुड़ल बानी, और हमके भी गाना सुने एक बा और गाना के बोल बा सनम दूसरा के दीवाना भेल बा, और काफ़ी खूबसूरत गाना बा। तो चलिए बिना देरी के लिए रुआ गाना के प्ले करता नहीं और इन्जॉय कर जाओ रेडियो रिमझिम 90.4।

अभी हमनी के सुनत रहनी असन काफी खूबसूरत से गाना सनम दूसरा के दीवाना भइल बा कल्पना पटवारी की आवाज में। और यहाँ मैसेज पहुंच चुकल बा जे की लिखत आने की, थैंक यू मैम गाना बजावे खाती। और मैसेज करे वाला बानी टुनटुन यादव फ्रॉम सूरत गुजरात से। टुनटुन यादव फ्रॉम पठानपट्टी पोस्ट पटरा जिला गोपालगंज बिहार से। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत आने की, सनम दूसरा के दीवाना भइल बा सुपर सॉन्ग मनोरमा जी। और मैसेज करे वाला बानी इरशाद मास्टर जी। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे के लिखत नहीं कि हमार गाना ना बाजी मैडम जी का आज तनी बजाई महाराज मैडम जी मिथिलेश चौहान जी हम बोला तानी। तो बहुत बहुत स्वागत बा जी आपके भी गाना के फरमाइश के पूरा करे के बहुत कोशिश बावे। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे के लिखत आने की, मैडम जी हमार गनवा बजा दी ही। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे की लिखत नहीं रमेश थावे से बानी। और हम भी हम महाराष्ट्र सांगली जिला में बानी। और हमारा साथ है दोस्त रहे लालो दोस्त के नाम मुकेश दिलीप अरविंद बावे। और गाना सुने की चाहत आनी ती यहाँ लिंक के माध्यम से फरमाइश पहुँचल बा और गाने के बोल बा। मर जा राजा हमरा पे और खेसारी लाल यादव और शिल्पी राज के गाना बावे। तो चलिए बिना देरी के लिए यहाँ के गाने के प्ले कर जाओ।

तो अभी हमने की सुना त्रिणी हसन काफी खूबसूरत से गाना खेसारी लाल यादव के और शिल्पी राज के मर्जा राजा हमरे पे और मैसेज करे वाला रनिहा जे की रमेश थावे से जुड़े रनिहा और यहाँ मैसेज पहुंचल बा जे की लिखत आनी उमा शंकर जी की बहुत ही अच्छा गीत चलता और यहाँ अगला मैसेज पहुंचल बा जे की लिखत आनी कि हमने की बहुत देर से इंतजार करता नहीं प्लीज हमने के गाना बजा दी और यहाँ के बच्ची परी और काजल शर्मा की एक पसंद के गाना बा और गाना के बोल बा नौकरी नौकरानी बना के रख ल तू और पवन सिंह के गाना हो और गाने के बोल हा अहू राजा तो चली बिना देरी के लिए यहाँ के गाना के प्ले कर जाऊँ।

तभी हमने के सुनत रहने सन काफी खूबसूरत से गाना आहो राजा पवन सिंह के। और यहाँ मैसेज पहुँच गई बा जे कि राम शर्मा जी लिखत यानी कि थैंक यू गाना बजावे खातिर, खुश हो गई बच्ची हमार और डांस कर तारी। होम थिएटर के लाउड साउंड पर। और चलिए बहुत ही अच्छा लागल सुन के कि आपकी बच्ची खुश हो गई। और यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे कि लिखत यानी मैडम जी हमार गाना बजा दी, सप्ताह में एक दिन मिला था रेडियो रिमझिम सुने के। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा। अरे यहाँ मैसेज पहुँचल बा जे के लिखा था नहीं कि भारती जी ऐसे ही लागल रही बहुत अच्छा चला था सो और मैसेज करे वाला बानी धनेश जी। और यहाँ बाय बाय के मैसेज सबके तरफ से पहुँच रहल बा और मैसेज करे वाला बानी कि इरशाद मास्टर बाय बाय। और यहाँ अगला मैसेज पहुँचल बा जे कि गाना के फरमाइश कैले बानी। और यहाँ मैसेज पहुँच चुकल बा जे कि लिखत नहीं धन्यवाद भारती जी गाना प्ले करे खातिर और बड़ा देर से मैसेज पहुँचल हा। और यहाँ चली लो बिना देरी के लिए कार्यक्रम के समाप्त कर जाओ। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़े के चाहते हैं तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9852788291 पे जुड़ सकता नहीं और कॉल करे खाती हमारा नंबर बा 7277165। तो चलिए लो बिना देरी के लिए कार्यक्रम के समाप्त कर जाओ। और यहाँ जे कि हमारा तरफ से अगला गाना के फरमाइश पहुँच रहा है विकी चौहान रामचंद्रपुर से जुड़े रहनी है और गाना सुने के चाह रहनी है पवन सिंह की आवाज़ में। और काफ़ी बढ़िया गाना भी बा और गाने के बोल बा हम तुहरा प्रीतिया में दिल के दुनिया बसा ले बानी। तो यही गाना के साथ ही आज शो के समाप्त कर जाओ और सबके

0: दादी, आप घुटने पकड़कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
1: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
0: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
1: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
0: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
1: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
0: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
2: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। तो दोस्तों, हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आपको कॉल करना होगा हर रविवार 12 बजे से हमारे स्टूडियो के नंबर 8029-94-91 8029-94-91 पर। तो दोस्तों, आइए जान लेते हैं रेडियो रिमझिम के इस रोमांचकारी खेल के रूल्स को। इस हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे 10 प्रश्न। हर प्रश्न के होंगे 3 ऑप्शन, जिसमें से होगा एक सही जवाब और आपको मिलेंगे 10 सेकंड का समय। यदि आप 10 सेकंड में जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इस खेल से बाहर हो जाएंगे। 10 प्रश्न के सही जवाब देने वाले प्रतिभागी को मिलेगा रेडियो रिमझिम के तरफ से एक एक्साइटिंग गिफ्ट और हमारे स्टूडियो में आने का मौका। तो दोस्तों, आपको अपने तरफ से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपके मोबाइल में पर्याप्त बैलेंस हो। साथ ही हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट के दौरान शांत जगह से कॉल करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी से सहायता ना ले और इंटरनेट पर जवाब सर्च ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट को और लेते हैं पहले प्रतिभागी का कॉल।
4: नमस्कार मैम।
5: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
4: जी जी, धन्यवाद
5: जी। नाम बता दीजिए।
4: शिवम कुमार।
5: शिवम
4: जी,
5: कहाँ से बात कर रहे हैं शिवम?
4: पटना से।
5: क्या करते हैं?
4: पढ़ाई करते हैं, अभी तैयारी करते हैं।
5: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
4: जी हाँ।
5: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
4: माँ का नाम है मनोमा देवी, पापा का नाम है मनोज।
5: क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
4: क्या
5: करते हैं आपके पापा?
4: प्राइवेट जॉब करते हैं।
5: ओके, तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, बी समाज सेवा, सी पर्यावरण संरक्षण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी क्या था?
0: क्या
1: ये ऑप्शन बी क्या था?
0: समाज सेवा।
1: हाँ यही इसी को करिए।
0: कंफर्म है?
1: करिए बस, क्या बात है।
0: ओके तो चलिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है।
1: बाल गंगाधर तिलक।
0: लॉक कर दूं? ओके तो चलिए शिवम जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, प्रथम एक दिवसीय विश्व कप भारत ने किस वर्ष जीता था? प्रथम एक दिवसीय विश्व कप भारत ने किस वर्ष जीता था? ऑप्शन ए 1982, बी 1983, सी 1981। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है? तो लॉक कर दूं? ओके तो चलिए शिवम जी आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर 1983 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? ओके आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ऑप्शन ए है
1: 1526।
0: कंफर्म है?
1: हाँ पानी है ना,
0: पानीपत जी।
1: हाँ पानी लड़ाई 1526 में अकबर और निजाम लोधी के बीच हुआ था।
0: ओके आपके चौथे प्रश्न का उत्तर सही है। तो तैयार हैं आप पांचवे प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके आपसे पांचवा प्रश्न है, भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन ए ईश्वर चंद विद्यासागर, बी राजा राम मोहन राय और सी महात्मा गांधी।
1: राजा राम मोहन राय।
0: यही होगा?
1: आप ये तो नहीं किए थे, उनका प्रयास था
0: जी।
1: हाँ राजा राम मोहन राय 1829 में।
0: ओके तो लॉक करें?
1: हाँ।
0: ओके तो आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, अठारह सौ सत्तावन के विद्रोह की चिंगारी कहाँ से शुरू हुई थी? ऑप्शन ए मेरठ, बी दिल्ली, सी लखनऊ।
1: मेरठ हुआ था।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: ओके तो चलिए आपके छठे प्रश्न के उत्तर और मेरठ को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: जी।
0: ओके आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, अल बेरूनी किस शासक के दरबार में आया था? अल बेरूनी किस शासक के दरबार में आया था? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी अकबर, सी बाबर। आपका समय शुरू होता है।
1: महमूद गजनवी के काल में आया था 1193 में।
0: ओके आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। आठवां प्रश्न आपसे ये है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल और सी बाल गंगाधर तिलक। आपका समय छोड़ता बाल गंगाधर तिलक कन्फर्म है?
1: बिल्कुल।
0: ओके, तो आपके आठवें प्रश्न के उत्तर को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप नौवे प्रश्न के लिए? आपसे आपका नौवा प्रश्न ये है, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी?
1: 1875 में दयानंद सरस्वती के साथ।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, नौवे प्रश्न का उत्तर भी सही है।
1: हाँ।
0: तो लिया जाए आपसे आज का आखिरी प्रश्न यानी दसवां प्रश्न।
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आज की आखिरी और दसवां प्रश्न ये है, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से कब तक था? ऑप्शन ए 1320 से 1330, 1206 से 1210 और 1296 से 1316।
1: 1296 से 1314 तक होगा, 1600 तक तो नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन सी ही होगा।
0: ऑप्शन सी?
1: हाँ।
0: ओके, तो लॉक करते हैं आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को। और आपको बता दें कि आपके दसवें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। ओके, बधाई हो आपको कि आप बनते हैं आज के पहले विनर।
1: हाँ, पहले विनर और पहली बार विनर बना।
0: ओके,
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता जंगलिया मोहल्ला नूर मेडिकल के पास गोपालगंज। कॉल करें 9452111001।
4: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
4: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9939365923।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399-66999।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-91 8029-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
0: हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
9: नमस्ते,
0: नाम बता दीजिए।
9: मेरा नाम समर विश्वकर्मा है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं समर?
9: जफरपुर उत्तर प्रदेश।
0: जफरपुर उत्तर प्रदेश से। क्या करते हैं आप?
9: कुछ नहीं, बात कर पढ़ता हूँ।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं आप?
9: अच्छा, चार
0: में। नाम क्या बताया आपने?
9: समर विश्वकर्मा
0: जी। और किस स्कूल में पढ़ते हैं आप?
9: श्री माता दा विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल।
0: ओके, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में फर्स्ट टाइम कॉल किए हैं।
9: हाँ,
0: तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
9: मेरे मम्मी का नाम पूजा विश्वकर्मा, पापा का नाम दिनेश विश्वकर्मा।
0: ओके, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
9: हाँ।
0: ओके, तो समझिए आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन ए 22, बी 24, सी 25। आपका समय शुरू होता है अब।
1: फिर से बताइए।
0: क्या क्वेश्चन या ऑप्शन? क्या बताऊं फिर से?
1: 24 तिलियां होती है।
0: आपके पास में कोई है?
1: नहीं, मेरे पास कोई नहीं है।
0: ओके, लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए समझिए आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बुध, सी मंगल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बुध। ऑप्शन बी बुध।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ।
0: ओके, चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बुध को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: ठीक है।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है,

0: और बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी मंगल। आपका समय शुरू होता है अब। कन्फर्म है? लॉक कर दूं? ओके। तो चलिए शमर जी, आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बृहस्पति को लॉक करते हैं। और आपको बता दे कि आपके पांचवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जनगण मन, सी सारे जहां से अच्छा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी जनगण मन।
0: कंफर्म है? लॉक करूं? ओके। तो चलिए समर जी, आपके छठे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी जनगणमन को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा वंदे मातरम, ना कि जनगणमन। ये राष्ट्रीय गान है।
1: ठीक है।
0: हेलो, कुछ कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट संडे फिर कोशिश करिएगा।
1: ठीक है मैम।
0: ओके।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: नीतू वर्मा बोल रही हूँ मैम, भोरे से।
0: क्या करती हैं नीतू जी?
2: जी मैं ग्रेजुएशन की तैयारी करती हूँ, ग्रेजुएशन एडमिशन ऐसे कॉम्पिटिशन की तैयारी करती हूँ मैम।
0: तो आपका लक्ष्य क्या है, पढ़ के क्या बनना है?
2: गवर्नमेंट में कोई भी जॉब ले लेना है मैम।
0: अच्छा, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं?
2: नहीं मैम, की थी, पहली बार लगा है।
0: अच्छा, मतलब ट्राई की है पर कॉल पहली बार लगा है।
2: ट्राई भी नहीं किए हैं, कल मैं सुनी रेडियो स्टेशन की रेंजिंग वाला आपको नंबर बताया गया तो मैंने नोट कर ली उसको।
0: अच्छा अच्छा,
2: आज कोशिश कर रही थी कि आज लगाऊंगी, लग नहीं गया पहले बार।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम है उषा देवी और पापा जी का नाम है श्री राम वर्मा।
0: क्या करते हैं आपके पापा?
2: किसान है मैम, खेती बाड़ी करते हैं।
0: चलिए अच्छी बात है। तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं, तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: जी मैम, कोशिश तो करेंगे।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न। ओके नीतू जी, आपसे आपका पहला प्रश्न आज का ये है,

0: विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन ए विक्टोरिया, बी टांगानिका और सी बैकाल झील। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बैकाल झील को लॉक कीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: इतना नहीं कन्फर्म है।
0: ओके, तो लॉक कर दो
1: जी।
0: तो चलिए नीतू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी बैकाल झील को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।

0: छत्तीसगढ़ को ही लौटी थी मैम।
1: कन्फर्म है?
0: कन्फर्म नहीं है मैम, ये तो हम इतना नहीं पढ़ेंगे वाला क्वेश्चन, देखे भी नहीं है।
1: तो लॉक करूं?
0: यस मैम, इसे ही तुक्का लगाए हैं।
1: सही है, तो आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं।
0: जी,
1: और बता दे आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप तीसरे प्रश्न के लिए?
0: यस मैम।
1: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्णन गोखले, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक और ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
0: जी के गोखले को लगती है मैम।
1: गोपाल कृष्ण गोखले को?
0: जी।
1: कंफर्म है?
0: कंफर्म नहीं है, कंफ्यूजन है, ए और बी ऑप्शन है मैम, लेकिन यही लॉक कीजिए इसको।
1: लॉक करें?
0: यस मैम।
1: ओके, तो चलिए नीतू जी आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, ना कि गोपाल कृष्ण गोखले। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद, अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
0: जी मैम, थैंक यू।
1: वेलकम।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 98527-88291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं, नंबर है 98527-88291 या 95238-74088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
4: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
5: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
5: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
4: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
1: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
7: थैंक यू।
1: नाम बता दीजिए।
7: नाम है सलोनी कुमारी, पंजारी ब्रह्मस्थान गोपालगंज से।
1: जी, क्या करते हैं सलोनी?
7: पढ़ाई करती हूँ।
1: किस क्लास में पढ़ती हैं?
7: मैम 12th में।
1: 12th में?
7: हाँ।
1: ओके, आपका लक्ष्य क्या है, पढ़ के क्या बनना है?
7: वो तो अभी सीक्रेट है।
1: अच्छा, आप इससे पहले भी कॉल की हैं हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में?
7: हाँ, एक बार पहले की थी।
1: ओके, तो आप कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
7: यस मैम।
1: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
7: पापा जी का नाम है सुंदरलाल शाह और मम्मी का नाम है सविता देवी।
1: ओके, क्या करते हैं पापा जी आपके?
7: पापा जी का खुद का किराना स्टोर है।
1: तो चलिए, आज का आपसे पहला प्रश्न ये है, लिया जाए ना?
7: हाँ मैम, लीजिए।
1: ओके, आपका पहला प्रश्न आज का ये है

0: भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गोपाल कृष्ण गोखले को
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: नहीं नहीं, गरम दल की नरम दल?
0: गरम दल।
1: गरम दल बाल गंगाधर तिलक को गरम दल कहा जाता है। बी होगा ऑप्शन।
0: ऑप्शन बी कंफर्म है?
1: हाँ कंफर्म है।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो सलोनी जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को लॉक करते हैं। और बता दो कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, अब से आपका दूसरा प्रश्न ये है, अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, बी समाज सेवा, सी पर्यावरण संरक्षण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अन्ना हजारे
0: जी
1: समाज सुधारक।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं हो।
0: लॉक कर दूं?
1: हाँ लॉक कर।
0: ओके, तो सलोनी जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है केरल, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।
1: केरल।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म तो नहीं है, पर केरल लॉक कर दीजिए।
0: ओके, तो चलिए सलोनी जी आपसे आपका तीसरा प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए केरल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़, ना कि केरल।
1: ठीक है।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
0: वेलकम। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
2: गुड्डू कुमार यादव।
0: ओके, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। क्या करते हैं गुड्डू जी?
2: कुछ नहीं, मैं खेल करता हूं।

0: पढ़ाई करते हैं मैम।
1: किस क्लास की पढ़ाई करते हैं?
0: हम तो ग्रेजुएशन का साथ खा चुके हैं।
1: ओके, आगे क्या करना है?
0: आगे दरोगा बनना है।
1: ओके, तो तैयारी चालू है?
0: हाँ मैम।
1: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
0: हाँ।
1: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
0: जी, पिताजी का नाम शंकर यादव और माताजी का नाम।
1: ओके, तो गुरु जी आज का आपसे पहला प्रश्न ये है

0: भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बाल गंगाधर तिलक।
0: कंफर्म है
1: जी?
0: लॉक कर दो।
1: हाँ
0: ओके। तो चलिए गुड्डू जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है। राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।
1: केरल को फिक्स कीजिए।
0: कन्फर्म है?
1: नहीं।
0: लॉक कर दो।
1: जी लॉक।
0: ओके, चलिए आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए केरल को लॉक करते हैं। और बता दे कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़, ना कि केरल।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिनो फेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
4: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
4: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
4: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
6: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
7: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
8: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
9: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
4: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
10: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
9: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
4: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
9: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
4: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजन के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-21 8029-94-21 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो, नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: जी मैडम, मैं इंदरवा से बोल रहा हूँ, गुलाम हुसैन।
0: जी, क्या करते हैं गुलाम?
10: मैडम पढ़ते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
10: टेंथ में पढ़ते हैं मैम।
0: जी, तैयारी कैसे चल रही है?
10: सही चल रही है मैम।
0: ओके, तो आपका लक्ष्य क्या है, आगे चल के पढ़ के क्या बनना है?
10: अभी सोचे नहीं है, जो देखा जाएगा आगे चल के।
0: अच्छा, आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
10: जी मैडम, बहुत बार देख लिए हैं।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: पापा का नाम है स्वर्गीय अब्दुल वहीद, माता का नाम है उम्मत दीदी।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
10: जी
0: तो चलिए गुलाम जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सी होगा मैम।
0: सी वल्लभ भाई पटेल कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है लेकिन देखते हैं।
0: ओके, लक के सारे चल रहे हैं।
1: नहीं मैम।
0: चलिए तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, ना कि वल्लभ भाई पटेल। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो इंजन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। वालेकुम सलाम, नाम बता दीजिए।
2: इजहार अंसारी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं? इजहार
2: लाइन बाजार।
0: लाइन बाजार कहाँ से? ओके, क्या करते हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: 9।
0: ओके, इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: क्या मैम?
0: आप इससे पहले भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लिए हैं?
2: नहीं, पहली बार।
0: पहली बार किए हैं। ओके, तो आप कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए? ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम काकेश और पापा का नाम मेरा जानकारी
0: जी। क्या करते हैं अबू आपके?
2: फार्मर है।
0: ओके, तो यार जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत ने किस वर्ष जीता था? प्रथम एक दिवसीय विश्व कप भारत ने किस वर्ष जीता था? ऑप्शन ए 1981, बी 1982, सी 1983। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन नंबर बी
0: 1981।
1: ऑप्शन नंबर बी
0: 1982।
1: यस
0: कंफर्म है?
1: यस।
0: लॉक करूं?
1: यस करिए।
0: तो चलिए जार जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1982 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा 1983, न कि 1982। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा।
2: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो जिम जिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: हेलो
0: जी, नाम बता दीजिए आप अपना।
2: इमरान अंसारी।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं इमरान?
2: भैरवपट्टी।
0: जी क्या करते हैं आप?
2: अभी पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ते हैं?
2: फोर्थ
0: स्कूल में। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम कैसा खातून और पिता का नाम मेरा अंसारी।
0: ओके, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है?
2: हिंदी।
0: ओके, क्या करते हैं आपके मम्मी पापा?
2: मम्मी हाउस वाइफ है और पापा टेलर का काम करते हैं।
0: ओके, आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस मैम।
0: ओके, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: यस मैम।
0: ओके, तो आप आगे चल के पढ़ के क्या बनना चाहते हैं? आपका लक्ष्य क्या है?
2: अभी सोचा नहीं है।
0: ओके, तो इमरान जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन ए 22, बी 24, सी 25। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर बी।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: लॉक कर दूं?
1: यस मैम करिए।
0: ओके, तो इमरान जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 24 को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बुध। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मैम ऑप्शन नंबर सी।
0: ऑप्शन सी बुध।
1: नो मैम, मंगल को फिक्स कीजिए।
0: ऑप्शन बी मंगल।
1: यस मैम।
0: कंफर्म है?
1: यस मैम।
0: तो लॉक कर दूं?
1: यस मैम।
0: ओके, तो चलिए इमरान जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी मंगल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बुध, ना कि मंगल। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा। ओके,
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704 34468 पे।
7: क्या हुआ?

0: अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
8: अच्छा मिला ही नहीं।
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे।
9: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिमझिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 80-29-94-91 80-29-94-91 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
10: हेलो,
9: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
10: हाँ नमस्कार।
9: नमस्कार, नाम बता दीजिए।
10: शिवुल कुमार
9: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं शिवुल?
10: मीरगंज हरखौली से
9: जी। क्या करते हैं?
10: अभी तक रहते हैं।
9: ओके, पढ़ाई कहाँ तक हुई है आपकी?
10: वही इंटर।
9: ओके, उसके बाद पढ़ाई जारी है कि छोड़ दिए है?
10: बीए में। ओके, बीए में एडमिशन करा कर उसी में अथी करना है, ग्रेजुएशन करना है।
9: तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
10: हाँ, पहले प्रश्न के लिए तैयार हूँ।
9: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
10: पापा का नाम है राम किशोर भगत, मम्मी का नाम मालती देवी
9: जी। क्या करते हैं पापा जी?
10: पापा ही किसान का काम करते।
9: ओके, तो आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, बी समाज सेवा, सी पर्यावरण संरक्षण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी ये होगा समाज सेवा।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी लक के सहारे।
0: ओके तो चलिए लक के सहारे हैं तो लॉक करते हैं। और बता दे आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन ए होगा केरल।
0: ऑप्शन ए होगा केरल। कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं हुआ, माने ऑप्शन ए है केरल। तो केरल को लॉक कीजिए।
0: ओके तो चलिए शिवुल जी आपके उत्तर ऑप्शन ए केरल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़, ना कि केरल। ऑप्शन सी।
1: ठीक है, नमस्कार।
0: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपने रिक्वेस्ट कॉन्टेस्ट में कॉल किए जी। अगले संडे फिर कोशिश करिए।
2: हेलो,
0: बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम में रिक्वेस्ट कॉन्टेस्ट में।
2: हाँ।
0: आप नाम बता दीजिए अपना।
2: अदिति कुमारी।
0: ओके, कहाँ से बात कर रही हैं अदिति?
2: लकड़ीबन बीच से।
0: जी, क्या करती हैं आप?
2: पढ़ाई करते हैं।
0: किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: टू में।
0: इससे पहले आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की हैं?
2: नहीं की हैं।
0: आप सच में टू में पढ़ती हैं?
2: टू में।
0: किस स्कूल में पढ़ती हैं?
2: सरकारी में।
0: ओके, तो आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम है नीतू देवी, पापा का नाम है गुरु भगत।
0: क्या करते हैं पापा?
2: कैटरिंग का काम करते हैं।
0: कैटरिंग का? ओके, आप फर्स्ट टाइम जुड़ी हैं? ओके, तब हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: हाँ।
0: ओके, आपको आगे चल के क्या बनना है पढ़ के?
2: कुछ अभी नहीं, बाद में थे।
0: अभी कुछ सोची नहीं है?
2: नहीं।
0: ओके तो चलिए आदिति आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन ए 22, बी 24, सी 25। आपका समय शुरू होता है अब।
1: अब सी क्वेश्चन पूछिएगा।
0: अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है?
1: ऑप्शन पूछिएगा।
0: ए 22, बी 24, सी 25।
1: 22।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: क्या?
0: फिक्स कर दूँ उत्तर के आपके?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए अदिति, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए 22 को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 24। हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर कोशिश करिएगा, ठीक है?
1: ठीक है।
0: नमस्ते मैम। नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: थैंक यू।
0: नाम बता दीजिए।
2: सिद्धि।
0: सिद्धि, जोर से बोलिए।
2: सिद्धि बोल रहा हूँ।
0: क्या करती है सिद्धि?
2: कुछ नहीं, घर का काम।
0: पढ़ाई कहाँ तक हुई आपकी?
2: टेंथ।
0: उसके बाद पढ़ाई बंद है?
2: हाँ।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की है तो तैयार है आप आज के पहले प्रश्न के लिए? ओके, लिया जाए आज का पहला प्रश्न। आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए। ओके, तो सिद्धि जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलीय आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बी
0: बाल गंगाधर तिलक।
1: यस मैम।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: तो लॉक करो। ओके, तो चलिए सिद्धि जी आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: यस मैम।
0: ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।
1: केरल।
0: कंफर्म है?
1: नहीं।
0: ओके, तो लॉक करूं? ओके, तो चलिए सिद्धि जी आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा छत्तीसगढ़।
1: यस मैम।
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल की बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर क्विज।
2: हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
5: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
4: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलता पूर्वक किया है।
5: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलता पूर्वक किया जा रहा है।
4: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
6: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो? गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
7: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
6: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
7: पता जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
6: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
7: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
6: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
7: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
7: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।

0: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
1: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
2: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029-94-921 8029-94-921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
5: नमस्कार मैम।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
5: जी,
4: नाम बता दीजिए।
5: सुमन कुमार
4: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं सुमन?
5: इंदिरा गांव।
4: ओके, क्या करते हैं?
5: पढ़ते हैं।
4: किस क्लास में पढ़ते हैं?
5: ग्रेजुएशन।
4: ओके, आपका आगे का लक्ष्य क्या है?
5: टीचिंग लाइन में।
4: ओके, तो हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं तो लिए जाए आज का पहला प्रश्न आपसे। ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
5: माता जी का नाम श्रीमती नीलम और पिताजी का नाम श्री सुरेश था।
4: ओके, क्या करते हैं पापा जी?
5: पिताजी किसान है।
4: तो लिया जाए पहला प्रश्न।
5: हाँ।
4: ओके, आपसे आपका पहला प्रश्न ये है

0: भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, बी गोपाल कृष्ण गोखले और सी बाल गंगाधर तिलक। आपका समय शुरू होता है अब।
1: वल्लभ भाई पटेल को।
0: ऑप्शन ए
1: जी।
0: कंफर्म है?
1: लग के सर।
0: ओके, तो चलिए सुमन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक, ना कि वल्लभ भाई पटेल।
1: थैंक यू।
0: वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद इस कॉन्टेस्ट में कॉल किए।
2: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगटोन के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: जी मैम।
0: जी नाम बता दीजिए।
2: नाम सचिन कुमार।
0: जी कहाँ से बात कर रहे हैं सचिन?
2: जी मैम नोनिया टोला से।
0: अच्छा, क्या करते हैं?
2: जी मैम पढ़ाई कर रहे थे, अभी पढ़ाई के साथ 2 साल हो गए थोड़े हुए।
0: ओके, तो कहाँ तक पढ़ाई हुई है आपकी?
2: 10th तक।
0: ओके, तो आप हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो लिया जाए आपसे आज का पहला प्रश्न।
2: जी मैम।
0: ओके, आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: मम्मी का नाम चंद्रावती देवी, पापा का नाम रमेश माथुर।
0: पापा जी क्या करते हैं?
2: किसान हैं।
0: ओके, तो सचिन जी आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: गंगाधर तिलक
0: कन्फर्म है?
1: बाल गंगाधर तिलक
0: कन्फर्म है?
1: जी मैम।
0: लॉक करूं?
1: जी जी।
0: ओके तो चलिए सुचिन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए?
1: जी मैम।
0: ओके आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, बी समाज सेवा, सी पर्यावरण संरक्षण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: ऑप्शन बोलिएगा मैम।
0: ऑप्शन ए जल संरक्षण, बी समाज सेवा, सी पर्यावरण संरक्षण।
1: मैम एक लॉक कीजिए।
0: जल संरक्षण कंफर्म है?
1: नहीं, पर्यावरण लॉक कीजिए।
0: ऑप्शन सी
1: जी
0: कंफर्म है?
1: नहीं, लॉक का सहारे।
0: ओके तो चलिए सचिन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपकी दूसरे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा समाज सेवा।
1: ठीक है,
0: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले संडे फिर।
2: हेलो
0: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में।
2: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, नाम बता दीजिए।
2: रंजन कुमार
0: जी। कहाँ से बात कर रहे हैं रंजन जी?
2: आदमापुर से।
0: क्या करते हैं?
2: पढ़ाई करते हैं मैम, बीएड चल रहा है।
0: ओके तो आप ये हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल तो तैयार हैं आप आज के पहले प्रश्न के लिए?
2: यस।
0: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
2: इंदल यादव, मम्मी का नाम पट्टी देवी।
0: ओके क्या करते हैं पापा जी?
2: फार्मर है।
0: ओके तो रंजन जी, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है,

0: भारत में गरम दलिया आंदोलन का पिता किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी बाल गंगाधर तिलक, सी वल्लभ भाई पटेल। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक।
0: कंफर्म है?
1: कंफर्म नहीं है, लग रहा है यही होगा। चुप करिए।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके पहले प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, अन्ना हजारे मानव गतिविधि के किस क्षेत्र से जुड़े रहे हैं? ऑप्शन ए जल संरक्षण, ऑप्शन बी समाज सेवा, ऑप्शन सी पर्यावरण संरक्षण। आपका समय शुरू होता है अब।
1: बी को फिक्स कीजिए,
0: समाज सेवा।
1: हाँ,
0: कन्फर्म है?
1: करिए इसी को।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, राज्य सड़क परिवहन निगम को बंद करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़। आपका समय शुरू होता है अब।
1: छत्तीसगढ़ को फिक्स कीजिएगा।
0: कंफर्म है?
1: लग रहा है यही होगा, कंफर्म तो।
0: ओके, तो चलिए लॉक करते हैं आपके तीसरे प्रश्न के उत्तर को। और आपको बता दें कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए?
1: यस सर, चौथा प्रश्न है
0: जी। आपसे आपका चौथा प्रश्न ये है, प्रथम एक दिवसीय विश्व कप भारत ने किस वर्ष जीता था? ऑप्शन ए 1981, बी 1982 और ऑप्शन सी 1983। आपका समय शुरू होता है।
1: 82 को फिक्स कीजिएगा इसमें।
0: कंफर्म है?
1: 82। हाँ।
0: ओके, तो चलिए रंजन जी, आपके चौथे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी 1982 को फिक्स करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर गलत है। सही उत्तर होगा 1983, ना कि 82।
1: 83 वाला गलती होगा।
0: 1983 होगा, 83। कपिल देव ने जिताया था।
1: हाँ, मूवी आया था, 83 गलती होगी।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किया।
2: हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में समय हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं आप सबसे हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में। सुनते रहे रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
4: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
3: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
4: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
3: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर रुस्तमपुर गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
4: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
3: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
5: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
3: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
3: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
3: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
7: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
5: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
3: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूर्व भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
5: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
3: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
5: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
3: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
5: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
3: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
8: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
10: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
11: हमारे यहाँ बोलचाल

0: सदाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
1: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुँचिए इस्मत ENT केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
2: ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है रेडियो रिंजिम के रोमांचकारी खेल हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में। अगर आप भी हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर। आइए लेते हैं अगले प्रतिभागी का कॉल।
3: नमस्ते।
4: नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम के कार्यक्रम हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में।
3: नमस्ते मैम, मैं रुद्र बोल रहा हूँ।
4: जी, कहाँ से बात कर रहे हैं रुद्र?
3: भिड़वा से।
4: ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं आप?
3: कुछ नहीं, बैठा हूँ। अभी घर में टाइल्स लग रहा है तो का आवाज आ रहा होगा। नया फ्लोर बन रहा है ना ऊपर।
4: आप अपने मम्मी पापा का नाम बता दीजिए।
3: मम्मी का नाम है अनुपमा कुमार और पापा का नाम रवि श्रीवास्तव।
4: जी, क्या करते हैं आपके पापा?
3: दिल्ली में जॉब करते हैं, उसमें बहुत ही कंपनी कूलर बनाती है वो।
4: अच्छा,
3: मैनेजर है।
4: ओके, आपका लक्ष्य क्या है, आप पढ़ के क्या बनना चाहते हैं?
3: डॉक्टर।
4: चलिए, अच्छी बात है। तो आप हेलो क्यूज कॉन्टेस्ट में कॉल किए हैं, तो तैयार हैं आज के पहले प्रश्न के लिए?
3: हाँ।
4: लिया जाए आपसे आपका पहला प्रश्न?
3: हाँ।
4: ओके, तो चलिए रुद्र, आपसे आज का पहला प्रश्न ये है

0: अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती है? ऑप्शन कंफर्म है? ऑप्शन नहीं चाहिए? लॉक कर दूं? ओके, तो चलिए रुद्र, आपके पहले प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप दूसरे प्रश्न के लिए? ओके, आपसे आपका दूसरा प्रश्न ये है, सूरज के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है? सूरज के
1: मरकरी।
0: आप कंफर्म है मरकरी कहते हैं? लॉक कर दूं?
1: जी।
0: ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर भी बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप तीसरे प्रश्न के लिए? लिया जाए आपसे तीसरा प्रश्न? ओके, आपसे आपका तीसरा प्रश्न ये है, धरती का उपग्रह किसे कहते हैं? धरती का उपग्रह किसे कहते हैं? ऑप्शन ए। हाँ,
1: मेरा क्वेश्चन ये है कि धरती के उपग्रह को क्या कहते हैं, ये है ना?
0: हाँ, धरती का उपग्रह को क्या कहते हैं, फिर किसको, किसे धरती का उपग्रह कहते हैं? ऑप्शन दो।
1: हाँ,
0: ऑप्शन ए है चांद, बी है सूर्य और सी है तारा। आपका समय शुरू होता है अब। कंफर्म है? लॉक कर दूं? ओके, तो चलिए रुद्र जी, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर चांद को लॉक करते हैं। और आपको बता दूं कि आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप चौथे प्रश्न के लिए? ओके, का चौथा प्रश्न आपसे ये है, कौन सा पक्षी सबसे बड़ा अंडा देता है? कौन सा पक्षी?
1: ऑस्ट्रिच।
0: ऑस्ट्रिच, ओके, तो लॉक कर दो आपके चौथे प्रश्न के उत्तर को? ओके, तो चलिए आपके चौथे प्रश्न के उत्तर शुतुरमुर्ग को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके चौथे प्रश्न का उत्तर भी सही है।

0: तैयार हैं आप पांचवा प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका पांचवा प्रश्न ये है, नदी का पानी कहाँ जाकर मिलता है? नदी का पानी कहाँ जाकर मिलता है? ऑप्शन ए तालाब, बी समुद्र, सी कुआं। आपका समय शुरू होता है अब।
1: समुद्र।
0: इन्फॉर्म है?
1: हाँ।
0: ओके, आपका पांचवे प्रश्न के उत्तर को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर समुद्र बिल्कुल सही है। तैयार हैं आप छठे प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका छठा प्रश्न ये है, कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों में रह सकता है? कौन सा जानवर पानी और जमीन दोनों में रह सकता है? ऑप्शन ए शेर, बी मगरमच्छ, सी मछली। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मगरमच्छ।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो आपके छठे प्रश्न का उत्तर मगरमच्छ को लॉक करते हैं। और बता दें कि आपके छठे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप सातवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका सातवां प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? ऑप्शन ए मंगल, बी बृहस्पति और सी है शुक्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: मंगल।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: ओके
1: ओके,
0: आपके सातवें प्रश्न के उत्तर मंगल को लॉक करते हैं। और बता दे आपको कि आपके सातवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप आठवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका आठवां प्रश्न ये है, कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? ऑप्शन ए शनि, बी बुध, सी शुक्र। आपका समय शुरू होता है अब।
1: शुक्र ग्रह।
0: कन्फर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ।
0: ओके
1: ओके,
0: तो चलिए रुद्र, आपके आठवें प्रश्न का उत्तर शुक्र को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके आठवें प्रश्न का उत्तर भी सही है। तैयार है आप नौवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: आपसे आपका नौवां प्रश्न ये है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन ए सारे जहां से अच्छा, बी जनगण मन और सी वंदे मातरम। आपका समय
1: वंदे मातरम।
0: कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक कर दूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो आपके नौवे प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी को लॉक करते हैं। और आपको बता दें कि आपके नौवे प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही है। तैयार है आप दसवें प्रश्न के लिए?
1: हाँ।
0: ओके, आपसे आपका दसवां प्रश्न ये है, किस नदी को गंगा की सहायक नदी कहते हैं? किस नदी को गंगा की सहायक नदी कहते हैं? ऑप्शन ए यमुना, बी गोदावरी, सी नर्मदा। आपका समय शुरू होता है अब।
1: सारे क्वेश्चन मुझे पढ़ाया गया था और जो नहीं पढ़ाया गया था उसमें थोड़ा मुझे समझ में नहीं आता। कोई ऐसा क्वेश्चन होगा भारत के बारे में कुछ?
0: ये तो भारत का ही है ना,
1: मतलब कि कुछ ऐसा कि भारत के बारे में, ये सब मुझे पता है।
0: अच्छा। ओके, तो चलिए रुद्र, आपसे आपका दसवां प्रश्न ये है, भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? भारत रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको दिया गया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी डॉक्टर सी राजगोपालचारी। आपका समय शुरू होता है अब।
1: पंडित जवाहरलाल
0: नेहरू। कंफर्म है?
1: हाँ।
0: लॉक करूँ?
1: हाँ।
0: ओके, तो चलिए आपके 10वें प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू को लॉक करते हैं। और आपको बता दे रुद्र, ये आपके 10वें प्रश्न का उत्तर बिल्कुल गलत है। सही उत्तर होगा डॉक्टर सी राजगोपालचारी।
1: ठीक है,
0: ठीक है, याद रहेगा आपको?
1: हाँ।
0: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा खेला आपने।
1: एक क्वेश्चन आप मेरे से पहले भी पूछी थी और आज भी पूछी है।
0: हाँ, होता है कभी कभी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं। ठीक है,
1: yes.
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में कॉल किए।
1: बाय
0: बाय, अगले संडे फिर कोशिश करिएगा जी।
1: कॉल करूंगा।
0: ओके,
1: कितने बजे कॉल लग जाएगा मेरा?
0: ये आपका 12 से 1 बजे तक रिकॉर्डिंग होता है।
1: ठीक है।
0: ओके,
2: तो दोस्तों ये रहा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का आज का एपिसोड। अगर आप भी हेलो क्विज कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं और आजमाना चाहते हैं अपने ज्ञान और लक को, तो हर रविवार दोपहर 12 बजे से कॉल करें 8029294921 8029294921 पर और बने हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के विनर, और हमें दीजिए अब जाने की इजाज़त। और रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
5: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
6: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
5: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
7: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
8: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
8: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
9: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।

0: प्रसाद क्लिनिक।
1: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
0: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
1: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा, मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखे, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
6: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
7: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
6: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
7: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99399।

0: आपका संदेश मिला कार्यक्रम में आप अपना विचार, सुझाव, शिकायत हमारे व्हाट्सएप नंबर 9857788291 या ईमेल आईडी radiorimjhim@gmail.com या पत्र के माध्यम से हमें जरूर दें। आप हमें कॉल करके भी अपने विचारों को बता सकते हैं। नंबर है 9857788291 या 9528374088 पर। आपका सुझाव रेडियो रिमझिम परिवार के लिए मार्गदर्शन का काम करता है, तो आप इस कार्यक्रम को रविवार शाम 7:45 से तथा सोमवार सुबह 7:10 से अवश्य सुने।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765655750।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
3: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
10: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है।
1: अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
4: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
5: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: जी पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
4: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
0: RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा, NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमान गढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62 112 पे।
2: त्योहारों के इस खास अवसर पर श्री गोपाल मोटर्स लेकर आया है आपके लिए शानदार ऑफर।
0: याद रखिए, श्री गोपाल मोटर्स से सस्ता कहीं नहीं।
2: स्प्लेंडर प्लस 91,445 रुपए में, HF डिलक्स 77,426 रुपए में,
0: ग्लैमर एक्स 1,02,784 रुपए में, और प्लेजर प्लस 85,701 रुपए में।
2: और सबसे खास बात ये है ऑन रोड कीमत, यानी रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस के साथ।
0: तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद की बाइक या स्कूटी चुनिए और आज ही घर ले जाइए।
2: अभी कॉल करें 92899-22567 या 97714-8661
0: या विजिट करें श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 चैन पट्टी गोपालगंज।

0: अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: डॉक्टर अनुज

0: मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
4: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
3: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
4: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
3: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
5: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
6: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
5: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
6: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
5: हमारा
7: वर्गों की भागीदारी जरूरी। शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। थाईलैंड का 28 सदस्यीय दल बिहार के दौरे पर, बोधगया में महाबोधि मंदिर के किए दर्शन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। श्रीलंका से मंगलवार को होगा फाइनल मुकाबला। अब समाचार विस्तार से। पटना के बापू सभागार में आज विकसित बिहार नींव से निर्माण तक महामंथन सह लव कुश प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य के विकास के लिए सभी वर्गों से एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया।
8: आपको मैं पूर्ण रूप से भरोसा देता हूँ, बिहार की समृद्धि के लिए काम करता रहूंगा और सबको जोड़कर भी रखने का काम करूंगा। और आपका जो सपना है, बिहार समृद्ध हो, बिहार विकसित हो, बिहार को गौरवशाली इतिहास मिले, बिहार के मुखिया की हैसियत से मैं जरूर आश्वस्त करता हूँ, सब लोग मिलकर बिहार की समृद्धि का रास्ता खोलने का काम करेंगे।
7: मुख्यमंत्री ने कहा कि वाल्मीकि नगर से जुड़ी लव कुश की विरासत को विकसित करने के लिए लव कुश पार्क बनाने का काम शुरू किया गया है।
8: वाल्मीकि नगर में कहा जाता है कि जिस जगह भगवान लव कुश का जन्म हुआ वो नेपाल के हिस्से में पड़ता है। मैं गया वहाँ, देखा, हम लोगों ने कुछ सहयोग भी किया लेकिन कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं हो पाया। मैंने बाद में नीतीश कुमार जी से बात किया और नीतीश कुमार जी की जब सहमति मिली तो आज वाल्मीकि नगर में लगभग 60 करोड़ का एक भव्य लव कुश पार्क भी बनाने का काम शुरू करने का काम किया था।
7: समारोह में स्वास्थ्य मंत्री निशांत, ग्रामीण विकास तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री श्रवण कुमार, राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। राज्य के शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक ई शिक्षा कोष पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इसके लिए संशोधित समय सारणी जारी की है। गौरतलब है कि पहले सामान्य स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 सितंबर से निर्धारित था लेकिन राज्य में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तारीखों में संशोधन किया है। सामान्य स्थानांतरण की सूची के प्रकाशन, अपील और अपीलों के निष्पादन की प्रक्रिया 12 अक्टूबर से 18 नवंबर तक पूरी की जाएगी। पटना के दानापुर स्थित सेना भर्ती कार्यालय की ओर से 22 सितंबर से 7 अक्टूबर के बीच अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। रैली में बिहार और झारखंड

0: विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी निर्धारित तिथियों के अनुसार शामिल होंगे। दानापुर सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल बिंदु अग्निहोत्री ने बताया कि अग्निवीर जनरल ड्यूटी, टेक्निकल और ट्रेडमैन की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। वहीं अग्निवीर क्लर्क एसकेटी की भर्ती 1 से 4 अक्टूबर और अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस की भर्ती 6 से 7 अक्टूबर तक होगी। उन्होंने बताया कि 22 सितंबर को सारण, 23 सितंबर को भोजपुर, 24 सितंबर को बक्सर, गोपालगंज और सिवान तथा 25 सितंबर को पटना और वैशाली के अभ्यर्थियों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी की प्रक्रिया होगी। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड में दिए गए निर्धारित दिन और समय पर ही रिपोर्ट करें और एडमिट कार्ड के साथ मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र तथा सभी जरूरी दस्तावेजों की निर्धारित प्रतियां लेकर आएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोडेट यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
1: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषिकर्मी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
2: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
0: सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार संबंधित बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है।
3: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ क्लैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: बोधगया में आज थाईलैंड का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बिहार भ्रमण पर पहुंचा। पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित फैम टूर ऑफ लोटस ट्रायंगल के तहत प्रतिनिधिमंडल राज्य के प्रमुख बौद्ध और पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेगा। एक रिपोर्ट।
4: बिहार पर्यटन विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के बीच राज्य में बौद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए फैम टूर ऑफ लोटस ट्रायंगल का आयोजन किया है। इसी क्रम में थाईलैंड का प्रतिनिधि मंडल बोधगया पहुंचा। दल के सदस्यों ने विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की और पवित्र बोधि वृक्ष के दर्शन किए। यात्रा के दौरान प्रतिनिधि मंडल को राज्य के प्रमुख बौद्ध स्थलों से परिचित कराया जा रहा है। है। इसके तहत बोधगया के अलावा राजगीर, नालंदा, वैशाली और पटना को शामिल किया गया है। फैम टूर का उद्देश्य बिहार के बौद्ध सर्किट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के साथ साथ भारत और थाईलैंड के बीच साझा बौद्ध विरासत और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। थाईलैंड

0: के प्रतिनिधि मंडल का यह दौरा दोनों देशों के बीच सदियों पुराने धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को पर्यटन के माध्यम से और प्रगाढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए बोध गया से धर्मवीर भारती।
1: शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। जन स्वराज के संस्थापक और बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर ने बिहार विधान परिषद के 8 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर अपने 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की। विधान परिषद की शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में होने वाले चुनाव में पार्टी ने दरभंगा शिक्षक सीट से SP राय, दरभंगा स्नातक से रविन्द्र यादव, सारण शिक्षक से अफाक अहमद, पटना शिक्षक से डॉक्टर दिव्या ज्योति और कोसी स्नातक से रजनीश रंजन को उम्मीदवार बनाया है। किशोर ने पटना स्थित अपने पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर इसकी घोषणा की। राज्य में बाढ़ प्रभावित परिवारों की सहायता के लिए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए की सहयोग राशि दी है। आज पटना में लोक सेवक आवास पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लघु जन संसाधन मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर उन्हें चेक सौंपा। पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों ने भी अपना 1-1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा की है। पटना सिटी के मुसल्लापुर थाना पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय कॉलिंग के जरिए विदेशी नागरिकों से साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1 लाख रुपए से अधिक नकद, 4 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 7 ATM कार्ड समेत कई आपत्तिजनक सामान बरामद किए गए हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच कर रही है। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जा रहा है। औरंगाबाद में किसान सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मगध प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विकास वैभव शामिल हुए। समारोह को संबोधित करते हुए श्री वैभव ने कहा कि विकसित बिहार का अर्थ है कि शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी व्यक्ति को राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े।
1: शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति बिहार का शिक्षित नहीं हुआ, स्किल नहीं हुआ, तो सामूहिक लड़ाई का भार जाएगा। विकसित भारत का क्या मतलब है? विकसित बिहार का क्या मतलब? ऐसा बिहार जिसमें शिक्षा, रोजगार या स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। गांव का विद्यालय भी सबसे बढ़िया हो, वर्ल्ड क्लास हो, तभी तो बड़ा विकसित होगा। गांव का हॉस्पिटल, उसमें भी वैसी फैसिलिटीज हो जो पूरे विश्व में कहीं भी उपलब्ध हो, तभी तो भारत हम विकसित मान सकते हैं।
0: इस अवसर पर कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 1 दर्जन से अधिक किसानों को सम्मानित किया गया। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में अपनी जगह बना ली है। शेफाली वर्मा के 49 गेंदों में बनाए गए पहले T20 अंतर्राष्ट्रीय शतक ने भारत की 114 रनों की शानदार जीत सुनिश्चित की। भारत का अगला मुकाबला मंगलवार को श्रीलंका से स्वर्ण पदक के लिए होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन पर पूरी टीम को जीत की बधाई देते हुए फाइनल मुकाबले के लिए अपनी शुभकामनाएं दी हैं। राज्य के दक्षिण पश्चिम मॉनसून की अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि आज उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य भागों के जिलों में 1-2 स्थानों पर और उत्तर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व के भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। वरिष्ठ पत्रकार पायल मेहता का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वे 46 वर्ष की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पायल मेहता के निधन पर शोक व्यक्त किया है। इधर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मधुबनी जिले में भारत नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल ने अभियान चलाकर लगभग 350 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, समृद्ध बिहार के निर्माण में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी जरूरी। शिक्षकों के सामान्य स्थानांतरण के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक लिए जाएंगे ऑनलाइन आवेदन। थाईलैंड का 28 सदस्यीय दल बिहार के दौरे पर, बोधगया में महाबोधि मंदिर में किए दर्शन। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने एशियन गेम्स के सेमीफाइनल में जीत दर्ज की। श्रीलंका से मंगलवार को होगा फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।

0: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
1: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
2: ओ माई गॉड, आज फिर से भूल गई।
1: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
2: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
3: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
2: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
3: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आएं नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
2: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
3: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
0: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
4: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
0: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर, RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।

0: सभी श्रोताओं को मेरा यानी रेडियो दोस्त सोनू के तरफ से नमस्कार प्रणाम। समय हो चुका है आपका संदेश मिला कार्यक्रम का, तो ठीक सही समय पे आप सभी के द्वारा संचार के विभिन्न माध्यमों से भेजे गए संदेशों को लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सभी के बीच। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके द्वारा भेजे गए संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया देते हैं रेडियो रिमझिम के प्रबंध निदेशक श्री कृपा शंकर श्रीवास्तव जी। तो सर, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: यदि आप भी इस कार्यक्रम में शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपना विचार भेजना चाहते हैं तो इस कार्यक्रम में भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28। व्हाट्सएप नंबर है 98527 88 291 और ईमेल आईडी है radiorimjim@gmail.com। आप संचार के जिस माध्यम से चाहें उस माध्यम से अपना शिकायत, सुझाव या प्रशंसा, अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल अपनी बातों को रोकते हैं और इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं।
1: नमस्कार, रेडियो रिमझिम 90.4 सुनने वाले सभी लोगों को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आपका मन पसंद कार्यक्रम, आपका संदेश मिला में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्रोता बंधु, आपका संदेश मिला कार्यक्रम में देश विदेश, प्रदेश और अपने जिले के विभिन्न जगहों से बहुत सारे संदेश आए हैं। उन संदेशों को मेरे साथ बैठे हुए हैं मिस्टर सोनू जी, उसे पढ़ेंगे और मैं पूरी ईमानदारी और सच्चाई से उसका जवाब दूंगा। आपका संदेश मिला कार्यक्रम पूरे सप्ताह भर रेडियो रिमझिम का जो कार्यक्रम हम प्रसारण करते हैं उसके संदर्भ में आप लोगों का सुझाव, शिकायत, उलाहना आता है और इससे हम अपने कार्य पद्धति में सुधार करते हैं। मेरा मानना है कि जिसके लिए हम प्रसारण करते हैं यदि वह संतुष्ट है तो रेडियो रिमझिम 90.4 की उपलब्धि है। यदि हमारा कोई भी श्रोता हमारे प्रसारण से खुश नहीं है, असंतुष्ट है, तो हम अपने प्रसारणकर्ता होने के नाते नीचे के तरफ चले जाते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम के कई कार्यक्रम हैं जिसमें सुबह 5 बजे से रात को 11:10 तक रेडियो पर आप हमें सुनते हैं और ऐप के माध्यम से 24 घंटे रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। आज भी जब हम गांव देहात शहर में जाते हैं तो कई लोगों को पता ही नहीं है कि रेडियो रिमझिम का ऐप जो है गूगल के प्ले स्टोर में है, जो बहुत कम MB का है, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और जब इच्छा हो रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। रेडियो रिमझिम बेहतर प्रसारण के लिए अपने श्रोताओं को बार बार धन्यवाद देता है कि आपके सुझाव से हम बेहतर प्रसारण कर पाते हैं। हमारे कई श्रोता ऐसे हैं जो हमें तकनीकी रूप से भी सुझाव देते हैं, प्रसारण में कहीं कोई त्रुटि है उसके बारे में बताते हैं और हम उसमें सुधार करते हैं। रेडियो रिमझिम की जो टीम है युवाओं की है, मैं अपना अनुभव देता हूँ और जो युवा साथी हैं मेरे रेडियो रिमझिम में, वे अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं जिसके वजह से रेडियो रिमझिम का प्रसारण लंबे समय से निरंतर और बेहतर चलते आ रहा है। रेडियो रिमझिम के सभी सदस्यों का मानना है कि हम लोग जिसके लिए प्रसारण करते हैं वह क्या चाहते हैं, किस तरह के कार्यक्रम चाहते हैं, उस पर हम लोगों का विशेष ध्यान रहता है और यह भी ध्यान रखते हैं कि भारत सरकार ने एक मार्ग निर्देशिका दिया है एक गाइडलाइन दिया है जिसके अंतर्गत रहकर हमें अपने कार्यों को बेहतर करना है। रेडियो रिमझिम का प्रसारण ऐप के माध्यम से पूरे दुनिया में सुना जाता है और गोपालगंज की मिट्टी की महक जो है हम पूरे दुनिया में आवाज के माध्यम से बिखेरते हैं। हमारे कई आदरणीय श्रोता हैं जो अपने बातों को लिख कर नहीं भेज पाते हैं, फिर भी रेडियो रिमझिम के कार्यालय के नंबर पर फोन करते हैं, अपने संदेश को लिखवाते हैं। मैं उन श्रोताओं को विशेष करके धन्यवाद देता हूं कि आपकी रुचि, आपकी सहनशीलता, आपका बड़प्पन है कि आप अपने बातों को हम तक पहुंचाते हैं। हम लोग कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, सहयोग से हम बेहतर करने का प्रयास करते हैं। माता पिता किसान थे और उस किसान परिवार में जन्म लेकर तकनीकी रूप से सक्षम होकर रेडियो रिमझिम का प्रसारण किया जाता है। मन में यह लालसा शुरू से ही रहा है कि लोगों के जीवन को बेहतरी बनाने में हम अपना कौन सा महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से, आवाज के माध्यम से और लोगों से मिलजुल कर जो हम लोग सुझाव लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, उससे बहुत ही अच्छा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। रेडियो रिमझिम का मानना है कि जो हमारे गांव देहात या नगर पंचायत, नगर परिषद क्षेत्र में लोग रहते हैं, महिला पुरुष दिव्यांग जो भी रहते हैं, उन सब की बातों को सुना जाता है। हम लोग अपने को नीचे रखते हैं और जो हमें सुनते हैं उनका हम सेवक मानकर अपने कार्यों को करते हैं। रेडियो रिमझिम में कई ऐसी कहानियां प्रसारित होता है, आप लोग सुनते होंगे, वीरों की कहानियां, विक्रम बैताल की कहानियां, निर्गुण विरहा, आपके मनपसंद गीत, राष्ट्रीय प्रांतीय और स्थानीय सूचना को हम देते रहते हैं। हम लोग का प्रयास रहता है कि जो प्रादेशिक समाचार है या राष्ट्रीय समाचार है उसका डायरेक्ट रिले करें और आपको पूरे संसार के सूचनाओं से प्रतिदिन अवगत कराएं। यह हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। इस काम में हम लोग कितना सफल हुए आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। एक समय था कि रेडियो रिमझिम का प्रसारण सुबह 5 से 10, दोपहर 12 से 3 और शाम को 5 से 10 हम लोग करते थे और हमारी आवाज जन जन तक पहुंचती थी। यह विज्ञान का, तकनीक का देन है कि आज जो है 24 घंटे रेडियो रिमझिम का प्रसारण होता है और आप जहां भी हैं, संसार के किसी भी कोने में हैं, रेडियो रिमझिम को सुन सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से हम तक पहुंचाते रहते हैं। आदरणीय श्रोता बंधु, जीवन में बेहतर करने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। हम जब दिल्ली के मुखर्जी नगर में जाते हैं या पटना का छात्र जहां रहते हैं, PMCH हॉस्पिटल के अगल बगल छात्रों का जो हुजूम देखते हैं, वे दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। आज के दौर में प्रतियोगिता परीक्षा में सफल होना, अपना मुकाम हासिल करना, जीतोड़ मेहनत करना अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है। बहुत सारे बच्चे जो है अपने जिले के कई महत्वपूर्ण स्थानों पर स्थापित हुए हैं। जब भी कभी मुझे भारत भ्रमण का अवसर मिलता है, हम मध्य प्रदेश के उज्जैन जाएं, केरल जाएं, चेन्नई जाएं, श्रीनगर जाएं, भारत के किसी भी शहर में जाते हैं तो अपने यहाँ के कुछ न कुछ बच्चों को देखते हैं जो तकनीकी रूप से बहुत ही हुनरमंद है और वहाँ के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। संपूर्ण भारत हम लोग का है, हम लोग भी उसके एक अंश हैं। मेरा मानना है कि जीवन में जिस व्यक्ति को जो भी काम करने का अवसर मिला है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। यह नहीं कि हम सरकारी सेवा या गैर सरकारी सेवा में हैं, काम लग गया उसके बाद जिम्मेवारी खत्म हो गया। असली जिम्मेवारी तो काम लगने के बाद शुरू होता है और बहुत से लोगों ने सरकारी या गैर सरकारी सेवाओं में रहते हुए नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। पहले एक समय था कि 6 महीना खेती होता था, 6 महीना बैठकी होता था। अब तो आज कृषि के क्षेत्र में इतनी उन्नति हो गई है कि लगातार हमारे किसान भाई लगे रहते हैं, वह चाहे बागवानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, मत्स्य का क्षेत्र हो या कोई भी क्षेत्र हो, उसमें जो है लगे रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी उपलब्धि हासिल किए हैं जो समाचारों के माध्यम से हमें भी ज्ञात होता है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम का आपका संदेश मिला कार्यक्रम में हम लोग आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान रखते हैं और अपने बातों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कई श्रोताओं के सुझाव से हम भारतवर्ष के कई रेडियो स्टेशनों से कई अच्छे अच्छे कार्यक्रम मंगवाए और उसे प्रसारित भी करते हैं। कई कार्यक्रम ऐसे हैं जो रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में भी चलता है। तो मेरा मानना है कि आप जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में बेहतर करें, अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। कितना तनख्वाह मिलता है, कितना समय लगता है, यदि इस तरफ ध्यान दीजिएगा तो आपकी रफ्तार जो है धीमी पड़ जाएगी। मान लिया जाए हम कपड़े की दुकान में काम करते हैं, यदि अगला को मुनाफा होगा तो वह ऑटोमेटिक हमारा पैसा बढ़ाएगा। यदि सरकारी सेवा में है तो हमें 24 घंटे ड्यूटी में लगे रहना है। यह एक अवसर है, एक मौका है। मेरा मानना है कि जीवन में कई लोगों को कई क्षेत्र में मौका मिलता है और उस मौके को गंवा देते हैं और बाद में पश्चाताप करते हैं। हमें आज भी याद है कि 1980-81 में हमारे गांव हमारे क्षेत्र के एक व्यक्ति जो है MSc किए थे और उन्हें कई सरकारी सेवा में जाने का अवसर मिला, लेकिन वह जो है नहीं गए और अच्छा के तलाश में। आज जब भी हम गांव जाते हैं तो उन्हें पाते हैं कि दुआर बाहर रहे हैं, कूड़ लगा रहे हैं, गाय और भैंस को खाना खिला रहे हैं और अपने गलतियों का एहसास होता है और जब वे बातें करते हैं तो उनकी आंखों में हम आंसू देखते हैं। काम छोटा हो या बड़ा, यदि आपको अवसर मिलता है, मौका मिलता है, तो मेरा मानना है कि उसे शुरू कर देना चाहिए। जब आप चलते रहिएगा तो कोई ना कोई नया अवसर मिलते रहेगा। हम लोग के पूर्वज कहते थे कि स्टेशन पर जाइए और जो भी ट्रेन पहले मिलता है उसे पकड़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, रुकिए मत, इंतजार मत कीजिए। जीवन इतना लंबा और इतना बड़ा नहीं है कि आपको समय देगा कि आप जो है और समय लीजिए। 60 वर्ष के बाद तो सरकार भी रिटायरमेंट दे देता है, लेकिन कुछ लोग रिटायरमेंट के बाद भी कुछ ऐसे ऐसे नया काम करते हैं जो पूरी दुनिया याद रखती है। आदरणीय श्रोता बंधु, रेडियो रिमझिम के स्टूडियो में सोनू जी बैठे हैं और इशारा कर रहे हैं कि हमें अब हमारे आदरणीय श्रोताओं का जो संदेश आया है उसे पढ़ना चाहिए। तो सोनू जी पहला संदेश पढ़ रहे हैं।
0: जी सर, हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी संचार के विभिन्न माध्यमों से बहुत सारे संदेश पहुंचे हुए हैं। सबसे पहला मेरे पास संदेश पहुंचा हुआ है अमित कुमार, वार्ड नंबर 2, गोपालगंज से। रेडियो रिमझिम का सभी कार्यक्रम अच्छा है, लेकिन सुबह में निर्धारित समय से रेडियो चालू नहीं हो रहा है, कृपया सुधार किया जाए। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे।
1: आदरणीय अमित जी, आपके पूरे परिवार को, आपके वार्ड वासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। शहर में रहते हुए आपने संदेश दिया जो काफी अच्छा लगा। यह बात सही है कि जाड़ा का मौसम नहीं है और सुबह में रेडियो चालू करने में जो ऑपरेटर हैं विलंब कर रहे हैं, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो समय निर्धारित है रेडियो प्रसारण का सुबह में, रेडियो पर बहुत सारे लोग सुनते हैं, वह समय से सुने और विशेष करके भजन सुनने वाले लोग सुबह 5 बजे जग जाते हैं और भजन का इंतजार करते हैं। यदि निर्धारित समय से रेडियो नहीं चालू हो रहा है तो हम इसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं और कोशिश करेंगे कि समय से रेडियो का प्रसारण शुरू हो। और आप कौन कौन सा कार्यक्रम सुनते हैं इसके बारे में भी जरूर बताइएगा। रेडियो रिमझिम सुबह 5 बजे से रात को 11:10 पर जो प्रसारण करता है उसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन, रिकॉर्डेड कई तरह के कार्यक्रम हैं जो आप समय समय पर सुनते होंगे। यदि उन कार्यक्रमों के बारे में आप अपनी बातों को रखेंगे तो हमें काफी अच्छा लगेगा, क्योंकि जो सुनता है वही आपका संदेश मिला कार्यक्रम में संदेश दे पाता है, और जो नहीं सुन पाते हैं वह कार्यक्रम का टेस्ट स्वाद समझ नहीं पाएंगे। आज भी बहुत सारा समाचार पत्र आता है, बहुत सारा पत्रिका आता है, टीवी है, रेडियो है, मोबाइल है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के मन में किसी न किसी मीडिया के प्रति एक भरोसा और विश्वास होता है कि इसमें जो खबर छपेगा वह अच्छा होगा, या यहाँ रेडियो से जो बोला जाएगा वह सही और सटीक बोला जाएगा। और उस भरोसे को रेडियो रिमझिम हमेशा कायम करके रखना चाहता है कि जो हमारे आदरणीय श्रोता हैं वह हालचाल सुन रहे हैं या कोई भी समाचार सुन रहे हैं तो उनके भरोसे को हम हमेशा कायम रखें। और जो विलंब हो रहा है एक बार पुनः हम क्षमा चाहते हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि समय से हमारा प्रसारण शुरू हो। बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है सासा मुसा खजुरी से सरस्वती देवी जी का। रेडियो रिमझिम हमारा पूरा परिवार सुनता है, सुबह का भजन बहुत अच्छा लगता है, आने वाले दशहरा में दुर्गा भजन ज्यादा सुनाया जाए, मुझे विक्रम बैताल बहुत अच्छा लगता है, मेरे बच्चे भी बड़े ध्यान से रेडियो रिमझिम सुनते हैं। तो सर, इनके संदेशों पर अपना विचार दे।
1: आदरणीय सरस्वती देवी जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने जो संदेश भेजा वह काफी अच्छा रहा। भजन ईश्वर को याद करने का एक सहारा होता है और आप भजन को सुनती हैं, यह जानकर काफी अच्छा लगा। वैसे यदि आपका आग्रह नहीं भी आता तो दशहरा में माँ दुर्गा का भजन ज्यादा से ज्यादा हम लोग बजाते हैं, सुनाते हैं। और आपने बताया कि आपको विक्रम बैताल की कथा बहुत अच्छा लगता है, तो एक प्रसारण करता होने के नाते हम लोग को भी यह सुनकर अच्छा लगता है कि जो कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं यदि सुनने वाले को अच्छा लगता है तो हमारा प्रसारण जो है सफल हो जाता है। इस बात का चिंता सदैव हमारे मन में रहता है और यह जानकर काफी अच्छा लगा कि आपके बच्चे भी रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। आज के सोशल मीडिया के जमाने में यदि रेडियो को सुना जाता है, चाहे माध्यम कोई भी हो, हमने बताया भी है और आपका संदेश मिला कार्यक्रम में बार बार हम बताते हैं कि रेडियो रिमझिम को आप 4 तरह से सुन सकते हैं। पहला रेडियो पर, दूसरा रेडियो के ऐप पर, तीसरा

0: इंटरनेट से, चौथा वाहन से, और जो 5 किलोमीटर के रेडियस में है वह बिना इंटरनेट को भी रेडियो रिमझिम को मोबाइल पर सुन सकते हैं। और रेडियो रिमझिम शुरू से ही सभ्यता, संस्कृति, उच्च विचार के लिए बच्चों को प्रेरित करता है। जीवन में बहुत सारा धन कमा लेना उपलब्धि नहीं है, धन को भोगना भी चाहिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति बहुत सारा धन कमाया है, थार गाड़ी में या 1 करोड़ के गाड़ी में बैठता है, लेकिन एक रसगुल्ला भी नहीं खा पाता है, तो उसका कमाई तो दूसरा ही न खाएगा, क्योंकि डॉक्टर ने सुझाव दे दिया है कि आपको शुगर बहुत हाई है, आपको जो है चावल चीनी से दूर रहना है, प्रतिदिन जो है कसरत करना है, भोजन कम करना है, रात को 9 बजे के पहले खाना है। इतना सारा रिस्ट्रिक्शन जब लग जाता है तो वह कमाया हुआ धन दूसरा ही खाता है। तो जीवन में मेरा मानना है कि सुखी वही है कि भरपूर खाए, भरपूर सोए और फिर अपने काम में लग जाए, उसके इतना सुखी जो है आज के दौर में कोई व्यक्ति नहीं है। जीवन में आगे बढ़ना, उन्नति करना बहुत अच्छी बात है, और हमेशा ध्यान रखिएगा एक बात कि आज के जमाने में लोग दुखी हैं, इसलिए दुखी नहीं है कि उनके पास गरीबी है, इसलिए दुखी हैं कि दूसरे का सुख देखकर उन्हें दुख होता है और उसके लिए वे अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। और जो व्यक्ति सीधे अपने कामों पर नजर रखता है, सीधा चलता है और अपने आप में मस्त है, वह हमेशा मस्त रहेगा। जीवन में दाहिने बाएं क्या होता है उस पर ध्यान मत दीजिए। 24 घंटे में कोई व्यक्ति इस राज्य का मुख्यमंत्री बन जाता है पढ़ाई लिखाई करते हुए, और कोई व्यक्ति जो है वहीं रह जाता है। 24 घंटे में कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो एक ही क्लास में जो टीचर 30 मिनट या 40 मिनट पढ़ाते हैं उसी में से UPSC क्रैक कर लेते हैं, और कोई व्यक्ति पीयून तक नहीं बन पाता है। तो स्कूल वही होता है, शिक्षक वही होते हैं। यह जो है आपके ऊपर निर्भर है कि कम समय में कितना ऑब्जर्व कीजिएगा, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य के पीछे आप कितना पागलपन रखते हैं। जीवन में आपने लक्ष्य निर्धारित किया और उसके लिए कोई समय निर्धारित नहीं किया, तब पर भी जो है आप पीछे रह जाते हैं। एक बार पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ट्रेनिंग में हम गए थे, यह घटना है 20 साल पहले की। उसमें जो टीचर थे, जो फैसिलिटेटर थे, वह बताते थे कि आप यदि लक्ष्य निर्धारित किए हैं तो उसे आप जो है 6-6 महीना, 3-3 महीना, सप्ताह सप्ताह भर और प्रतिदिन में बांटना होता है, और जब अपने कार्यों को कई भागों में बांटकर आप उस पर कार्य करते हैं लक्ष्य के नजदीक पहुंच जाइएगा। लेकिन आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया और उस लक्ष्य के प्रति आप सजग नहीं हैं, तो वह केवल एक ड्रीम रह जाएगा, सपना रह जाएगा। तो जीवन में आगे बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करना और लक्ष्य के प्रति सजग रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है माझागढ़ सलाउद्दीन अंसारी जी का। रेडियो रिमझिम ऑनलाइन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है, कई दिनों बाद शुरू हुआ, धन्यवाद। सोनू जी का SMS फरमाइश काफी अच्छा लगता है, तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय सलाउद्दीन अंसारी जी, आपके पूरे परिवार को, माझागढ़ के सभी निवासियों को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। काफी अच्छा लगा आपका संदेश। ऑनलाइन कार्यक्रम जो है आपको अच्छा लगता है यह जानकर हमें भी अच्छा लगा, और सोनू जी की आपने जो प्रशंसा की है उसके लिए हम अपने पूरे टीम के तरफ से आपको धन्यवाद देते हैं। मनुष्य का एक गुण होता है, जब कोई पीठ थप थप

0: आता है, प्रशंसा करता है तो व्यक्ति का मनोबल बढ़ जाता है, वह अपने काम के प्रति सजग हो जाता है। कई बार मनोवैज्ञानिक व्यक्ति ने भी बताया है कि जब किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है, वह व्यक्ति जो है दुगुने उत्साह से उस कार्य को करने लगता है। और आपका संदेश हमें जो है उत्साहित कर रहा है, प्रोत्साहित कर रहा है, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और एक आग्रह करेंगे कि रेडियो रिमझिम का और भी जो कार्यक्रम आप सुनते हैं उसके प्रति भी अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में जरूर लिखिएगा, काफी अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार
1: जी। सर अगला संदेश पहुंचा हुआ है यादवपुर नया टोला से इंदु कुमारी जी का। रेडियो रिमझिम को हम तीन बहन और पूरा परिवार काफी ध्यान से सुनते हैं, ऑनलाइन कार्यक्रम में भी जुड़ते हैं। मेरे पापा जी हालचाल सुनने के बाद ही भोजन करते हैं, तो सर इनके संदेशों पर अपना विचार दें।
0: आदरणीय इंदु जी, आपके माता पिता को, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। वैसे जादवपुर साइड में रेडियो रिमझिम सुनने वालों की संख्या काफी है। आजकल तो आप देख रही होंगी कि हम लोग रेडियो रिमझिम के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कर रहे हैं, फिर भी हमारी टीम जो है अजीत हैं, आदर्श जी हैं, वे लोग भी गांव-गांव में जाकर लोगों के साथ मीटिंग कर रहे हैं, लोगों को यह चेतावनी दे रहे हैं कि बरसात के समय डेंगू का प्रकोप, काला जर का प्रकोप काफी रहता है, उससे आप सावधान रहिए। कई जगह लोग जो है हमारे टीम के तस्वीर भी लेते हैं, उन तस्वीरों को रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर डालते हैं और लोग उसे पसंद करते हैं। आपका प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं बताते चलूं, रेडियो रिमझिम का जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, वह सब काफी एक्टिव है और उसमें हमारे कई हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। और हम लोग भी जो काम करते हैं फील्ड में, गांव में, देहात में, शहर में जागरूकता अभियान चलाते हैं, उन सब का तस्वीर जो है कोशिश किया जाता है कि प्रतिदिन डाला जाए। तो आप लोग रेडियो रिमझिम के फेसबुक पर, यूट्यूब पर जुड़िए और उसे देखिए कि रेडियो रिमझिम केवल आवाज के माध्यम से जीवन में बदलाव नहीं लाता है, अपने काम के प्रति लोगों के बीच जाता है, बताता है और यह दर्शाता है कि हम लोग आप लोगों से दिल से, मन से जुड़े हुए हैं। जब कोई बच्चा अपने जिला का बड़ी परीक्षाओं में नेट, यूपीएससी, जुडिशियल में सफल होता है तो हम लोग का मन मयूर भी खिल उठता है कि हमारे क्षेत्र का बच्चा जो है पूरे भारत वर्ष में एक नया आयाम गढ़ा, एक नई मंजिल हासिल की। वैसे अभी हाल में ही रेडियो रिमझिम का सर्वे हुआ था, जो पिछले आपका संदेश मिला में हमने बताया था कि आज भी गोपालगंज में 26% लोग जो है रेडियो रिमझिम को सुनते हैं पूरी आबादी का, और उसमें सबसे ज्यादा रेडियो से और ऐप से सुना जाता है। इसकी सूचना हम दिए हैं और जो हमारे कई श्रोता जिनके गांव में सर्वे करता गए थे, बैठे थे, उन लोगों का फीडबैक आया है कि आपके क्षेत्र के लोगों का बड़ा ही सकारात्मक सहयोग रहा। वे लोग कई जगह हम लोगों के जाने के बाद पानी पिलाना, मिठाई खिलाना, आदर और सम्मान पूर्वक बातें करना, हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। वैसे भारत वर्ष के कई रेडियो स्टेशन के श्रोताओं के पास हम लोग गए, लेकिन जो प्यार और सम्मान रेडियो रिमझिम के श्रोताओं ने दिया वह जीवन पर्यंत याद रहेगा। यह सब सुनकर हमें भी काफी अच्छा लगा और मुझे लगता है कि जो भी रेडियो रिंझिन से जुड़ा है वह व्यक्ति वास्तव में बेहतर है, क्योंकि शुरू से ही हम लोगों ने नैतिकता पर और संस्कार पर ज्यादा जोर दिया और जो व्यक्ति दिल से जुड़ा रहा वह आज भी बेहतर है। आदरणीय इंदु जी, आपने जो सूचना दिया कि आपका पूरा परिवार, आप तीन बहन काफी सुनती हैं, तो इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आपके पापा जी बिना हालचाल सुने भोजन नहीं करते हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। वैसे आपको पता ही है कि रेडियो पर हालचाल का प्रसारण रात में 9:05 में और सुबह 7 बजे होता है, और फिर इसे हालचाल गोपालगंज के नाम से YouTube पर डाल दिया जाता है, जिसे आप देख सकते हैं। आज भी जब हालचाल YouTube पर आप देखिएगा तो 10-10 बरस पुराना का भी हालचाल आपको दिखाई देगा, तो वह एक रिकॉर्ड बन जाता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं और कितना समय बोलते हैं, और अपने जिले की सारी विकास संबंधी गतिविधियों की सूचना देते हैं। आपका संदेश मिला में आपने जो संदेश दिया उसके लिए हम आपके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि अन्य कार्यक्रमों के बारे में आप लिखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है अरविंद कुमार जी का रूपंचक मीरगंज से। सर, बहुत दिनों के बाद अपना संदेश भेज रहा हूं, इसे जरूर शामिल कीजिएगा। मैं एक रिटायर व्यक्ति हूं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। जीवन का तजुर्बा और आज के परिस्थिति का वर्णन बहुत ही अच्छा करते हैं। व्यक्ति कितना बहादुर हो, अपने अंतिम समय में अपने परिवार पर निर्भर हो जाता है। पैसे का बहुत ही महत्व है, विशेषकर वृद्धा अवस्था में, और लायक परिवार के लोग रहे तो जीवन खुशी से बीतता है। तो सर, इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दें।
0: आदरणीय अरविंद कुमार जी, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिंझिन परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सोनू जी ने आपका बहुत लंबा संदेश जो पढ़ा है, इसके लिए हम इन्हें भी धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है कि रिटायर व्यक्ति जो है, मेरे समझ से एक निखरा हुआ सोना होता है। जिस तरह सोना को आग में जितना तपाया जाता है उसमें चमक उतना ही आता है, उसी तरह जो व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया है वह अपने बचपन से जवानी से तक जीवन में बहुत सारा अनुभव जो है पाया है, और उस अनुभव को यदि वह अपने परिवार में और समाज में देता है तो सबका कल्याण होता है। आपने जो कहा है कि व्यक्ति कितना भी बहादुर हो लेकिन अंतिम समय में अपने परिवार पर निर्भर हो जाता है, यह बात सही है। जब व्यक्ति का शरीर लगता है जवाब देने, उस समय जो है परिवार के सदस्यों की याद आती है, जरूरत रहती है। जीवन में पैसा का महत्व है, लेकिन व्यक्ति से बड़ा मेरे समझ से पैसा नहीं होता है। वृद्धावस्था में परिवार के साथ रहना, खुशी पूर्वक जीवन बिताना, यह अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति जैसा कर्म किया है उसका फल जो है यही भुगतना होता है। मेरे समझ से स्वर्ग और नरक जो है यही है, व्यक्ति जैसा रहेगा उसे जो है वैसा मिलेगा, और जीवन में व्यक्ति को बेहतर कार्य करना चाहिए। युवा अवस्था में व्यक्ति यदि अपने आप पर संयम रखता है, समाज के प्रति, परिवार के प्रति जवाबदेह रहता है तो लोग उसका आदर और सम्मान करते हैं। जीवन में अच्छा बनना, बेहतर करना, जो जिम्मेवारी मिला है उसका निर्वहन करना बहुत अच्छी बात है। जीवन में यदि हम अपने आस पड़ोस, गांव नगर के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं तो वे लोग भी याद रखेंगे। काम करते वक्त समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। जिस दिन व्यक्ति रिटायरमेंट होता है उसको कई महीनों तक अपना ऑफिस कार्यालय याद आ

0: ही है और यह जीवन जो है बड़ा छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है। व्यक्ति सोचता है कि जो काम हम आने वाले समय में करेंगे वह कभी नहीं हो पाता है। एक बार एक पंडित जी के प्रवचन में मैंने एक कथा सुना था कि रावण जब मरने लगा तो लक्ष्मण जी उसके पास गए और राम जी ने कहा कि इनसे कुछ शिक्षा लीजिए। तो वह जब शिक्षा लेने गए तो रावण ने बताया था कि जीवन में जो करना है उसे कर दीजिए, कल के भरोसे मत छोड़िए, क्योंकि मैंने चाहा था कि जो गंगा मैया है उसे जो है दूध का नदी बना देंगे, जमीन से लेकर स्वर्ग तक सीढ़ी बना देंगे। मैं कर सकता था लेकिन मैंने सोचा बाद में करेंगे। तो जीवन में जो काम करना है उसे समय के साथ तरीके से व्यक्ति को कर देना चाहिए, कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। जीवन एक उमंग है, एक उत्सव है, एक बेहतर कार्य करने का अवसर ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है, इसे बेकार मत जाने दीजिए। आदरणीय श्रोता बंधु, जीवन के कई ऐसे अनुभव हैं जो हम लोग आप लोगों के साथ साझा करते हैं, शेयर करते हैं, और कई हमारे श्रोता हैं जो हमसे मिलते हैं, अपने जीवन के बातों को बताते हैं, अपने अनुभव को बताते हैं। जो व्यक्ति कष्ट सहा है जब उसे सुख की प्राप्ति होगी तो वही सच्चा आनंद होता है, और जिसने बचपन में ही सुख की प्राप्ति कर ली है तो वह सारा जीवन आनंद के खोज में भटकता रहेगा। मेरा मानना है कि हम लोग कई जगह जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, बाग बगीचे में जाते हैं, पार्क में जाते हैं, लेकिन असली शांति जो है आपके अंदर है। यदि आपका मन जो है प्रफुल्लित है, आपका मन जो है शांत है, तो आपके पास सारी खुशियां उपलब्ध है। और जीवन के अंतिम समय में भी जो तनाव में रहता है, दबाव में रहता है, टेंशन में भी रहता है, उसका जीवन जो है बिखराव के तरफ चला जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह रहा है कि जब जो अवसर मिले उसे बेहतर करते चलिए और किसी के भरोसे किसी काम को न छोड़े। जीवन में आपसे जितना हो सकता है उतना करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: जी सर, अगला संदेश पहुंचा हुआ है, जनार्दन मौर्य जी कोइनी बाजार से भेजे हुए हैं। सर नमस्कार, मैं रेडियो रिमझिम को लंबे समय से सुनता हूँ। आपका विज्ञापन है वह कार्यक्रम के अलावा बहुत ही अच्छा लगता है और मुझे जीवन में आगे बढ़ने का शिक्षा भी मिला है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम मैं सुनता हूँ। तो सर इनके संदेशों पर अपना प्रतिक्रिया दे। साथ ही देखे तो अभी मेरे पास कई संदेश है लेकिन समय का इशारा है कि कार्यक्रम को समापन करना चाहिए, तो प्रतिक्रिया देते हुए कार्यक्रम को समापन करें और विदा ले।
0: आदरणीय मौर्य साहब, आपके पूरे परिवार को रेडियो रिमझिम परिवार के तरफ से हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपने कहा कि रेडियो रिमझिम को हम लंबे समय से सुनते हैं और विशेष करके रेडियो रिमझिम का विज्ञापन आपको अच्छा लगता है, यह जानकर हमें भी काफी अच्छा लगा। क्योंकि आज से 15 साल पहले जो विज्ञापन बनता था उसका तरीका अलग था, आज जो विज्ञापन बन रहा है वह एक कार्यक्रम के तरह बन रहा है, हम लोगों को भी काफी अच्छा लगता है। क्योंकि विज्ञापन बनाने में काफी लंबा समय लगता है, पहले स्क्रिप्ट लिखिए, फिर उसका एडिट कीजिए, फिर उसको किसी अच्छे एक्सपर्ट से जांच कराइए, फिर जो प्रोफेशनल आरजे हैं उनके द्वारा रिकॉर्ड कीजिए, तो यह लंबा प्रोसेस चलता है। 7-8 दिन में एक छोटा सा 30 सेकंड या 40 सेकंड का विज्ञापन बनता है, इसलिए विज्ञापन को सुनने में काफी अच्छा लगता है। कहा जाता है कि जिस काम में हम जितना लंबा समय देते हैं उसमें उतना ही अनुभव प्राप्त होता है, और जिस काम को करने से व्यक्ति को आत्मसंतुष्टि होता है उससे बेहतर काम दुनिया में कोई नहीं।

0: है, बेरोजगारी है, हमारा मन नहीं है इस काम को करने के लिए, लेकिन करे तो क्या करे, उस काम को किसी तरह कर रहे हैं क्योंकि परिवार के लोगों का मुंह देखना है। यह बातें जो है अक्सर हमको सुनने के लिए मिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि जब आप लग गए हैं तो पूरे तन मन से उस काम को कीजिए। देने वाला मालिक है, देने वाला भगवान है, आपके बेहतर काम का इनाम आपको जरूर मिलेगा। जीवन में घबराना नहीं है, जीवन में डरना नहीं है। कई बार हमने देखा है कि निर्दोष लोगों के ऊपर भी कई तरह का केस मुकदमा हो जाता है और समय के साथ हमारी जो न्यायपालिका है वह सही और त्वरित निर्णय लेकर निर्दोष व्यक्ति को छोड़ देती है। तो ईश्वर पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। आप लंबे समय से सुन रहे हैं, इसमें अपना अनुभव जरूर हमें बताइएगा कि हमने जो कार्यक्रमों में बदलाव किया है, समय के साथ हमने जो टेक्नोलॉजी बदला है, वह आपको कितना अच्छा लगता है। हम जो भी करते हैं अपने श्रोताओं के सुझाव के आधार पर करते हैं और हम प्रयास करते हैं कि पंच परमेश्वर का जो सुझाव आता है वह बहुत ही बेहतर आता है। हमारे असंख्य श्रोता हैं, कई श्रोता जो है अधिकारी हैं, कई जो है कर्मचारी हैं, कई महिला सिपाही हैं, कई तरह के लोग हैं जो स्वस्थ मनोरंजन के लिए रेडियो रिमझिम को सुनते हैं। और मेरा मानना है कि जब समाज के इतने बड़े वर्ग के लोग रेडियो रिमझिम को सुनते हैं और इतनी बड़ी संख्या में जो सुझाव आता है वह रेडियो रिमझिम को सुदृढ़ करता है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम में सभी लोगों के बातों को हम सुनते हैं, रखते हैं और पूरी ईमानदारी से जवाब देने का प्रयास करते हैं। तो आदरणीय श्रोता महोदय, हमें उम्मीद है कि आप हमारे बातों पर गौर कीजिएगा और जीवन में बेहतर करने का प्रयास कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आदरणीय श्रोता बंधु, सोनू जी ने कहा कि अब इस कार्यक्रम का समाप्ति करना चाहिए, चूंकि हर कार्यक्रम का एक परिधि होता है, एक समय होता है जिसके अंतर्गत उस कार्यक्रम का संचालन होता है। आपका संदेश मिला कार्यक्रम रेडियो रिमझिम का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और जिस कार्यक्रम में हमारे बहुत सारे आदरणीय श्रोता अपने सुझाव और विचार को देते हैं वह हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अब इस कार्यक्रम से हमें जाने की इजाजत दीजिए और अगले आपका संदेश मिला कार्यक्रम में अपने बातों को जरूर पहुंचाइए, क्योंकि हम आपके विचार और सुझावों पर ही अगले सप्ताह का कार्यक्रम निर्धारित करते हैं। तो रेडियो रिमझिम को सुनते रहिए और अपने बातों को हम तक पहुंचाते रहिए। अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए, शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
1: तो श्रोताओं, ये रहा आज का संदेश मिला कार्यक्रम। यदि आप भी इस कार्यक्रम में अपना शिकायत, सुझाव, प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। इसके लिए हमारा पता है रेडियो रिमझिम, बंजारी मोड़, गोपालगंज, पिन कोड 84 14 28, तथा व्हाट्सएप नंबर है 98527 88291 और ईमेल आईडी है radiorimjhim@gmail.com। आप जिस माध्यम से अपने शिकायत, सुझाव या प्रशंसा या अपने विचारों को भेजना चाहते हैं उस माध्यम का उपयोग करके हम तक पहुंचा सकते हैं। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें भी दीजिए जाने की इजाजत। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम, जो हमेशा से कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।
2: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
3: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
2: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
3: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
6: सुनिए सुनिए सुनिए,
8: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
6: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
8: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
6: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं।
1: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं, इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण में आम लोगों और युवाओं की भागीदारी की सराहना करते हुए कहा कि मिशन लाइफ के जरिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
2: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे। लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितंबर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
4: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिस कर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है। सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
5: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
6: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जिबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
5: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
7: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
2: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनावों का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वलारेवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारेवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित।
9: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजिम 90.4 एफएम पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
10: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
11: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
10: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
11: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
10: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
12: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
11: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
10: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
11: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
10: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
11: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
10: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
11: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
10: कॉल नाउ 9056-59536 या 9056-57902।
13: ठक ठक।
14: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
15: अच्छा मिला ही नहीं।
14: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
15: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
14: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
15: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
16: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
17: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
11: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
18: दादी, आप घुटने पकड़ कर क्यों बैठी है? उठने में भी इतनी परेशानी हो रही है।
19: अरे बेटा, घुटनों में इतना दर्द है कि बैठना, उठना और ठीक से चलना भी मुश्किल हो गया है।
18: दादी, किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर को दिखाया?
19: हाँ बेटा, डॉक्टरों ने बताया कि मेरे घुटने घिसकर खराब हो गए हैं और अब घुटना बदलवाने की सलाह दी है, लेकिन मुझे ऑपरेशन से बहुत डर लगता है।
18: दादी, अब डरने की जरूरत नहीं है। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर, गोरखपुर में डॉक्टर संजय विश्वकर्मा, जॉनसन एंड जॉनसन की विश्व प्रसिद्ध रोबोटिक टेक्निक की मदद से रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं। ये तकनीक घुटना प्रत्यारोपण में अधिक सटीकता के लिए मदद करती है और कई मरीज ऑपरेशन के अगले दिन से चलना फिरना शुरू कर देते हैं।
19: अरे वाह, तो अब घुटनों के दर्द से राहत की उम्मीद है।
18: बिल्कुल दादी, अगर आपके घुटने भी घिसकर खराब हो गए हैं और चलने फिरने में परेशानी हो रही है, तो रोबोटिक टेक्निक से नी रिप्लेसमेंट के लिए डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से परामर्श करें।
11: संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एंड सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला से 100 कदम पश्चिम नेशनल हाईवे पर, फल मंडी और रुस्तमपुर ढाले के बीच गोरखपुर। संपर्क करें 7388-89470 या 9198-86973।
13: सुनिए सुनिए सुनिए,
20: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
13: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
20: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
13: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
21: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल, स्कॉर्पियो से पकड़ी गई 465 लीटर से अधिक शराब। कटिया पुलिस ने भी 178 लीटर शराब के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा। ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस कर रही है लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सांसद के आवास पर आज लगा जनता दरबार। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक जख्मी। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। मीरगंज थाना की पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त किया है। इस दौरान दो वाहनों को भी पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अभियान चलाते हुए मीरगंज के जिगना राजघाट फील्ड के पास वाहन जांच शुरू किया। इसी दौरान एक कार से कुल 465 लीटर से अधिक विदेशी शराब मिली। विधिवत कार और शराब को जब्त किया गया। साथ ही अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त कार स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया है। इस मामले में वाहन मालिक और चालक के विरुद्ध कांड दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। गाड़ी छोड़कर शराब तस्कर फरार हो गया है। कटिया थाना की पुलिस ने भी एक भारी मात्रा में शराब के कंसाइनमेंट को पकड़ा है। इसमें 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 2 मोटरसाइकिल भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने शराब के विरुद्ध अभियान चलाते हुए मिश्र मझवलिया गांव के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की। इस दौरान एक महिला के घर से 135 लीटर देशी शराब बरामद हुआ। इसके बाद गुप्त सूचना के आधार पर वाहन जाँच के क्रम में पुलिस ने महंथवा मोड़ के पास से 2 मोटरसाइकिल पकड़ी। तलाशी लेने पर गाड़ियों से 33 लीटर से अधिक देशी शराब बरामद हुआ। इस मामले में कुल 5 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसमें एक महिला है, एक परवेज अली पिता हैदर अली, दूसरा राहुल कुमार पिता बीरेंद्र सिंह, ये दोनों साकिन छोटकी मगहिया थाना कटिया के निवासी हैं, चौथा चंदन कुमार पिता स्वर्गीय रुदल शाह और पांचवा विशाल कुमार पिता उपेंद्र शाह, ये दोनों सुस्ता माधोपुर थाना सदर जिला मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। इन सभी को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया। कटिया थाना क्षेत्र के जमुनहा बाजार में हुई ज्वेलरी दुकान के मालिक से लूट कांड में पुलिस लगातार अपराधियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी कर रही है। बताते चलें कि शनिवार की देर शाम बाइक सवार 4 अपराधियों ने विष्णु ज्वेलर्स के दुकानदार हरेंद्र वर्मा पर हमला कर दिया। ज्वेलरी से भरा हुआ उनका बैग लूट लिया। घटना के दौरान लोगों ने अपराधियों को घेरने का प्रयास किया तो अपराधियों ने फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गए। हालांकि अपराधियों की एक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर ही छूट गई, जिसे पुलिस ने जब्त कर लिया है। हरेंद्र वर्मा के सिर में गंभीर चोट लगी है, उनका स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वे अपने बैग में करीब 10 लाख रुपए से अधिक की ज्वेलरी लेकर जा रहे थे। इसी बीच अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया। हालांकि लूटी गई ज्वेलरी की वास्तविक कीमत दुकानदार के होश में आने और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हरेंद्र वर्मा शनिवार की शाम जमुनहा बाजार स्थित अपनी दुकान बंद करने के बाद ज्वेलरी को एक बैग में रखकर बाइक से भृंगी चौक अपने आवास को लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक सवार 4 अपराधियों ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि अपराधियों ने हरेंद्र वर्मा पर हमला कर दिया और उनके पास मौजूद ज्वेलरी से भरा बैग लेकर फरार होने लगे। हमले में दुकानदार के सिर पर चोट लगी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को जुटता हुआ देखकर अपराधियों ने फायरिंग की। स्थानीय लोगों ने अपराधियों को घेरने का प्रयास किया, परंतु अपराधियों ने जब फायरिंग शुरू की तो लोग इधर उधर भागने लगे और इसी बीच अपराधी भी भागने में सफल हो गए। गए। पुलिस अब पूरे इलाके की सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। जनता की समस्याओं को सीधे सुनने और उनके समाधान के उद्देश्य से गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने अपने आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न प्रखंडों और पंचायतों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, सांसद को अपनी समस्याओं को लेकर अवगत कराया। सांसद महोदय ने भी गंभीरता से जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों से दूरभाष पर बातचीत कर कई मामलों के शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिया। जनता दरबार में सड़क, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेंशन, सरकारी योजनाओं का लाभ सहित विभिन्न जनहित से जुड़े मामलों को लोगों ने सांसद के समक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकता है और इसको लेकर वे जब भी गोपालगंज में रहते हैं जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करते हैं। नगर थाना क्षेत्र के जंगलिया मोहल्ले में शनिवार की शाम को दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद शांत कराने पहुंचे एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। चाकू लगने से युवक के पैर में गंभीर चोटें आईं। घायल युवक जंगलिया के नूर आलम का पुत्र मोहम्मद इकबाल उर्फ बिक्की बताया जा रहा है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया जहां इसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि जंगलिया में दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। मोहम्मद इकबाल उर्फ बिक्की वहां पहुंच और दोनों पक्षों के बीच हो रहे झगड़े को शांत कराने का प्रयास करने लगा। आरोप है कि इसी दौरान एक व्यक्ति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू उसके पैर में लगी और वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने उठाकर इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां मोहम्मद इकबाल का इलाज चल रहा है। पुलिस इस मामले में चार लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रही है और आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना का आज कई पदाधिकारियों ने दौरा किया। इस दौरान अतिथियों ने संस्थान की अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और प्रक्षेत्र आधारित गतिविधियों का अवलोकन किया। दौरे का उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं एवं विकसित भारत 2047 के अनुरूप विज्ञान आधारित, मांग आधारित एवं किसान केंद्रित कृषि अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी प्रसार को सुदृढ़ करना था। इस दौरान प्राकृतिक खेती, मोटे अनाज आधारित फसल प्रणालियों, विविधीकृत पोषक वाटिका, सौर ऊर्जा आधारित कृषि मशीनीकरण, स्मार्ट जल प्रबंधन तथा जलवायु अनुकूल किस्मों से संबंधित कार्यों की समीक्षा की गई। रेन आउट शेल्टर, ओपन टॉप चैम्बर्स तथा एक एवं दो एकड़ के सामेकित कृषि प्रणाली मॉडल का भी अवलोकन किया गया। पशुधन प्रक्षेत्र में ब्लैक बंगाल बकरी एवं मुर्रा भैंस के अनुवांशिक सुधार संबंधित गतिविधियों की जानकारी भी ली गई। बताया जा रहा है कि इस अवसर पर संस्थान की प्रौद्योगिकियों एवं किसान केंद्रित नवाचारों पर आधारित प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। सफल किसानों ने समेकित कृषि, सब्जी उत्पादन, बकरी एवं मछली पालन से आय बढ़ाने के अनुभव साझा किए। श्री त्रिपाठी ने परिणामोन्मुखी एवं प्रक्षेत्र प्रासंगिक अनुसंधान तथा वैज्ञानिकों और किसानों के बीच मजबूत संपर्क पर जोर दिया। उन्होंने प्रौद्योगिकी के त्वरित प्रसार एवं राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय की भी आवश्यकता बताई। इस दौरान ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, अपर सचिव डेयर एवं सचिव ICAR तथा नर्मदेश्वर लाल, प्रधान सचिव कृषि विभाग बिहार सरकार ने एक एक बिंदुओं पर वहां दौरा करते हुए समीक्षा किया और वहां तैनात पदाधिकारियों से बातचीत कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। आज जिले के सभी थानों पर पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर चौकीदारी परेड का भी आयोजन हुआ, जिसमें चौकीदारों को अपने अपने क्षेत्र में सतर्क और सक्रिय रहकर संदिग्ध गतिविधियों, असामाजिक तत्वों और जेल से छूटे पेशेवर अपराधियों की गतिविधियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया गया। स्थानीय आसूचना तंत्र को और अधिक मजबूत करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही शराब तस्करी और अवैध शराब निर्माण पर भी प्रभावी रोक लगाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। उत्पाद विभाग की पुलिस ने कटिया के भागी पट्टी में जांच चौकी पर एक मोटरसाइकिल से 81 लीटर से अधिक शराब पकड़ी है। इसमें तस्कर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने शराब और मोटरसाइकिल को जब्त कर तस्कर की पहचान करने के लिए अभियान और जांच पड़ताल शुरू किया है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने आज अलग अलग मामलों में पकड़े गए कुल 4,245 लीटर से अधिक देशी और विदेशी शराब को नष्ट किया। बताया जा रहा है कि उत्पाद पुलिस ने कुल 30 मामलों में पकड़े गए 3,254 लीटर से अधिक विदेशी शराब को भी पकड़ा। कुल देशी और विदेशी मिलाकर 7,500 लीटर से अधिक शराब को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नष्ट किया गया। बताया जा रहा है कि न्यायालय के निर्देश पर इन सभी मामलों में पकड़े गए शराब को बलथरी चेक पोस्ट के पास जेसीबी से कुचलकर जमीन में दफन कर दिया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में आज कुचायकोट के संगवा डीह पंचायत भवन परिसर में सूचना का अधिकार अधिनियम एवं नागरिकों के मौलिक कर्तव्य तथा कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न इसके रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 को लेकर विधिक सहायता आदि विभिन्न विषयों पर विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता संजीव एवं पीएलवी इम्तियाज अंसारी की टीम ने कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों को सूचना का अधिकार अधिनियम क्या है, किसी विभाग से सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के तरीके, सूचना प्रदान करने की समयावधि, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य एवं राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता की रक्षा को लेकर भी लोगों को विस्तार से जानकारी दिया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। हालचाल के इस अंक को आप हमारे YouTube, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुन सकते हैं। इसके लिए हमारे रेडियो रिमझिम चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप प्ले स्टोर से रेडियो रिमझिम के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सीधे अपने मोबाइल फोन में भी दुनिया के किसी भी कोने से रेडियो रिमझिम की सेवा का लाभ ले सकते हैं। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। स्कॉर्पियो से पकड़ी गई 465 लीटर से अधिक शराब। कटिया पुलिस ने भी 178 लीटर शराब के साथ 5 आरोपियों को पकड़ा। ज्वेलरी लूट कांड में पुलिस कर रही है लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी। सांसद के आवास पर आज लगा जनता दरबार। आपसी विवाद में हुई चाकूबाजी में एक युवक जख्मी। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: बनिए अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ। आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है। यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
3: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
22: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
23: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
24: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
23: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
24: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
23: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
24: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
23: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
24: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100, या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
25: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
2: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
5: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
6: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
7: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
25: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
26: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
27: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
26: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
28: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
29: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
28: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
29: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
28: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
29: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
28: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
30: अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। एक और एक नया हफ्ता और एक नए एपिसोड के साथ मैं यहां पर आ चुकी हूं, और आज का जो एपिसोड है वो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरी बचपन की यादें जो हैं वो इस जमाने से जुड़ी हुई हैं। मैं बात कर रही हूं 90s के जमाने के बारे में। बॉलीवुड में 90s का वो वक्त था जब हिंदी सिनेमा को शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे बेहतरीन एक्टर्स मिले और ऑडियंस को उनका रोल मॉडल मिला। इन एक्टर्स की काफी सारी ऐसी फिल्में थी 90s में जिसके लिए वन टाइम वॉच वॉज नॉट एप्लीकेबल। हम आज भी अगर कोई पूछे तो 90s की ही फिल्मों को अपनी फेवरेट फिल्में बताते हैं। वो उतनी ही फ्रेश और एंटरटेनिंग है आज भी अगर आप देखेंगे तो। ऑल्सो 90s का डेकेड मेरे हिसाब से वॉज लाइक अ ट्रांजिशन पीरियड, चाहे वो म्यूजिक हो या फैशन, सभी कुछ में एक नयापन आया था। इनफैक्ट एक्टर्स खुद भी अपनी वर्सिटैलिटी प्रूव करने के लिए चैलेंजिंग मूवीज किया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, आमिर 27 साल के थे जब उन्होंने जो जीता वही सिकंदर में एक स्कूल बॉय का रोल किया था। तो जो जीता वही सिकंदर वॉज वन ऑफ द

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। 90s के जमाने के कुछ बेहतरीन गाने आज मैं आपको सुना रही हूँ मेरे डिजिटल ऑडियो प्लेयर सारेगामा कारवां से। आई होप आपको ये गाने पसंद आ रहे हों। 90s की वन ऑफ द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल बट अप्रिशिएटेड फिल्म वॉज लम्हे। ऑडियंस को ज्यादा खुश नहीं हुई थी इस मूवी से, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरह का रिलेशनशिप दिखाया था, जो एज गैप दिखाया था, उस समय लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे इसके लिए। आज तक भी कहते हैं कि लम्हे वॉज अहेड ऑफ इट्स टाइम। अगर आज की तारीख में ये फिल्म आती तो सुपर डुपर हिट हो जाती। वैसे कि आप जानते हैं कि यश चोपड़ा ओरिजिनली एक न्यू कमर को कास्ट करना चाहते थे फॉर द रोल ऑफ वीरेन, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एक्टर को अनकंफर्टेबल फील हो ये रोल प्ले करते हुए। लेकिन ये रोल लिखा तो गया था विनोद खन्ना जी को दिमाग में रख के, पर ये जब फिल्म पूरी हुई, स्क्रिप्टिंग कंप्लीट हुई, तब तक विनोद खन्ना जी कुड नो लॉन्गर लुक लाइक अ 20-year-old। थोड़ी सी उम्र उनके चेहरे पे दिखने लगी थी, तो उन्होंने विनोद जी को कह दिया कि वो ये फिल्म में नहीं है। इस बात से विनोद जी काफ़ी अपसेट भी हुए थे। जैकी श्रॉफ ने भी इस रोल के लिए ट्राई किया था, उस समय दिल जले फिल्म कर रहे थे वो, और उस समय की उन्होंने अपनी तस्वीरें भेजी थी यश चोपड़ा जी को। यश चोपड़ा जी को वो अच्छे लगे थे, लेकिन फिर भी वो फील नहीं आ रही थी। और तब वो समय था जब मौके पर चौका मारा अनिल कपूर जी ने, लेकिन अनिल जी की मूछें जो थी ना, वो यश जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए वो फिर भी सोच रहे थे कि साइन करें कि नहीं करें। और उसी दौरान अनिल कपूर जी का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण वो घर पर ही रहे थे एक महीने भर के लिए। अब कुछ शूट वूट कर नहीं रहे थे, तो उन्होंने सोचा चलो इसी बहाने मूछें शेव करा देते हैं। उन्होंने मूछें शेव कराई, तस्वीरें खींच के यश चोपड़ा जी को भेजी, और यश चोपड़ा जी को वो दिल से पसंद आ गए। एंड दैट इज़ हाउ अनिल कपूर जी इस फिल्म का हिस्सा बने। तो चलिए, लम्हे फिल्म के बारे में बात हो रही है, तो इसी फिल्म का गाना आपको सुनाते हैं लता मंगेशकर जी और हरिहरन जी की आवाज में, वन ऑफ माय फेवरेट्स, कभी मैं कहूँ। और यही वो समय था जब यश जी को शाहरुख खान का साथ मिला था। कैसे इन दोनों का ये पैर बना था, जो कि आज तक भी यशराज फिल्म्स के साथ शाहरुख खान का एक नाता सा है, बताऊंगी उसके बारे में आपको कुछ ही देर के बाद।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
10: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
10: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
10: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
10: संपर्क करें 84710-3092 या 97-65-65-750।
11: प्रसाद क्लिनिक।
12: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
11: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
12: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
13: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। 90s के जमाने के कुछ बेहतरीन गाने आपको सुना रही हूँ और हिंदी सिनेमा में उस जमाने की कुछ छुपी हुई कहानियां जो हैं वो आप तक लेकर के आ रही हूँ।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। वैसे 90s की शुरुआत ही हुई थी जब हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान की एंट्री हुई थी और इंडस्ट्री में आते ही वो छा से गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ही वॉज क्वाइट इन टू माइंड्स कि वो एक ऐसा रोल करें कि नहीं करें जहां पर उन्हें एक नेगेटिव रोल में दिखाया जाएगा। वो अंजाम हो चुका था तो फिर उसके बाद भी वो थोड़े से डरे हुए थे कि एक ऑब्सेसिव लवर का एक पागल सा किरदार उन्हें डर फिल्म में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये उनके लिए सही होगा कि नहीं होगा। सनी देओल उस समय सुपरस्टार थे, बहुत पॉपुलर थे। उन्हें तो यश चोपड़ा जी ने चॉइस दी थी कि तुम चूज करो कि तुम सुनील मल्होत्रा का रोल करना चाहते हो या राहुल मेहरा का। सनी पाजी ने सोचा कि भाई मैं तो हीरो हूँ, मैं विलन का रोल कैसे कर सकता हूँ, लोगों को मैं पसंद आना बंद हो जाऊंगा। तो उन्होंने सुनील मल्होत्रा का रोल चूज कर लिया और शाहरुख खान को मिला राहुल मेहरा का रोल। एंड ये हम जानते ही हैं कि ये रोल कितना बड़ा हिट हुआ। बाय द एंड ऑफ इट सभी लोगों ने, देखने वालों ने, जो विलन है, जो शाहरुख खान का रोल था, राहुल का रोल था, उसके साथ में सिंपथाइज किया। एंड रातों रात शाहरुख खान सुपर डुपर हिट स्टार बन गए थे। दो लोग थे जिन्होंने इस रोल को मना किया था और बाद में बड़ा पछताए थे। वो दो लोग थे अजय देवगन और आमिर खान। इन दोनों को ही राहुल मेहरा के रोल के लिए अप्रोच किया गया था और दोनों ने ही इस रोल के लिए मना कर दिया था। सोचिए कुछ छोटे छोटे डिसीजंस कितना बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं हमारे करियर पे। तो चलिए डर फिल्म से ही आपको अगला गाना सुनाते हैं हम। उदित नारायण जी की आवाज में है ये गाना, जादू तेरी नजर। सुनिए जरा।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। 90s के जमाने की कुछ कहानियां आपको बता रही हूँ, कुछ गाने भी उसी जमाने के आपको सुना रही हूँ। उस जमाने के वैसे जो किस्से हैं वो बड़े ही रहस्यमयी टाइप के हैं, ऐसा लगता है कि छुपाए गए हैं काफी सारे ये किस्से, जिससे कि बुरी पब्लिसिटी ना मिले लोगों को। जैसे कि कौन से रोल किस एक्टर ने नकार दिए, मतलब ये तो कहानी जो है वो एंडलेस है, चलती चली जा सकती है। कुछ देर पहले मैं आपको बता रही थी कि डर फिल्म में शाहरुख खान का जो रोल था वो पहले अजय देवगन और आमिर खान दोनों को ऑफर किया गया था और दोनों ने ये रोल नहीं किया। उसी तरह के आपको पता है शाहरुख खान ने भी एक सुपरहिट रोल को मना किया था और वो रोल था विरासत फिल्म में अनिल कपूर जी का रोल। 1997 में प्रियदर्शन जी की मूवी आई थी विरासत। ये फिल्म जब रिलीज हुई थी तब सिनेमा हॉल खाली हुआ करते थे, क्योंकि इस फिल्म के बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं था, ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग नहीं रही थी, मसाला फिल्म नहीं थी। लेकिन बाद में वर्ड ऑफ माउथ के साथ में जो पब्लिसिटी मिली है इस फिल्म को, तो ये फिल्म सुपर डुपर हिट हुई थी। एंड ऑब्वियसली शाहरुख खान रियली रिग्रेटेड कि उन्हें ये रोल कर लेना चाहिए था। अमरीश पुरी जी का भी जो किरदार है वो पहले नसीरुद्दीन शाह जी निभाने वाले थे, लेकिन तबीयत में कुछ गड़बड़ी के चलते उन्होंने ये रोल छोड़ा और अमरीश पुरी जी को ये रोल मिला। मैं तो सोच भी नहीं सकती हूँ किसी और को इस रोल में जो कि अमरीश पुरी जी ने रोल किया था। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोल। इनफैक्ट इसमें पूजा पत्रा भी थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी लगी थी, लेकिन जो आवाज़ थी इस फिल्म में वो पूजा पत्रा की खुद की नहीं थी। पद्मिनी कोल्हापुरी जी ने पूजा पत्रा के लिए इस फिल्म में डब किया था। तो इतनी बात हो ही रही है तो सुनाते हैं आपको गाना इसी फिल्म से। सुनिए विरासत फिल्म का अगला गाना कुमार सानू और जसपिंदर नरूला जी की आवाज़ में। हर लड़की ने एक ना एक बार अपने आप को इस गाने में इमेजिन किया है। तारे हैं बाराती।

0: सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से,
2: वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप।

वीकेंड क्लासिक रेडियो शो सुन रहे हैं आप। 90s के जमाने की बातें चल रही हैं यहाँ पर और उसी जमाने के ऐसे गाने आपको सुना रही हूँ जो आज तक भी हमको जबानी याद हैं। हर एक एक शब्द, सारे लिरिक्स हमें रटे हुए हैं। तो आई होप आपको आज की ये प्लेलिस्ट पसंद आ रही हो। 90s के जमाने में एक्ट्रेसेस भी बहुत सारी आई, रानी मुखर्जी, काजोल, दिव्या भारती, जूही चावला, सभी लोगों ने अपने आप को प्रूव किया इसी समय में। ऐश्वर्या राय ने भी इसी समय में, इसी दौरान अपने करियर की शुरुआत की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बचपन से वो कभी भी एक्ट्रेस बनना नहीं चाहती थी, ना वो बॉलीवुड बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। वो तो मेडिकल साइंस परस्यू करना चाहती थी और जूलॉजिस्ट बनना चाहती थी। उसके बाद में एक जमाना ऐसा भी था जब उन्होंने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने का सोचा था, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती गई उन्हें खुद ब खुद मॉडलिंग के ऑफर्स आने लगे उनके खूबसूरती को देख के, एंड दैट्स हाउ वो मॉडलिंग में चली गई। वैसे एक रोल था जो उन्होंने डिक्लाइन किया था और वो अभी भी रिग्रेट करती हैं कि वो रोल अगर इन्होंने किया होता, ऐश्वर्या राय ने किया होता, तो शायद एक अलग ही पहचान उनकी बनती बॉलीवुड में 90s के जमाने में। और वो रोल था टीना का रोल, यानी रानी मुखर्जी का रोल, फिल्म कुछ कुछ होता है में। पहले ये रोल ट्विंकल खन्ना को दिया गया था, उन्होंने मना किया तो ये रोल ऐश्वर्या राय के पास गया था, उन्होंने भी मना किया तो ये रोल रानी मुखर्जी के पास गया था। वैसे यू वोंट बिलीव, 2003 की मुन्ना भाई MBBS संजय दत्त की जिंदगी की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म, इसमें जो ग्रेसी सिंह का किरदार था वो भी पहले ऐश्वर्या राय ही प्ले करने वाली थी, लेकिन किसी कारण से उन्होंने इस रोल को भी मना कर दिया था। बट वट एवर इट इज, आज की तारीख में हम जानते हैं ऐश्वर्या राय को एज वन ऑफ द प्रिटीएस्ट लेडीज ऑफ बॉलीवुड इंडस्ट्री। फिलहाल ऐश्वर्या राय की बात हो ही रही है तो सुनते हैं ऐश्वर्या राय की ही डेब्यू फिल्म, पहली फिल्म और प्यार हो गया से ये गाना। सुनते रहिए वीकेंड क्लासिक रेडियो शो।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: के साथियों का नाद स्वरम वादन आपके साथ विशेष तविल पर संगत कर रहे थे एस सुधाकर। यह कार्यक्रम आकाशवाणी बेंगलुरु का योगदान था जिसे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो से आपके लिए प्रस्तुत किया गया।
1: इंदि रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। यू आर लिसनिंग टू नाद स्वरम रिसाइटल बाय वी आर नटराजू एंड पार्टी।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं पूनम आहूजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
2: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
4: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
2: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय निपुणिका शाहिद। President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent times underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The President was addressing the valedictory session of the two-day conference on the future of environment and climate dynamics, organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
3: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources. The President said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal A.P. Singh and Japan Air Self-Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self-Defense Force are conducting the joint air exercise Veer Garjan 2026 in Jodhpur. This is the first time that Japanese fighter aircraft are operating from Indian soil as part of a bilateral exercise, further deepening the defense partnership between both the countries. Talking to media in Jodhpur after the sortie, Air Chief Marshal Singh said, "First ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in bilateral defense ties." A Naxal commander carrying a bounty of 30 lakh rupees has been killed in an encounter with the Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Brijesh Ganju alias Gopal Singh Bokta was the chief of Jharkhand's banned extremist outfit, the Tritiya Prastuti Committee. A highly wanted fugitive, Ganju had been absconding for nearly 2 decades and was facing more than 50 criminal cases, including murder, kidnapping, extortion, and targeted attacks on security forces. The Electoral Registration Officer of Delhi Cant Assembly Constituency has clarified the details, facts and documents furnished by Election Commissioner of India Dr. Sukhbir Singh Sandhu has already been duly verified. The Electoral Registration Officer said the electoral entry of Dr. Sandhu has been validated and retained for inclusion in the final electoral roll of Assembly Constituency 38, Delhi Cant, which is scheduled for publication on 4th November. Indian Institute of Corporate Affairs IICA organized an insightful session today in Insolvency and Bankruptcy Code as an evolving law through the amendments in Manesar Gurugram. The Ministry of Corporate Affairs said that the session rendered valuable insights over the dynamic nature of insolvency law, relationship between legislation, subordinate legislation and market developments. The Ministry informed that the session was attended by former chairperson of the Insolvency and Bankruptcy Board of India, Dr. M.S. Sahu and DG and CEO IICA Gyaneshwar Kumar Singh, among other dignitaries.
2: India made a strong start at the Asian Games in Aichi, Nagoya, Japan, winning 2 silver medals in shooting on the opening day today. Trio of 11L Velarivan, Vidarsa Vinod and Sonam Maskar won silver in the women's 10-meter air rifle team event, while 11L added another silver in the individual event. The President and Prime Minister have congratulated the athletes on the feat. Sujika Tarial created history, becoming the country's first athlete to assure an Asian Games medal in mixed martial arts after reaching the women's traditional 60kg semi-finals. And that is the end of this news bulletin.

रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: कौन था बोलो, कौन था, कौन था, कौन था बोलो, कौन था।

0: कल जब मैं कॉलेज से आ रहा था तब मैंने तुझको देखा।
1: क्या?
0: किसी और के बाइक पे बैठी थी, बाहों में उसे लपेटी थी, साथ उसके रेस्टोरेंट गई, उस पे तू प्यार लुटा रही थी, जिसके हाथों से होटल में तू पिज्जा बर्गर खा रही थी।
1: हाँ तो?
0: जो लड़का तुझे खिला रहा था बोल कौन था? कौन था? सोनू था?
1: नहीं।
0: मोनू था?
1: नहीं।
0: सोनू था, मोनू था, कौन था? कौन था?
1: मेरा भाई था।
0: भाई था?
1: हाँ भाई था।

0: प्यार नहीं है करती तू मुझसे प्यार नहीं है, खाके कसम तू बोल जरा क्या वो तेरा यार नहीं है।
1: कसम से नहीं है।
0: नहीं है?
1: नहीं।
0: शॉर्ट के सेल्फी ले रही थी, मेरा गिफ्ट किया ही फोन था, आईफोन था, बोल कौन था, सोनू था?
1: कौन सोनू?
0: मोनू था,
1: मैं नहीं जानती।
0: सोनू था, मोनू था, कौन था, कौन था?
1: अरे मेरा भाई था।
0: भाई था?
1: हाँ।
0: चल झूठी चल झूठी चल झूठी चल झूठी।
1: विश्वास नहीं है मैं

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो,
2: नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
2: धन्यवाद। आई 2 मिनट लेट हो गया मैम, इतना 3 मिनट।
1: हाँ, 2 मिनट थोड़ा लेट हो गया,
2: बात करते हुए 2 मिनट लेट हो गया हमको भी।
1: अच्छा जी,
2: चलिए पता लग गया।
1: तो क्या हाल चाल है आपका?
2: सब बढ़िया, मतलब बताइए। एक नंबर।

0: गया मेरा और भाई फोन से बात हो गया।
1: एक नंबर में लगाते तो है लेकिन कॉल आपका
0: ये शिकायत हम करने वाले थे लेकिन अभी आप ही बता दी।
1: पीछे चला जाता है वो कंप्यूटर में एडिट करने के लिए जब डालते हैं उनको।
0: लेकिन मैम हम आपको एक बात बता दें, एक दिन मनोरमा मैम कोशिश करके बजाई थी एक नंबर में। हम आप बोले थे उस दिन भी की मैम कोशिश कीजिएगा, इतना खुशी मिलता है, जितना खुशी मिलता है ना आप एक बार श्रोता बनकर मतलब कॉल कीजिएगा तो पता चलेगा मिलता है जब एक नंबर बजता है।
1: बहुत खुशी मिलता है ये तो बात है। श्रोता बन के कॉल या मैसेज करें तो इसके लिए तो मुझे सोनू जी के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए उसके बाद ही हम आप लोगों के बीच जुड़ पाएंगे।
0: जी मैम, और उनका तो रात में शो चलता है ना। जो मतलब फेसबुक है रेडियो मंजिम का उसका ये शो का उसे नहीं लिखा है,
1: इसका नहीं लिखा है,
0: उसका लिखा है हेलो माई चॉइस का नहीं लिखा है।
1: हेलो माई चॉइस का नंबर नहीं लिखा है,
0: नंबर या कुछ भी नहीं लिखा है उसे, टाइमिंग कुछ भी नहीं लिखा है।
1: ठीक है, इसको देख के ध्यान से ठीक कर दिया जाएगा
0: क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं तो जानते हैं कब का कौन शो है। हमको रेडियो सुनते हुए 6 साल हो गया
1: बढ़िया,
0: और जुड़ते हुए यही 2-3 साल हुआ है। लेकिन बहुत लोग बोलते हैं रेडियो में क्या रखा है, इतना इंटरनेट का जमाना है, लेकिन हम बोलते हैं जो इसे लगाव है
1: वो कहीं नहीं।
0: हाँ, और इसमें सुनने का मजा ही कुछ और है।
1: ये तो है,
0: नेट के द्वारा तो 1 मिनट में सुन सकते हैं कोई भी सॉन्ग मंगा करके।
1: जी जी, वो तो
0: लेकिन रेडियो को सुनने का कुछ अलग ही मजा है। तो मैम आज हमें एक प्यारा सा गाना सुनाइए और कोशिश कीजिएगा 1 नंबर बजे और कोशिश कीजिएगा कि मेरा खुशी दुगुना हो जाए।
1: जी बिल्कुल कोशिश करेंगे क्योंकि इस बार मेरा कॉल जो है ये कल बजेगा।
0: हाँ वो तो हमको मालूम है, मनोरमा जी का कॉल बाकी है। कोशिश कीजिएगा फुल।
1: जी जी,
0: नहीं तो फिर से शिकायत रहेगी सोमवार को आपसे।
1: जी बिल्कुल, इस बार कोशिश है कि आपकी फर्स्ट कॉल ही बजे।
0: जी मैम, तो आज मुझे प्यारा सा गाना जिगर मूवी सुनाइए।
1: ओके, गाने की बोल बता दीजिए।
0: गाने का बोल है तुझको बाहों में भर लिया हमने ये फैसला कर लिया।
1: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
0: सुनवाने वाली तो थी लेकिन अभी है नहीं, तो सभी दोस्तों को सुनाएंगे और आपको सभी आरजे को।
1: चलिए बढ़िया है।
0: और कोई भी सॉन्ग है इसमें दिल को मतलब दिल पे लेके नहीं सुनते हैं, बस एंजॉय के लिए सुनते हैं।
1: जी, आपके द्वारा गाना फरमाइश किया जो रहता है वो काफी अच्छा आता है।
0: हमको बहुत ज्यादा मतलब मूवी से ज्यादा गाना से लगाव है और रेडियो रिंगटोन का सभी शो मतलब सुनते हैं।
1: बढ़िया,
0: इतना लगाव है उतना किसी को इंसान तो नहीं होगा उतना तो रेडियो से लगाव है। चलिए कोशिश कीजिएगा मैम, इसके लिए एडवांस धन्यवाद।
1: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए।
0: ओके मैम, बाय बाय।

0: नमस्कार कृष्ण बानी जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत बा रेडियो रूम 90.4 एफएम में।
0: जी हम तो रानी बाजार से लगावत लगावत जा रहे अब समझी की सारे बड़े सारे के सारे जावत हम कने के बरा। हां अब मैडम बात वहां ही से करे के जाते हो तो अब तो लास्ट कॉल चला था जी।
1: हां हां लास्ट कॉल चला था।
0: और का हाल चल रहा
1: जी? मैंने
0: खाना पीना बढ़िया से कैसे हाल में?
1: हाँ खाना पीना तो खा पी के आवे एकदम।
0: हाँ तो अब इतना बात प्रोग्राम करे थे प्रोग्राम ऐसे लेट हो जाते थे ना।
1: हाँ ऐसे लेट हो जाता।
0: हाँ मनोरमा जी नीचे आ
1: के बानी
0: तो घर परिवार को इसी बात चलिए वो गाना बारे मेरा प्यार वो है कि मर के भी तुमको बाहों से जुदा हो न देंगे।
1: जी और गाना की
0: सबसे पहले तो अपने के मनोरमा जी के सोनू भाई धरन सजीर भाई धरन कमरान भाई धरन जाटा भाई धरन सुमित राजन कुशवाहा जी धरन
1: चलिए फिर ठीक बात। अब और गाना प्ले करते हैं।
0: ठीक बात है तो नमस्कार और सभी दोस्तों को भी नमस्कार।
1: रेडियो रिमझिम में कॉल करे खातिर आप बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नाम का पूछिए ना कोई नहीं।
1: दिलीप
0: दिलीप राम
1: जी
2: नमस्कार। मर कर भी तुमको

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, अपने जिंदगी को खुशी से आजाद रखो, अपने जिंदगी को गम से आजाद रखो, इतना गुजारिश है तुमसे, सोने से पहले मुझे याद रखो। नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
3: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
2: मैं भी अच्छा हूँ। बोला की आज लगाऊं कॉल, अजीम रिकॉर्डेड होगा, जल्दी लग गया मेरा।
3: जी जी,
2: हो गया।
3: हाँ हाँ, नाश्ता करके आते हैं।
2: हाँ, मैं नाश्ता तो कर जाना ही करेगा। मेरा भी नाश्ता तो हो गया है, छत पे आए हैं, धूप है, हल्का हल्का हवा चल रहा है। अच्छा,
3: हाँ वैसे ही मौसम है।
2: हाँ, उधर बारिश हो रही तो नहीं हो रहा था, बोला था घर से फोन किया था, बोला बारिश नहीं हो रहा था। देखो समझिए, अक्टूबर का कुछ गर्मी पड़ेगा।
3: अभी तो शीत जैसा मौसम बन रहा है, शीत वगैरह सुबह में रहता है।
2: जी जी जी, समझिए कि नवंबर से तो ठंडा चालू हो जाता है, अक्टूबर जाएगा तो कुछ हो जाएगा। अब तो आप लोग त्योहार भी आने वाला है, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ।
3: जी जी, अब तो दुर्गा पूजा होगा, उसके बाद दिवाली, छठ सब ये लगातार आने ही वाले हैं।
2: जी जी, एकदम लगातार है त्योहार। दिवाली में तो बहुत लोग पूछते हैं कि दिवाली में सामान खरीदने जाए तो नहीं मिलता है।
3: ये तो है,
2: धनतेरस में सबसे बड़ी बात है टाइम। अगर इंसान अगर काम करने लगा तो बस टाइम का बहुत मायने रखता है। सबसे बड़ी बात है कि टाइम मिला तो कहीं कोई जाएगा, कुछ करेगा, और ऐसे और कोई काम नहीं करो टाइम में टाइम है तो कोई बात ही नहीं है। और सब सुनाइए, बढ़िया है?
3: जी, और सब बढ़िया है।
2: घर परिवार?
3: जी सब घर परिवार में भी सही है।
2: तो ये बताइए, ये जो चल रहा है उसमें कॉल वाला सिस्टम नहीं रखे क्या? हटा दिए क्या?
3: नहीं है, कॉल तो कॉल आ रहा था।
2: मैंने कॉल किया था बुध को दिन।
3: हाँ,
2: तो रिसीव नहीं हुआ। मैं बहुत कॉल किया, हमको लगा इसे हट गया था कॉल वाला,
3: तो
2: ये हो रहा था
3: बहुत। नहीं,
2: ये अंताक्षरी शुरू करिए ना, तो आप आइए गए हेलो, बुधो आ जाए हेलो, आपका सोचना है संडे पे?
3: इसके लिए तो हम लोग नहीं कर सकते, वो सर
2: बोलना पड़ेगा। अच्छा, संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है ना?
3: हाँ, संडे को भोजपुरी एक्सप्रेस चलता है 2 बजे से 5 बजे तक।
2: हाँ हाँ, मैं वही ना सोच रहा, बताइए कितना लंबा दिख के अपने काम, 12 बजे से लेकर ये टाइम बढ़ गया ना,
3: मतलब
2: 3 तक का टाइम, 12 बजे से 4 का।
3: हाँ, इसका टाइमिंग है 12 से 4।
2: 4 हो गया ना। बताइए लंबा डिप्टी न्यूज चलता है, तब आप लोग खाना वाना खाते होंगे।
3: हाँ,
2: तो अच्छा लगा आपसे बात करके। गाना हमको सुना दीजिए, गाना नहीं, आज कवाली सुना।
3: कवाली बता दीजिए कौन सा?
2: अपने ही रंग में रंग में शादी कवाली है।
3: जी जी, और कवाली सुनवाना भी है।
2: जी जी जी, सबसे पहले आपको और आयशा अब्दुल सिद्दीकी, सदीना सब्बा सिद्दीकी, अख्तरी, अहमद अली, दुर्गा परमी, अलीमा साजिया, आयशा अफरी, भास्कर वर्जी, ईश्वर सोनी, मुकेश, उमर शंकर, दिवेंदर, दिलीप राम, शाहजहां, रुखसार, सजदा अंसारी, रोशनी कुमारी, निशा सुकुनवा, निशा भारती, और जितने लोग सुन रहे हैं सबको सुना दीजिएगा। अच्छा लगा, फिर मंडे को मिलेंगे।
3: नमस्कार। नमस्कार, रेडियो रिमिशन में कॉल किए।

0: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: बोलिए, क्या हुआ
0: जी? अभी तो बस आप लोगों से बातें हो रही हैं।
1: बोली हूँ, गाना सुना है।
0: बिल्कुल बता दीजिए, कौन सा?
1: हर कदम पे कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई।
0: और ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: आपको और रेडियो सुनवाई सभी श्रोता को।
0: अच्छा
1: मैम, आप मनोरमा मैम बोल रही हैं?
0: नहीं,
1: तो सोमवार को रिकॉर्डिंग मनोरमा मैम की थी? नहीं,
0: इसी सोमवार को।
1: हाँ, इसी पिछले बार सोमवार को।
0: हाँ, मनोरमा जी रिकॉर्ड की थी।
1: तो मेरी भतीजी कॉल की थी और छोटी वाली तो बोल रही थी कि मेरा गाना मैम नहीं बजाई है, तो पढ़ने चली गई है। बोल रही थी कि कमेंट कर दीजिएगा बुआ।
0: अच्छा जी, सोमवार को जो गाना उनका रिकॉर्ड की थी कॉल, वो वैसे जो बाकी कॉल है वो आज बजेगा, तो हो सकता है उसी में हो।
1: वही बोल रही थी, हम लोग उससे रिगा रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा गाना मैम नहीं बजाई है, तो रो रही थी। तो बोल रही थी कि हम गोपालगंज जाएंगे ना तो मैम को मारेंगे, जाऊंगे तुम चिंती हो। बोल रही थी।
0: नहीं, वो कॉल है उसमें बच जाएगा, सोमवार का जो कॉल है कुछ इनके पास बचा हुआ है।
1: ठीक है, खाना खा लिए हैं?
0: हाँ, हम तो खाना ही खा लिए हैं।
1: ठीक है, बजा दीजिएगा गाना।
0: बिल्कुल, तो गाना सही करते हैं।
1: अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो, जी क्या हाल चाल है आपका?
3: ठीक है, बताइए।
2: जी हम सब तो ठीक है। दूसरा बता दीजिए।
3: बता दिए पवन सिंह की आवाज में।
2: और गाने की बोल
3: अपना पसंद से बता दिए पवन सिंह की आवाज में।
2: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
3: हमारा चीज
2: प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। वालेकुम अस्सलाम। हम भी ठीक बने रहो, बताइए रहो कैसे
0: ठीक बनी पता
1: करेशमा
0: जी। जी
1: सबका हाल चल रहा
0: ठीक बात सुनाए
1: हमी की ठीक बात
0: रिकॉर्डिंग कर लेने
1: ना तो एकदम टाइमली चालू कहीं है।
0: अच्छा तो हम जब से लगा तो लागत का है नहीं
1: लागत ऐसे नहीं है की कॉल एकदम लगातार आज बिल्कुल आ रहा है। अभी तक टाइम से ऊपर जाता हुए
0: हम कने कहीं लेट से चालू आप कड़ाई कोई लागत है ना तो मैं लाग गई
1: अबे बंद करे यात्रा नहीं है रिकॉर्डिंग चले भाग्य भरोसे उस वेला
0: चलो लिखर लग मैंने बात हो जाए ना गलती से उठ ना बेटा
1: ना जल्दी से बता दी कौन सा गाना प्ले करे।
0: गाना है बजा दी प्यार के लिए चरपल कम नहीं है
1: गाना क्योंकि सुनवाऊ के बाद
0: और अवरा सुने सबके सुनी जितना लोग रेडियो सुनता
1: चलिए और गाना प्ले कर सुनत रही रेडियो 90.4 FM
0: ठीक बात।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4
6: गुनाथ है।
5: जी क्या हाल चाल है आपका?
6: बहुत बढ़िया, मैं वो गाना चाहिए, मैं मेरा महबूबा आया है, बाहर फूल बरसाओ।
5: हाँ हाँ ओके, तो आपका ले सकते हैं।

0: नमस्ते
1: नमस्ते,
0: मुझे एक गाना सुनना है।
1: बिल्कुल बता दीजिए।
0: सड़क पिक्चर का।
1: हेलो
0: जी सर,
1: कौन सा गाना सुनना है उसमें का? सड़क मूवी का बता दे।
0: जब जब प्यार पे पहरा हुआ है।
1: और गाना किसी को सुनाएंगे भी?
0: सबसे पहले आप और जिन्हें सुनने वाले हैं।
1: ओके जी, तो आपका ले सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो।
0: ठीक, नमस्ते
1: नमस्ते।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। हेलो,
6: हाँ क्रिसमस बोलता हूँ।
5: अच्छा जी, कैसे हैं आप?
6: ठीक है बाबू।
5: अच्छा, ठीक बना?
6: हाँ ठीक बनो।
5: हाँ हाँ, हमनी के सबके ठीक बानी।
6: ठीक है,
5: बता दी कौन सा
6: कव्वाली सुना?
5: कव्वाली कौन सा कव्वाली बता दी?
6: निकाह फिल्म सुना दिया।
5: अच्छा, निकाह मूवी के गाना क्यों के सुना हो के बाद?
6: सभी तो सुनते करने लगे थे।
5: जी जी, तो चले फिर ठीक बात और गाना प्ले करता नहीं सुनत रही रेडियो 90.4 एफएम।
6: ठीक हो,
5: नमस्ते,
6: खुश रहो।

0: हेलो, नमस्कार मैम।
1: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में। बिल्कुल बता दीजिए कौन सा सॉन्ग और गाना किसी को सुनवाएंगे भी
0: सभी दोस्तों को।
1: वैसे आपका नाम
0: राजीव कुमार मधु सर।
1: अच्छा जी, चलिए फिर आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो
3: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: जी नमस्ते मैडम।
3: नमस्ते,
2: विकास कुमार बोलता हूँ उनकापुर से।
3: क्या हाल चल रहा?
2: बढ़िया।
3: क्या होता अभी?
2: आप कैसन बनी मैडम?
3: हम तो ठीक बनी, रहुआ बताए रहुआ कैसन बनी?
2: हमने को बढ़िया बनी सर।
3: तब भोजपुरी बोले में कोई दिक्कत तो नहीं है ना?
2: नहीं दिक्कत नहीं के, हमने की आदत हटाई जाए हिंदी बोले के, घर पर भी जाये ले तो कबू काल हिंदी बोल दीजिए। तो घर के गाँव का लड़को फेको हुआ सन तो कहे सन की चले तू हिंदी बोल रहा है, दिल्ली रहता है तो।
3: तब नाश्ता पानी हो गए?
2: हाँ नाश्ता पानी हो गया मैडम।
3: हाथ कैसे बा? हाथ में चोट लगा रहे ना?
2: हाँ सही हो, सही है मैडम।
3: चलिए बढ़िया,
2: विश्वकर्मा जी के कृपा से सही हो गए। बढ़िया, और बताइए? और बताइए मैडम।
3: और सब तो ठीक बा।
2: और वो मोनार्मा जी?
3: ठीक बानी।
2: अच्छा चलिए बढ़िया है, काम बटे।
3: तो बता दे आज कौन सा गाना सुने?
2: आज गाना सुनेंगे वो निरहुआ का नहीं है, सिनुरमा कैसे जाई बने, वो ऐसे कुछ गाना है वो, लेकिन याद नहीं है ना मैडम। वो जो बम्बई वाली एक नहीं रहती है, वो घर जाती है, वो उसके लिए उसके ट्रैक्टर पर बैठा करके निरहुआ वो अपने ट्रैक्टर पर बैठा करके ले जाता है उसको छोड़ने के लिए।
3: देखना तो पड़ेगा, याद मुझे भी नहीं आ रहा है।
2: याद नहीं आ रहा है?
3: और गाना किसी को सुनवाना भी है?
2: ये आपको आपको सुनवाना है और जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सबको। ये भोजपुरी वाले तो आप लोग को भी सुनवाएंगे और जितना रेडियो रिमझिम सुनने वाले हैं सबको और सोनी मैडम को भी सुनवाएंगे और सब मैडम। आपके घर में मम्मी पापा आपके सब सही है ना?
3: जी मेरे घर में तो सब सही है।
2: अच्छा सब कोई है अभी
3: मेरे घर में?
2: दादी ओदी दादा ओदा सब है?
3: हाँ सब कोई है।
2: चलिए बढ़िया है, सब कोई सही है ना?
3: हाँ सब कोई सही है।
2: चलिए सही है, सही होना चाहिए। भगवान करे बढ़िया से रहे, एकदम बढ़िया तरक्की करे, एकदम आप लोग का प्रोग्राम चलते रहे चाहिए, हम लोग बात भी करते रहे, इससे अच्छा और क्या है।
3: हाँ ये बात सही है।
2: दुनिया से क्या ले जाना है मैडम?
3: जी
2: बस थोड़ी सी बात हो जाता है, एंजॉय हो जाता है, गाना वाना भी फरमाइश कर लेते हैं। तो मेरे घर में जानते हैं रेडियो का जगह पर वो होम थिएटर है, बड़ी वाली 6-7 हजार का है वो होम थिएटर।
3: बढ़िया।
2: जब मैं घर गया था रक्षाबंधन में तो मेरे पापा जी नहीं रहते थे, तो हम जब बजाते थे जब पापा जी घर में आ जाते थे तो नहीं बजाते थे,
3: पापा जी से डर लगता है।
2: वो गुस्सा कर लेते थे, बोलते थे कि बहुत पिटाई होगा ये सब बजाओगे तो हम बोले कि चलिए ठीक है नहीं बजाएंगे। अब बोलते हैं तो नहीं बजाएंगे। जब कहीं चले जाते थे तो थोड़ा लो-फाई सॉन्ग वोंग लगा करके सुनते थे।
3: अच्छा
2: चलिए बढ़िया है। तो कल विश्वकर्मा पूजा था जानते हैं?
3: हाँ विश्वकर्मा पूजा था, सबके यहाँ पूजा हुआ।
2: तो कल पूजा करवाए, मंदिर है अपने कंपनी में, केला वोला से वो लाए थे, लड्डू वड्डू वही पूजा पाठ सुबह में करवाए थे, पूजा वूजा करवा करके उसके बाद फिर अपने ड्यूटी में लग गए। घर में भी मेरा आटा वाला मोटर वाली मशीन है, आटा वाटा पीसते हैं पापा जी
3: है।
2: और वो पानी चलाने वाला मशीन भी है, सब बड़ी बाड़ी भी है। हाँ सब ये सब आप लोग का कृपा से भगवान भगवान का कृपा से।
3: जी सब भगवान की कृपा है।
2: तमाम आकर के हम भी कर दिया है कुछ।
3: ये सब होना चाहिए, ये सामान बड़ा रहता है तो अच्छा रहता है, अपना काम अपना भी काम हो जाता है खुद।
2: हाँ, दो पैसा आ भी जाएगा। 800-900 रुपया डेली का आटा पीस करके आ जाता है।
3: तब तो पापा जी का खाता चल रहा है।
2: हाँ, पापा जी पीते हैं डेली का डेली, कभी कभी 700 कभी 800 ऐसे करके आ जाता है।
3: बढ़िया
2: है, और सब बढ़िया है ना मैडम?
3: जी जी, और सब बढ़िया है
2: जी।
3: तो फिर चलिए आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
2: जी नमस्ते मैम।
3: नमस्ते।

0: है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: हेलो,
0: हाँ जी बोलिए, नाम बता सकते हैं?
1: और भाषी जी बोल रहे
0: हैं,
1: वहाँ मौसम कैसा है आपको?
0: मेरे यहाँ का तो मौसम हल्का हल्का, बस बादल छाया हुआ है और हल्का धूप है।
1: हम तो पहला बार कॉल लगा है आपका पास, नया है हम।
0: जी, आपका नाम बता सकते हैं?
1: मेरा नाम प्राणनाथ दुबे, तोरा से बोल रहे हैं, हमारा सानी गांव है।
0: तो क्या हाल चाल?
1: बस हम आपका रेगुलर सुनने वाला है, रेगुलर सुनते हैं आपका। एक्चुअली में हम रहते हैं कलकत्ता में, हम कलकत्ता में ही आपका प्रोग्राम सुनते हैं दिन रात, जब मौका मिलता है तब आपका हम रेडियो इंजिन सुनते हैं।
0: जी, सब तो बढ़िया है।
1: और यहाँ मौसम है बारिश, बारिश मौसम है, पानी पानी हो रहा है यहाँ तो बता।
0: आपके वहाँ बारिश हो रही है अभी?
1: हाँ, यहाँ पर कलकत्ता में भी बारिश हो रहा है।
0: अभी आपको कौन सा गाना सुनना है?
1: अभी हमको वही सुना दीजिए, इससे बरसा पानी, बारिश हो रहा है यहाँ पर, तो हिसाब से गाना। और हमारे जितने श्रोता है उनको हम सुनाना चाहेंगे, आपको भी सुनाना चाहेंगे। और मेरे घर के मेरे लोग है, रिश्ता है, मैं है, मेरी मम्मी है, सबको सुनाना चाहेंगे, मेरी बहन लोग है। उनको
0: आपको गाना देखना है, सुनते
1: ओके मैडम, ओके, थैंक यू।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: कैसे मिचा?
5: मेरा ठीक है, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: हमारे भी ठीक है। खाना खा लिए?
5: हम तो खाना खा लिए हैं, आप बताइए।
6: हम भी खा लिए। अरे सब बताइए।
5: और सब तो ठीक है, बस सबको ही अपने अपने काम में लगे हैं।
6: हाँ, जुमा है।
5: तो कौन सा गाना सुनना है आज?
6: गाना अपना पसंद से सुनना है।
5: अपने से कोई भी?
6: हिंदी गाना।
5: हिंदी गाना आज आप नहीं बताइएगा?
6: अपना पसंद से सुना दीजिए।
5: ओके, और गाना किसी को डेडिकेट भी करेंगे?
6: हाँ, मेरा भाई बता रहा है
5: तो बता दीजिए।
7: दिल जले का गाना।
5: और दिल जले का कौन सा गाना?
7: शाम है दूंगा।
5: अच्छा जी, और गाना किसी को सुनवाएंगे भी?
7: आपको और बहन हेलो सभी को।
5: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर रहे हैं।
7: ठीक है।
5: वैसे आपका नाम?
7: अरमान आलम।
5: जी, तो
7: कब तक सुनाइएगा मैम?
5: ये आपको कल आएगा या फिर परसों आएगा?
7: ठीक।
5: ओके, रेडियो रिमझिम में कॉल किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
7: थैंक यू।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: हेलो
1: हेलो,
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM
1: नमस्ते मैम,
0: में। नमस्ते, मैं
1: कैसी हैं आप?
0: बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: मैं भी ठीक हूँ मैम। आपको पहचान रही है?
0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ
1: बोल रहे हैं आप, पहचान रही हैं?
0: थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे याद था, भूल गए हैं।
1: बता दें,
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: मनीषा कुमारी प्रयाग सुंदर से।
0: अच्छा जी हाँ, क्या हो रहा है मनीषा जी?
1: अभी तो रेडियो सुन रही थी और अपना गाना सुन ली, बहुत अच्छा लगा मेरा गाना बजा।
0: चलिए बढ़िया, आपको अपना गाना सुनने को मिला, और क्या चाहिए।
1: शांति है ना, ही बजता है तो अच्छा नहीं लगता है, जब बज जाता है तो इतना अच्छा लगता है।
0: तो आज बता दीजिए कौन सा गाना सुनिएगा,
1: सुनवा दीजिए मधुर मेरे दिल की गोजा।
0: और गाना किसी को सुनवाना भी
1: मैम गाना मालूम चल गया ना?
0: है। हाँ, चुप हो जा, हुआ सो हुआ।
1: जी मैम,
0: हाँ, आगे की लाइन मैंने बताया आपको,
1: क्या
0: आप थोड़ा

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
5: नमस्कार दीदी।
6: नमस्कार।
5: उस दिन भी मेरा गला रिकॉर्ड हुआ था, नहीं सुनाई गए दीदी।
6: जी जी, आपका एक कॉल बचा हुआ है, उसको सुना दिया जाएगा।
5: जी जी जी, तो सुना दीजिएगा। आज दिल वाले फिल्म का जीता था जिसके लिए उसके लिए मरता था।
6: जी जी बिल्कुल सुनाएंगे। और गाना डेडिकेट भी है किसी को?
5: हाँ, हिमेश कुमार, ऋतिराज कुमार, पंकज कुमार, रेणु देवी, सपना कुमारी।
6: ओके, तो आपका गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: हेलो मैडम,
0: नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैं मन्नन बोल रहा हूँ।
0: जी जी, क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो ठीक है, पर मेरा गाना आप ही नहीं बजाए।
0: आपका गाना बजा है?
1: बजा है।
0: हाँ, कल ही तो बजा।
1: कल बजा है मेरा गाना? नहीं बजा।
0: कल भी बजा है।
1: परसों दिन भी सुने, कल भी सुने, आज भी,
0: कल
1: आज भी सुन रहे थे, तो उसमें कोई गाना ही नहीं आपको मिला ही।
0: आपका कॉल मैं कल ही बना के बजा दी हूँ।
1: बजा दिए हैं? तो ठीक है, तो बजा दिए तो हो सकता है कि हमको ख्याल में बिसर गए हैं इधर उधर।
0: जी जी, मैं
1: यही होगा,
0: बजाई भी हूँ और मेरे रिकॉर्ड में भी है।
1: चलिए, आपको अब रहे हैं तो आपका बात को हमको आना ही पड़ेगा। या हमसे कोई मिस्टेक हो गया, कहीं चले गए हो दूसरी जगह, या रेडियो ऑफ हो गया हो, या जो भी हो, प्रॉब्लम कोई आया हो, जब बज गया तो मैडम तो कोई बात ही नहीं। आज भी कोई गाना सुनवा दीजिए मैडम।
0: तो बता दीजिए आज कौन सा सुनना है? आज कौन सा?
1: ठंडे का मौसम आ रहा है, ठंडा वाला, ठंडे का मौसम वाला कौन सा गाना रहेगा?
0: ठंडी के मौसम वाला गाना?
1: ये तो आप गाना बहुत बजाती हैं।
0: कोशिश तो करते हैं कि आप अपनी पसंद के गाने को बजाओ।
1: ठंडा का मौसम आ रहा है, तो उसमें कौन गाना बजना चाहिए बताइए, हम सोच के बताते हैं।
0: हाँ बिल्कुल बताइए।
1: ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। महेंद्र कपूर का गाना है।
0: एक और है शायद गाना, मीठी मीठी सर्दी है, ऐसे करके कुछ गाना है लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज का है शायद।
1: बजाइए ना वही, तो ये तो गाना तो बहुत बार सुने आपका संचार वही गाना बजाइए मैडम, आपका चॉइस का मतलब ठंडे वाला तो हो तो अच्छा रहेगा ना। अब देख रहा है कि बहुत शीत गिर रहा है सुबह में,
0: मीठी मीठी सर्दी आ रही है और ये गाना भी वही सेम।
1: हाँ बजाइए मैडम, आपकी तो चॉइस रहेगा, तो उसी गानों को आप बजा दीजिए, हम भी उसी में खुश हैं। हम तो वो तो हमको गाना नहीं मिल रहा था, तो वो हमको याद आ गया महेंद्र कपूर का, वो पुत्रा ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए।
0: आपको ये आपको कल और परसों ये दोनों के भी सुनने को मिलेगा, क्योंकि आज मनोरमा जी का जो कॉल बचा हुआ है वो बजेगा।
1: हाँ जब आप बोल दिए तो हमको संतोष हो गया, और बचा हुआ कॉल में वो भी सुनेंगे हम, मेरा गाना वो आया है या नहीं आया है।
0: बिल्कुल सुन लीजिएगा।
1: हाँ आज सुनेंगे, आज तो वो दिल थाम कर सुनेंगे कि मनोरमा जी बजाई है या ना बजाई। सबूत तो खड़ा हो जाएगा ना, तो जब भी मनोरमा जी से बात होगा तो उनको हम बोलेंगे।
0: ओके जी।
1: लेकिन आप भी ख्याल रखती हैं, हर कंज्यूमर का बात को ख्याल रखती हैं भाभी जी।
0: नहीं बजा है तो कोशिश तो करनी ही है, बजानी ही है।
1: हाँ लेकिन हम मैं देख रहे हैं ना, एक आदमी पूछ रहा था आपसे कि आप हमको पहचानती हैं, तो आप बताएं कि हाँ हम पहचान रहे हैं, दिल्ली में आप रहते हैं
0: जी,
1: है ना? तो हाँ, तो इससे हमको पता ये चला कि आप हर कंज्यूमर जो भी कॉल करता है उसको आप पहचानती है कि फलाने जगह का है, फलाने जगह रहता है ना, तो ये आवाज से आप पहचानती हूँ, इतना तो सही है ना कि आप पहचान जाती हैं। हम कहाँ कराने वाले हैं मैडम?
0: पूरा से।
1: अरे वाह, याद कर लिए आप। चलिए मैडम, तो अच्छी बात है, आप बताइए वो गाना।
0: ओके, तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
1: ओके, थैंक यू,
0: वेलकम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: उत्तर बिहार का गौरव,
2: सारण प्रमंडल की शान,
1: गोपालगंज की धड़कन
2: और अपने भाषा की पहचान,
1: रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
2: सुनो दिल से।
3: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल कहे सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: क्या बोले थे? बुलाती है मगर जाने का नहीं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम हैं इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।